हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के

0: इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदनवार।
2: यह है विविध भारती।

पहले सुनिए चिंतन। आठ अगस्त यानी आज ही के दिन 1942 को बॉम्बे के अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। गांधी जी का विचार था कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। उन्होंने कहा, करो या मरो। ये था चिंतन। और आइए अब सुनते हैं कुछ भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जरोखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, इसका 274वां भाग प्रसारित होगा। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुदगल, भाग 8, प्रस्तुत करता है कांचन प्रकाश संगीत। सुबह 7 आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिस्से गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय है सुबह 8:15 और दोपहर 2, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। आज ये कार्यक्रम गीतकार गुलशन बावरा पर केंद्रित होगा, प्रस्तुतकर्ता है रमेश गोखले। इसी कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। सुबह 10 पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी दिल की गिरह, लेखिका विनीता अस्थाना, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। दिन में 11 सुनिएगा मैटिनी शो, क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2 प्रसारित होगा, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा दोपहर 12:05 पर और 1 आप सुनते हैं सुरीला सफर। दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे और 3 फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। नाट्य तरंग में दोपहर 3:30 पर सुनिएगा नाटक किसी एक फूल का नाम लो, इसका भाग 1 प्रसारित होगा, मूल गुजराती लेखक मधु रॉय, हिंदी रूपांतर ज्योति व्यास और निर्देशक सुशील बनर्जी। दोपहर बाद 4 पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का 1 भाग प्रसारित होगा, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

संध्या 5 बजे आप सुनते हैं छाया गीत का पुनः प्रसारण और 5:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन 6:35 पर और विशेष जयमाला कार्यक्रम संध्या 7 बजे प्रसारित होगा। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे अभिनेता निर्देशक निर्माता मनोज कुमार। जिज्ञासा का प्रसारण समय संध्या 7:45 और हवा महल में रात्रि 8 बजे सुनो कहानी के अंतर्गत कहानी होगी पंच परमेश्वर, इसका भाग पहला प्रसारित होगा। कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, वाचक स्वर अमरकांत दुबे का और प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। रात्रि 9 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए और आज रात 10 बजे छाया गीत सुनिएगा। आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेकी। रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे मैटिनी शो का पुनः प्रसारण। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, आज इसका भाग 274।

वानर सम्राट सुग्रीव की अपने चरणों में भक्ति और समर्पण देख श्रीराम ने उन्हें भरत की भांति अपना लिया और उनसे वे सभी उपाय करने का आग्रह किया जिससे सीता का समाचार प्राप्त किया जा सके। सुग्रीव के आदेश पर वानरों की विशाल सेना एकत्र हो गई। पार्वती को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी। उनकी संख्या इतनी थी जिसकी गिनती करने वाले को मूर्ख ही कहा जा सकता है। सभी वानर श्रीराम के सम्मुख आकर सिर झुकाते हैं। प्रत्येक वानर से श्रीराम उसकी कुशल क्षेम पूछकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। सुग्रीव ने असंख्य वानरों की विशाल सेना को सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक माह का समय दिया। अपने राजा के सामने एक बार फिर सिर नवाकर वानर श्रीराम का स्मरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में चल दिए। सबके अंत में जब पवन सुत हनुमान ने सिर नवाया तो श्रीराम ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया तथा अपना अनन्य सेवक जानकर उन्हें अपनी अंगूठी उतार कर दी। बोले, सभी प्रकार से सीता को समझा बुझाकर शीघ्र लौट आना।

0: गीता कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान आज आप सुन रहे थे भाग 274।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में वर्षा चौमासा को लेकर आज हम पुनः उपस्थित हैं। शुभा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और आप ही की ओर देखे जा रही हूँ, सुनने के लिए उत्सुक हूँ, आपने आज कौन सा राग चुना है, किस बंदिश के लिए आपका मन बना है?
1: वैसे तो हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि राग मल्हार जो है उसके विभिन्न प्रकार हैं। आज सोच रही हूँ कि ऐसे दो मल्हार के प्रकार सुनाऊं, आम शायद सुनने को ना मिलते हों। वैसे तो इतने प्रकार हैं और अलग अलग गुणीजन वो सुनाते ही हैं, मीराबाई की मल्हार, धूलिया मल्हार इत्यादि,
0: चरजू की मल्हार, रामदासी मल्हार,
1: जी वो बहुत हैं रचनाएं। लेकिन दो मल्हार के प्रकार मैंने गुरुजी से सीखे भी और सुने भी, तो एक का नाम है चंद्र मल्हार। तो इस राग की थोड़ी सी विशेषता बता दूं कि ये बिलावल थाट का उन्होंने बताया है और पूर्वांग में इसमें केदार उसका उसके कुछ स्वर समुदाय मिलते हैं और जो उत्तरांग में बिलावल
0: जी,
1: तो और उसकी फिर एक विशेष स्वर संगति है जो कि इस राग में मिलती है केवल
0: जी।
1: तो वो आपको मैं जरा सा गा के सुनाती हूँ
0: जी।

0: ये नाम भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसकी बंदिश जिसमें हम वर्षा ऋतु से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली या जो गीत रचना है उसके बारे में भी तो बताएंगे ना आप।
1: जी, बंदिश के बोल इस तरह हैं, बरखा न भावे उन बिनरी, शीतल पवन लागे दहन। तो पवन तो
0: जला रही
1: चल
0: है।
1: रही है लेकिन वो हमें जला रही है विरह में, विरह व्यथा में जलती नायिका को और भी उसको आग जैसी महसूस हो रही है। कारी कारी घटा देख डर लागे, उधर तो उत्सव मनता है लेकिन यहाँ काली घटा देख के एक दुख।
0: तो शीतल पवन जहाँ दाहक हो गई तो यहाँ तो काली घटा तो डराएगी ही।
1: कारी कारी घटा देख डर लागे, दामिनी दमक मुरला बोलन। ये इसका
0: मुरला मतलब मोर।
1: जी हाँ जी,
0: आप सुनाएंगी?
1: जी जरूर।

0: ये तो केदार का
1: जी ये है।
0: और पनी धनी सारा पमा ये बिलावल का अंग हो गया। और इसकी जो अपनी विशेष एक स्वर संगति है वो मा प धनी धा प मा, ये चंद्र मल्हार की संगति मानी गई है। तो ये इन स्वर संगतियों को मिला के चंद्र मल्हार राग तैयार किया गया है।

0: श्रोता मित्रों, अभी हमने ये सुना राग चंद्रमल्हार। चंद्रमल्हार की ये बंदिश बहुत ही खूबसूरत थी। शुभा जी, आप एक और दूसरे मल्हार का भी जिक्र कर रही थी, वो
1: जी ये भी एक अलग अलग रागों को जोड़ के एक ये राग बना है।

0: अरुण मल्हार
1: मिश्रण
0: जी, हाँ
1: है।
0: जी है मिश्रण है। और इसमें कुछ स्वर संगतियां तो गौड़ की दिखती हैं, कुछ स्वर संगतियां दिखती हैं बिलावल की, और इसमें तिलंग का भी एक अंश आता है, एक टुकड़ा ऐसा है जो कि तिलंग की याद दिलाता है
1: जी।
0: तो ये अरुण मल्हार है। और इसकी मुख्य रूप से मैं बता देती हूँ कि क्या चलन बताया गया है मुझे। रे गामा गामा सा रे गामा गामा, ये गौड़। मा रे पा, विशेष मल्हार की स्वर संगति।

0: आज हमने दो मल्हार के दो प्रकार सुने, एक तो चंद्र मल्हार और अरुण मल्हार। प्रतीक्षा करते हैं कल की और आज लेते हैं आज्ञा। कल फिर भेंट होगी। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन।

0: हम विविध भारती से बोल रही हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम तथा आसपास के क्षेत्रों में 14.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 90% रही, जबकि न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान रहा 30.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:08 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42। और अब एयर इंडिया से प्राप्त उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 श्री विजयपुरम से पहुंचेगा दिन के 11 बजे तथा वापसी पर विमान 2936 दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया की आज की उड़ान। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी जानकारी आपको दे दें। आज सवेरे 7:30 पर प्राइमरी चैनल और 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय है कृमि मुक्ति, निरोग बचपन का संकल्प। विषय से संबंधित जानकारी के लिए आज स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रेशमा बेगम, GDMO होम्योपैथी, प्रोग्राम इंचार्ज नेशनल डिवॉर्मिंग डे। इस विषय से संबंधित जानकारी के लिए अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 232558। विषय एक बार फिर बता दें, कृमि मुक्ति, निरोग बचपन का संकल्प। कार्यक्रम का समय रहेगा आज सवेरे 7:30। और अब एक सूचना। क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यावरण, पर्यटन, लोककला, हस्तशिल्प, स्थानीय

व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव OTT ऐप में माई वेब सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और

0: अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये के तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से ना जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत के उपराष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर आज श्री विजयपुरम पहुंचेंगे। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने ड्रोन एवं अन्य हवाई गतिविधियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। समग्र शिक्षा के तहत ननकौरी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित किया जाएगा और नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजित DCSP कप अंतर ग्राम पुरुष एवं महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का कल कार्वाइंस्कोप तट में हुआ समापन।

सुबह के समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। भारत के उपराष्ट्रपति आज द्वीप समूह के दौरे पर श्री विजयपुरम पहुंचेंगे। इस दौरान वे शाम को राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल का दौरा करेंगे और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वे स्वतंत्र ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वीर सावरकर सेल में जाकर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल परिसर स्थित केंद्रीय टावर, फांसी स्थल और संग्रहालय प्रदर्शनी गैलरी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल उपराष्ट्रपति फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति डॉ बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित कार्यक्रम वंदे मातरम के अवसर पर राजकीय समारोह तिरंगा संगीत में शामिल होंगे। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद दोपहर में उपराष्ट्रपति नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का भी दौरा करेंगे। अपनी यात्रा पूरी कर कल शाम वे नई दिल्ली लौटेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दो दिवसीय दौरे को देखते हुए दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन एवं अन्य हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और वीवीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट पूर्वा गर्ग द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी आदेश के अनुसार वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉ बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल, फ्लैग पॉइंट तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के आसपास ड्रोन और अन्य हवाई संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग तथा अन्य हवाई मनोरंजन गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। यह प्रतिबंध आज और कल के लिए लागू रहेगा। राजधानी श्री विजयपुरम में वीवीआईपी दौरे के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक वीआईपी रोड और सेलुलर जेल मार्ग पर यातायात नियंत्रित रहेगा। वहीं कल सुबह 7:30 बजे से 11:45 तक और दोपहर 12:30 बजे से शाम 6 बजे तक मरीना पार्क सड़क से फ्लैग पॉइंट, वीआईपी रोड, डॉलीगंज स्थित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान और फिनिक्स वे जेटी मार्ग तक यातायात नियंत्रित रहेगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से निर्धारित समय के दौरान इन मार्गों से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को इन मार्गों से आवागमन की अनुमति रहेगी। फिनिक्स बे जेटी से संचालित सभी हार्बर फेरी

सेवाएं कल दोपहर 12:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रशासनिक कारणों से निलंबित रहेंगी। इस अवधि के दौरान फिनिक्स बे और बम्बू फ्लैट जेटी के बीच आपातकालीन फेरी सेवा जारी रहेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निलंबन अवधि में चाथम जेटी से बम्बू फ्लैट और होप टाउन के लिए अतिरिक्त यात्री फेरी सेवाएं संचालित की जाएगी। शाम 6 बजे के बाद फेरी सेवाएं नियमित कर दी जाएंगी। प्रशासन ने सभी यात्रियों और पर्यटकों से अपने आवागमन की योजना इसी के अनुसार बनाने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, मूल्यांकन शिविर और वॉलीबॉल टूर्नामेंट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। समग्र शिक्षा के तहत खंड परियोजना कार्यालय ननकौरी द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर का आयोजन 12 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कपंगा तथा 13 अगस्त को राजकीय मॉडल माध्यमिक विद्यालय कमोटा में होगा। इस दौरान बच्चों की प्रारंभिक पहचान, व्यापक आकलन और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही पात्र बच्चों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक सहायता सेवाओं से जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आकलन के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों, पुनर्वास विशेषज्ञों, शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकलन विशेषज्ञों तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रतिनिधियों सहित बहुविषयक टीम मौजूद रहेगी। हज समिति ने हज 2027 के लिए प्रशिक्षकों के चयन हेतु पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार हज समिति की वेबसाइट पर 11 से 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे। आवेदक का पिछले 5 वर्षों में हज किया होना आवश्यक है। इसके साथ ही उसे अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या किसी स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजित DCSP कप अंतर ग्राम पुरुष एवं महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का कल कार्वाइंस्कोप तट में फाइनल मुकाबलों के साथ समापन हुआ। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आयोजन में हुए इस टूर्नामेंट में दक्षिण अंडमान जिले के विभिन्न गांवों और पंचायतों की टीमों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग के फाइनल में ग्राम पंचायत मीठाखाड़ी ने ग्राम पंचायत गुप्तापाड़ा को 25-20 और 25-19 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला वर्ग में वॉली गर्ल्स ने स्टॉर्म ब्रेकर्स को 15-7 और 15-3 से पराजित कर जीत हासिल की। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग और पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगथन ने विजेता एवं उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और पदक प्रदान किए। टूर्नामेंट के सफल आयोजन ने युवाओं और समुदायों को खेल के माध्यम से एक साथ आने और मादक पदार्थों के सेवन से हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गृह विज्ञान विषय में अतिथि शिक्षक पैनल के गठन हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और यूजीसी नेट योग्यता होना अनिवार्य है। PhD उपाधि धारकों को नेट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन 14 अगस्त तक महाविद्यालय के प्राचार्य कार्यालय में जमा कर सकते हैं। शहीद द्वीप निवासी 60 वर्षीय अमीश नामक मरीज का 30 जुलाई को जीपी पंत अस्पताल में निधन हो गया था। उनका शव फिलहाल अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों, रिश्तेदारों और गैर सरकारी संगठनों से शव की पहचान कर उस पर दावा करने की अपील की है। दावा नहीं किए जाने की स्थिति में नियम अनुसार शव का अंतिम निस्तारण कर दिया जाएगा।
भारतीय सेना द्वारा बफेल रेंज और जिंथे लॉन्ग रेंज में फायरिंग अभ्यास किए जाने के चलते आज सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक फायरिंग अभ्यास किया जाएगा।

0: जनता से अपील की गई है कि फायरिंग अभ्यास के दौरान निर्धारित क्षेत्रों में प्रवेश न करें और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के उपराष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर आज श्री विजयपुरम पहुंचेंगे। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने ड्रोन एवं अन्य हवाई गतिविधियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। समग्र शिक्षा के तहत ननकौरी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित किया जाएगा और नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजित डीसी एसपी कप अंतर ग्राम पुरुष एवं महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का कल कार्बनस्कोप तट में हुआ समापन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बहुत
2: हम विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

बार फिर से स्वागत है। आज ऐतिहासिक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ देशभक्ति गीत।

0: जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मोहम्मद रफी और साथियों की थी, फिल्म का नाम था सिकंदर आजम। और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाजें शांति माथुर और साथियों की, फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिस्ती गीत कार्यक्रम की ये है आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है शहीद। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी, खान मस्तान और साथी। गीत को लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और धुन बनाई है गुलाम हैदर ने।

आपकी सेवा में ये था विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। सवेरे के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य बचपन ही स्वस्थ भविष्य की नींव है। श्रोताओं, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डिवॉर्मिंग डे प्रतिवर्ष दो बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 1 साल से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और किशोर किशोरियों के आतंकी कृमि का उपचार करना और उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार करना है। बच्चों के शरीर में होने वाले कृमि संक्रमण को अक्सर छोटी समस्या समझकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये उनके स्वास्थ्य पोषण और विकास को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इसी संदर्भ में आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हमारा विषय है कृमि मुक्ति निरोग बचपन का संकल्प। विषय से संबंधित जानकारी के लिए आज स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रेशमा बेगम, GDMO होम्योपैथी प्रोग्राम इंचार्ज नेशनल डिवॉर्मिंग डे। डॉक्टर साहिबा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, विषय से संबंधित जानकारी के लिए या किसी भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 2325582358। और अब हम विषय पर आते हैं। डॉक्टर रेशमा, जैसे कि आज का हमारा विषय है कृमि मुक्ति निरोग बचपन का संकल्प, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी कृमि दिवस क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
1: राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये हमारी भारत सरकार द्वारा यानी कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 2015 में शुरू की गई एक मुहिम है, जिसमें हम 1 से 19 साल के बच्चों को स्कूल और आंगनवाड़ी के माध्यम से एल्बेंडाजोल की खुराक देते हैं। और हमने स्कूल

0: और आंगनवाड़ी को इसलिए चुना है क्योंकि भारी पैमाने में बच्चे हमें एक प्लेटफॉर्म में एक ही दिन यानी कि हम मास डिवॉर्मिंग करते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं 1 से 19 साल के वो भारी पैमाने में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कवर हो जाए। और उसका मुख्य उद्देश्य ये है, इसके साथ हम मनाते हैं कि हमारे WHO के आंकड़े के मुताबिक देखा गया है कि 240 मिलियन जो बच्चे हैं वो एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है सॉयल ट्रांसमिटेड हेलमिंट्स के यानी कि वॉर्म इन्फेस्टेशन के एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। तो इतनी भारी पैमाने में जब बच्चे हमारे संक्रमित हो रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इससे बचाने के लिए, ताकि हमारे बच्चे अगर कृमि संक्रमित होंगे तो कहीं ना कहीं जाके एनीमिक हो जाएंगे, एनीमिक होंगे तो उनका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, अल्टीमेटली उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आएगी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोग्राम को राष्ट्रीय तौर पे साल में 2 बार मनाने की घोषणा की गई है।
1: अच्छा, तो साल में 2 बार इसे मनाने का कारण क्या है, जानना चाहेंगे?
0: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम को हम साल में 1 बार मनाते हैं, बट इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि बेसिकली ये जो फॉर्म की जो समस्या है ये सफाई से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे सफाई में थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे इसके तरीके हैं कैसे कृमि हमारे संक्रमित होता है, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। तो जब हम एक बार ये टैबलेट देते हैं, कीड़े तो मर जाते हैं पेट में, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए और बार बार वो साइकिल उसके बॉडी में रिपीट होके कीड़े उसके शरीर में प्रवेश ना करें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इसे साल में 2 बार मनाने की
1: जी
0: सोची है।
1: जी, तो जैसे कि कृमि पेट के कीड़े क्या होते हैं जैसा आपने बताया अभी, और ये बच्चों के स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करते हैं?
0: कृमि एक परजीवी है यानी कि पैरासाइट हम बोलते हैं। तो पैरासाइट का एक लक्षण क्या होता है, वो एक होस्ट के शरीर में रह के उनकी जो भी पोषक तत्व है उनको अपने आहार के तौर पे वो ले लेते हैं। तो जब ये बच्चों के शरीर में प्रवेश करते हैं तो अल्टीमेटली क्या है, बच्चे जो भी खाना खा रहे हैं यानी कि जो भी उनका आहार ले रहे हैं वो कृमि उसको ले लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का ना सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट रुकता है बल्कि कहीं ना कहीं उसका मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है। 1 से 5 साल का जो समय है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस समय में बच्चे के मेंटल ग्रोथ में कॉग्निटिव बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो चलते रहते हैं। तो अगर इस समय अगर बच्चा कृमि संक्रमित होता है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो एनीमिया का शिकार होता है, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस खराब होता है स्कूल में। और ऐसा भी आंकड़ों के मुताबिक देखा गया है कि स्कूलों में 25% जो एबसेंट हो रहे हैं बच्चे, उसका एक मुख्य रीज़न है एनेमिया। और एनेमिया का एक मुख्य रीजन है बच्चे अगर सही तरीके से कीड़े की दवाई नहीं ले रहे हैं।
1: जी जी, तो बच्चों में कृमि संक्रमण के जो सामान्य लक्षण है, किस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बच्चा संक्रमित है?
0: जी हाँ, मैं सभी माता पिताओं को बता देती हूँ कि बच्चे यूजुअली स्कूल में एक कंप्लेन लेके आते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती है और पेट में दर्द रहता है। तो इसे एक मामूली समस्या के तौर पे नहीं लें, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आपका बच्चा कृमि संक्रमित हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिशन अपटेक है यानी कि खाना जो खाए एपिटाइट है वो उसमें बाधा आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो गया वो है उसके खाने पीने, बच्चा खाना कम खाता है, साथ ही साथ धीरे धीरे अगर कृमि का लोड ज़्यादा होता है तो बच्चे को जी मतलाता है यानी नौजिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम आते हैं, और आगे कहीं ना कहीं जाके कभी कभी लूज मोशन डायरिया, बच्चा कमज़ोर थकावट महसूस करता है, तो उसका जो परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्कूल में लो होने लगता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो अल्टीमेटली बच्चा कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल कूद हो, कोई सही तरीके से नहीं कर पाएगा।
1: जी बिल्कुल, तो किन किन कारणों में से हमें संक्रमण होता है, कृमि संक्रमण जो है उनकी वजह क्या है?
0: सबसे पहले बता दूं कि ये एक साफ सफाई रिलेटेड एक साइकिल है,
1: तो हाइजीन का हमें बहुत
0: ध्यान देना। हाँ जी, तो 5 चीज़ों को स्पेशली ध्यान देना बच्चों को। अगर बच्चे नंगे पाँव बाहर जा रहे हैं तो उस माध्यम से कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जनरली कीड़ों का आने का माध्यम है हमारे स्किन, हमारे हैंड्स और हमारे जो पाँव में जो वेब है यानी कि जो हमारे फिंगर्स के बीच में जो त्वचा है वो बहुत ही नाजुक है, तो सेंसिटिव है, उस जगह से ही कीड़े प्रवेश करते हैं। यानी कि ये दिखते नहीं है, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं, तो ये उनका प्रवेश द्वार है हाथ और पैर के जो हमारे जो वेब हैं वहाँ पे। तो इसलिए जब बच्चे अगर नंगे पाँव खेलने जा रहे हैं या फिर उनके पैर में अगर कट है और वो नंगे पाँव खेलने चले गए तो वो एक माध्यम है बच्चों के शरीर में प्रवेश करने का। और यूजुअली क्या होता है, इस वॉर्म्स को हम ये भी बोलते हैं सॉयल ट्रांसमिटेड

0: मिन्स यानी मिट्टी से फैलने वाली बीमारी।
1: बीमारी
0: अगर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति जाके खुले में शौच करता है और वो अंडे जाके मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं जिस अंडे में ये वर्म्स रहते हैं, और एक हेल्दी बच्चा अगर उस मिट्टी में खेलने चला जाए, नंगे पांव चला जाए, या फिर वो बिना हाथ धोए उस मिट्टी में खेल के आके खाना खा ले, तो ये इसके माध्यम से भी कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। एक हो गया नंगे पांव जाना, दूसरे हो गया अपने हाथों को नहीं धोना, और अगर ये जो जिस मिट्टी में ये अंडे मिक्स हुए हैं, इस मिट्टी को अगर हमारे उसी मिट्टी से हमारे फल या फ्रूट्स वो एग्रीकल्चर में यूज़ किए गए हैं, और जनरली माताएं सही तरीके से धोती नहीं
1: धोती
0: हैं
1: नहीं
0: सब्जियां, तो इस माध्यम से भी हमारे शरीर में एंटर करते हैं। और अगर दूषित पानी है, पानी भी अगर सही पानी में भी अगर कीड़े देखे जाते हैं, तो अगर वो पानी सही तरीके से उबाला नहीं गया या फिर फिल्टर्ड नहीं हुआ है, उस माध्यम से भी हमारे शरीर में एंटर करते हैं। तो ये सब तरीके हैं कि इतनी सफाई उनको
1: जी,
0: ज़रूर देख रखनी
1: तो
0: है।
1: कुल मिलाकर कहेंगे कि साफ सफाई बहुत ही जरूरी
0: जी
1: है।
0: हाँ जी
1: जी,
0: हाँ जी
1: तो चलिए एक कॉलर लाइन पर है, ले लेते हैं।
2: हेलो
1: हेलो,
2: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार,
2: नमस्कार
1: कार्यक्रम में स्वागत है, प्रश्न रखिए अपना।
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से
1: जी राकेश जी, प्रश्न पूछिए।
2: जी। मेरा प्रश्न ये जो क्रिमिनल होता है, क्या जो बच्चों को भूख नहीं लगती, क्या ये भी कारण हो सकता है?
0: हाँ जी नमस्कार राकेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लक्षण में से एक बड़ा लक्षण है कि बच्चे को भूख नहीं लगती है, क्योंकि कृमि बच्चे के जो भी पोषण है ना, वो कृमि वर्म्स खा लेते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो बच्चे का डाइजेशन इम्पैर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को भूख नहीं लगती है।
2: जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से साफ सफाई का हमें ख्याल रखना चाहिए, और अगला प्रश्न हमारा यही है डॉक्टर साहिबा, कि कृमि संक्रमण का बच्चों की पढ़ाई, विकास और पोषण पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है?
0: कृमि संक्रमण की वजह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा धीरे धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो फिजिकल जितना ग्रोथ होना चाहिए, वर्म्स उसके शरीर के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ले लेते हैं। तो अब जब दोनों ले लेते हैं, यानी कि विटामिन मिनरल्स भी कम होने लग रहे हैं, बाकी के मिनरल्स भी कम होने लग बाकी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो भी कम होने लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, बच्चे की जिस आयु में जितना उसका कद और
1: ग्रोथ होना
0: उसका
1: है।
0: वज़न बढ़ना चाहिए था, वो दोनों कहीं ना कहीं इम्पैड हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चा क्या होगा, नाटापन, जैसे कि हम स्टंट ग्रोथ बोलते हैं, उसका शिकार हो सकता है। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि अंडर वेट यानी कि माल न्यूट्रिशन का शिकार, हम बोलते हैं कुपोषण का शिकार भी
1: जी
0: हो
1: जी
0: सकता है। और कुपोषण अभी बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारतवर्ष में, इसके लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुपोषण से बचा ले। तो बच्चा अगर माल न्यूट्रिशन की तरफ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बच्चा सुस्त रहेगा, स्कूल में जाने से भी उसको नींद आने लगती है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स टीचर्स बोलते हैं कि बच्चा सो जाता है, उसको थकावट लगती है, थोड़ा चलता है तो हाँफने लगता है, तो धीरे धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे का परफॉर्मेंस कम होने लगता है, परफॉर्मेंस फिर बच्चा स्कूल में एबसेंट होने लगता है, और उसकी इम्यूनिटी जैसे मैंने बताई वो कम हो जाती है। तो धीरे धीरे एक बच्चे का ओवरऑल जो ग्रोथ है वो इम्पैड हो जाता है, जिसकी वजह से एक बच्चा, सोचिए हमारे देश का कितना बड़ा फ्यूचर है,
1: जी
0: अब
1: जी
0: आज को ये
1: बिल्कुल।
0: बच्चा हेल्दी रहेगा तो ही हमारे वो देश को आगे लेके जाएगा। तो
1: जी
0: इस तरह वॉर्म्स और हमारे बच्चों के जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है।
1: इसी संदर्भ में एक और बातचीत है कि अगर बच्चा ज़्यादा संक्रमित हो तो क्या ये उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है? बहुत ज़्यादा ही संक्रमित हो और उसे पता ही ना चले कि वो कृमि से संक्रमित है।
0: पहले तो मैं आपको लक्षण बता देती हूँ कि जब एक बच्चा कृमि संक्रमित होता है, यानी कि जब उसके पेट में लोड ज़्यादा है कृमि का, तब सिम्टम्स आते हैं, पेट दर्द की शिकायत आते हैं। ज़्यादा जोखिम वाला तो नहीं होता है
1: नहीं होता
0: सिम्टम्स,
1: है।
0: इतना होता है कि पेट दर्द बोलेगा बच्चा, वॉमिटिंग बोलेगा, उसका जी मतलाएगा, इससे ज़्यादा जोखिम तो नहीं हो सकता है कुछ। लेकिन एडल्ट में यानी कि बड़े लोगों में ऐसे वॉर्म्स के बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। बड़े लोगों में राउंड वॉर्म जो कि थोड़े खतरनाक है, अगर ये बड़े लोगों में थोड़ा जोखिम हो सकता है, लेकिन छोटों में यूजुअली हम पिन वॉर्म और हुक वॉर्म के ही ये दो वेराइटी के वॉर्म ही उनके अंदर में पाए जाते हैं,
1: दिखाई
0: बट
1: देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: ये ज़्यादा जोखिम नहीं होते हैं।
1: चलिए एक कॉलर लाइन पर है, ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: नमस्कार जी, मैं
1: जी नमस्कार जी, आपका नाम बताइए।
2: धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि ये डिवॉर्मिंग के लिए विषय में बात हो रही है, ये कीड़े तो इंसान से लेके हमारे पालतू जानवर

0: पर गाय भैंस पक्षियों में तक होते हैं, वो कुदरती इलाज कर लेते हैं। हम इंसानों में क्या है कि कोई ऐसा जानकारी नहीं होती। डिवॉर्मिंग में क्या है कि एक तो बच्चे की डेवलपमेंट रुक जाती है, और अभी एक हमारे जानकारी में था, एक बच्चे के पेट में एक गोला सा बना हुआ था। अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर ने बोला था उसमें एक गोला दिखाई दिया, तो पेट के एक साइड में गोला था। तो एक फिर सीनियर डॉक्टर को रिकमेंड किया गया, तो उन्होंने देखते ही बोल दिया आप इसको ये दवा दीजिए। तो उन्होंने एल्वेंटाजोल की गोली दी तो वो ठीक हो गया। तो ये इनको साल में छः छः महीने बाद छोटे बच्चों से लेके बड़े इंसान तक को हर 6 महीने में एक बार दवाई क्या जरूरी खानी चाहिए, कि जिससे क्या अगर हमारे को दर्द ना भी हो, डेवलपमेंट रुका भी ना हो, तब भी हम लोग ये एल्वेंटाजोल या जेंटल जो भी डिवॉर्मिंग की टेबलेट है वो खा लेनी चाहिए। और छोटे बच्चों को इतनी मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि एक लिक्विड भी आती है और टेबलेट भी आती है। तो इसके बारे में आप बताइए कि कितनी मात्रा छोटे बच्चों को और बड़े को लिए तो एक टेबलेट पूरी होती होती है, और रात के समय क्यों खानी चाहिए, रात के ही समय क्यों खानी? इसके बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं रात को खानी चाहिए, ये बताइए।
1: सर, आपने तो बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहली बात, जैसे कि आपने बोला कि बड़े लोगों में भी, हाँ, जैसे कि आपने पहले बताया कि एक बच्चे का जो केस आपने बताया कि उसके आंतों में एक गोला बन गया था, तो सर कीड़ों के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। जनरली जो हमारे बच्चों में है वो पिनवर्म और हुकवर्म बहुत कॉमन है, इनकी वजह से ज़्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन जब राउंड वर्म जो है उसकी मात्रा, अगर उसकी लोड ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कभी ये वर्म वर्म गोले के शक्ल के फॉर्म में कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन में लॉज हो जाते हैं। फिर वो एक, हम जैसे बोलते हैं कि उसे एक एक एम्बोलाई की तरह, यानी कि अब वो जब एक जगह क्लॉट की तरह बन जाता है वॉर्म्स बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, तो फिर धीरे धीरे वो कभी कभी डिसलॉज होके उस ऑर्गन से हमारे बाकी ऑर्गन में भी, ब्लड सर्कुलेशन में भी जा सकता है। तो खतरनाक हो सकता है, लेकिन राउंड वॉर्म डिपेंड्स अपन द वॉर्म। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी, बड़े भी ले सकते हैं। अगर मैं तो यहाँ पे एक संदेश देना चाहूंगी कि जब डिवॉर्मिंग हो रही है तो पूरे परिवार की डिवॉर्मिंग होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक पर्सन भी इन्फेक्टेड है घर में, अगर बाकी लोग नहीं ले रहे हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब डिवॉर्मिंग हम बच्चों को कर रहे हैं तो बड़ों को भी टैबलेट साथ में ले लेनी चाहिए। और आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, अभी भारत सरकार ने सारे सारे आयुर्वर्ग को ही इसको लेने के लिए उपदेश दिया है। अभी हमने WRA वुमेन में भी स्टार्ट किया है, यानी कि 20 to 49 ईयर्स में भी जो भी महिलाएं हैं नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग, उनको भी हम ये टैबलेट साल में 2 बार दे रहे हैं। और साथ ही में आपने ये सवाल पूछा कि डोसेस के बारे में, तो देखिए जैसे कि 0 to 1 ईयर में हम जनरली इसको नहीं देते हैं, बिकॉज माँ के दूध से ही बच्चे को सारा इम्यूनिटी मिल जाता है। इसकी जो खुराक शुरू होती है वो होती है 1 से 19 साल के बच्चे के लिए होती है। 1 से 2 साल के बच्चे को हम टैबलेट, 1 से 19 साल में हम टैबलेट ही दे रहे हैं सर। सिरप तो अभी फिलहाल नहीं दी जा रही है, बट वो किसी प्राइवेट अस्पतालों में ही बच्चों को दी जा रही है। लेकिन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन हमें स्कूलों और आंगनवाड़ी में टैबलेट्स ही देना है। 1 से 2 साल के बच्चे को आधी गोली देनी है, 400 mg की ये टैबलेट आती है, उसमें से 1 से 2 साल के बच्चों को हम 200 mg की टैबलेट देते हैं। 2 साल से ऊपर जितने भी आयुर्वर्ग के हैं, बच्चे हैं बूढ़े हैं, सबको फुल टैबलेट खानी चाहिए। और रात को
0: सर एक
1: इसलिए,
0: बात और, मैं सवाल बीच में मैं बोल देता हूँ फिर फोन रखता हूँ मैं।
1: हाँ जी सर,
0: एक बच्चे को हमने ये देखा कि बच्चा कम से कम उम्र का होगा 4-5 साल का, तो छोटा ही बच्चा था, तो उसके पेट में इतने ज्यादा कीड़े मेरे ख्याल हो गए थे, लगता है कि चेचियों के टाइप उससे मुंह से कीड़ा एक बाहर आ गया था। वो हमारे खुद हमने देखा, किसी के बच्चे के मुंह में कीड़ा आया तो उसने अपने अपनी नानी को बोला ये क्या है, वो उसने मुंह खोला तो उसने देखा कीड़ा, तो उन्होंने खींच दिया। तो हमारे सामने ही इतने ज्यादा भी हो जाते हैं जो मुंह से भी बाहर आने शुरू हो जाते हैं।
1: हाँ जी सर, ऐसे केसेस हमने भी देखे हैं, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है सर, बहुत ही रेयर, अब द रेयरेस्ट 1 या 2% केसेस में होते हैं। ऐसे हमें बड़ों में ये सिम्टम्स मिले हैं कि कीड़े नाक और मुंह से भी बाहर आने लगे हैं। लेकिन सर इसके, और आपने जो पूछा कि रात को ही ये दवाई क्यों खानी है, बिकॉज ये जो अंडे होते हैं ना, ये रात के समय ही हमारे जो मल द्वार, यानी कि जो हमारे एनस एरिया में जाके डिपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को, बच्चे बोलते हैं कि इचिंग यानी कि खुजली हो रही है रात को, तो इसके को रात को खाने से ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन हम डिवॉर्मिंग जो दे रहे हैं स्कूलों और आंगनवाड़ी में, इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन हम ये दे रहे हैं कि इसे स्कूल में ही बच्चों को मिड डे मील के बाद खाना चाहिए। अगर बड़े लोग सेवन कर रहे हैं तो इसको रात को खाने से ज़्यादा बेहतर है।
2: तो धर्मवीर जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: डॉक्टर साहिबा, अब अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आगामी 10 अगस्त को जो है राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाएगा, तो इस पर आपके विभाग की ओर से किस किस तरह की तैयारियां चल रही हैं?
1: सबसे पहले तो हमने इस टैबलेट को जो मंगाया है, मैं सारे पेरेंट्स को बताना चाहूँगी, ये टाइमली टेस्टेड मेडिसिन है, सेफ़ है आप हम सारे बच्चों के लिए, इसीलिए हम स्कूल्स और आंगनवाड़ी में दे रहे हैं। बिना झिझक इसे खाइए, बिना कोई दुविधा के इसे ज़रूर ये टैबलेट को खाइए। और टैबलेट सारे जगह पे सारे स्कूल्स में आंगनवाड़ी में चले गए हैं, और हमने इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन टीचर्स के लिए रखा है, ताकि जब ये टीचर्स और ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी हमने ट्रेनिंग दी है, ताकि जब ये बच्चों को सामने में दे तो ये तैयार रहें कि उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज जब हम बच्चे को टैबलेट दे रहे हैं तो स्पेशली खाली पेट नहीं देना, तो ये प्रशिक्षण शिविर जब हम करते ट्रेनिंग करते तो हम बता देते हैं कि टैबलेट आपको बच्चे को खाली पेट में नहीं देना, जिस दिन टैबलेट दी जा रही है बच्चों को खाना खा के ही आना है। साथ ही साथ कोई भी बच्चा अगर डिवॉर्मिंग वाले दिन अगर उसको हाई फीवर है, उसको लूज मोशन हो रहा है, तो उस दिन वो टैबलेट नहीं देना है, बल्कि उस टैबलेट को आप क्या कीजिए, 17 अगस्त यानी कि मॉपअप डे जो बच्चा 10 अगस्त को नहीं खा सका, उसे आप मॉपअप डे 17 अगस्त को ज़रूर दे दीजिए, जब वो बच्चा बेहतर है। और हम साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम टीचर्स को बता देते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, कि डिवॉर्मिंग वाले दिन अगर आपको लग रहा है कि कोई भी बच्चा क्रॉनिक कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसके लिए उसको मेडिकेशन चल रही है, उसे हार्ट डिजीज है या फिर उसे फिट्स आते हैं और वो ऑन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसे उस दिन आप दवाई मत दीजिए। बेहतर यही होगा कि वो अपने ही जो जिस डॉक्टर के पास में उनकी ट्रीटमेंट चल रही है उनकी सलाह से वो मेडिसिन ले। साथ ही साथ हमने इसकी प्रचार के लिए हमने दूरदर्शन और एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, रेडियो जिंगल्स हमारे चल रहे हैं ताकि लोग जाने, पीआरए मेंबर्स के थ्रू हम इसकी जागरूकता फैला रहे हैं ताकि लोग जाने कि इस दिवस की क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ हम सारे पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टीचर्स जब बता रहे हैं कि ये टैबलेट्स बच्चों को खानी है, क्यों खानी है, तो आप ज़रूर इसका इम्पोर्टेंस को समझिए और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाइए।
0: जी, अगला प्रश्न भी मेरा यही था कि माता पिता और शिक्षकों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्या भूमिका है, जो आपने बता दी। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि स्कूलों में जब दवा दी जाती है तो परेशान रहते हैं पेरेंट्स, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि यदि दवा खाने के बाद हल्की परेशानी हो तो अभिभावकों को क्या करना चाहिए और उनके लिए क्या संदेश है?
1: इसके लिए हम टीचर्स को बताते हैं कि आप एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग के थ्रू पेरेंट्स को पहले बताइए कि ये प्रोग्राम से पहले कि ये हम क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये टैबलेट के बारे में बताइए कि टैबलेट क्यों दी जा रही है, बिकॉज बिना बताए अगर हम एक पेरेंट्स को दे देंगे तो कोई भी माता पिता उसके लिए ज़रूर टेंशन में आ जाएंगे। तो इसके लिए उनको बुला के उनको एक अवेयरनेस दी जाती है ताकि उनके नॉलेज में आ जाए कि ये अगर उनके बच्चे नहीं खाएंगे तो उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए एक अवेयरनेस हम माता पिता के लिए रखते हैं, और सारे माता पिता को यही बोलूँगी कि ये मेडिसिन सेफ है, ज़रूर खिलाइए अपने बच्चों को, स्कूल में टीचर्स के सामने में दी जाती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे जो भी अगर परेशानी आ रही है उसके लिए टीचर्स रेडी रहते हैं क्योंकि वो वेल ट्रेंड हैं इसको संभालने के लिए। बेसिकली कोई तकलीफ नहीं होती है टैबलेट खाने से, ये सेफ है
0: जी। तो एक ऐसे प्रश्न है डॉक्टर साहिबा कि ऐसा कहा जाता है कि चॉकलेट खाने से ही पेट में कीड़े होते हैं, तो ये धारणा सही है या गलत है?
1: देखिए, चॉकलेट खाने से क्या होती है ना, दांतों में कैविटीज बनते हैं, कीड़े नहीं आते हैं, क्योंकि कीड़े के लिए मैंने आपको जो बताया जो साफ़ सफाई है वो इम्पोर्टेंट है। कीड़े मैंने जैसे बताया कि ये सॉयल ट्रांसमिटेड हेलमिंट्स है, मिट्टी से फैल रहे हैं, बस क्या साफ़ सफाई रखनी चाहिए जिसकी वजह से कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करें। तो मिठाई से कोई ऐसा इसका संबंध नहीं है, बच्चे अगर ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो उनको कैविटी ज़्यादा होती है। यूजुअली स्कूल्स में पेरेंट्स हमारे सामने यही शिकायत लेके आते कि डॉक्टर साहब देखिए बच्चे हमारा बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा रहा है, चीनी वाली चीज़ें खा रहा है, तो इसलिए उसके पेट में कीड़े हो रहे हैं। तो ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि मिठाई खाने की वजह से कीड़े होते हैं, हमें बाकी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
0: जी, डॉक्टर साहिबा, यदि कोई बच्चा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर दवा नहीं ले पाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है?
1: इसलिए हमने इसको 7 दिन के अंतराल में हम मॉपअप दिवस मनाते हैं, यानी कि अगर 10 अगस्त को बच्चा किसी भी कारण से नहीं खा पाया, लाइक उसको फीवर है या उसे उस दिन लूज मोशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा कफ

0: है, तो उस दिन अगर वो नहीं खा पा रहा है तो 17 अगस्त को वो बच्चा वो टैबलेट खा सकता है। इसलिए हमने टीचर्स को भी बता दिया है कि उस दिन बच्चे की तबीयत खराब है, या फिर जो बच्चे छूट रहे हैं, सपोज वो बच्चा उस दिन एबसेंट है, नहीं आया स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दिन में, तो उसे आप 17 अगस्त को कवर कीजिए।
1: जी। और जैसे कि ये तो बच्चों के लिए दिया जाता है दवा, और हम बड़े कैसे इस दवा का सेवन कर सकते हैं?
0: हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ों में भी बहुत गंभीर रूप ले
1: जी
0: सकता
1: जी
0: है, तो बड़े भी सेम जैसे बच्चे जिस तरीके से शिकार हो रहे हैं उस तरह बड़े भी हो सकते हैं। या भी नहीं कि बड़े अगर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, बिना धोए सब्जियां खा रहे हैं, या फिर नंगे पांव बाहर जा रहे हैं। अभी देखिए हमारे इंडिया में तो ओरल ODF फ्री हो गया है, अभी तो ओपन डेफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं स्टेट में ऐसा देखा गया है कि अभी भी लोग नंगे पांव खेतों में जा रहे हैं, शौच के लिए जा रहे हैं। तो जिस माध्यम से बड़ों और बच्चों दोनों में
1: दोनों
0: ये
1: को
0: शरीर में
1: ही।
0: प्रवेश कर
1: जी
0: रहा है,
1: जी बिल्कुल।
0: तो बड़ों को भी ये टैबलेट लेना ही है। साल में 2 बार 6 महीने के अंतराल में बड़े भी जरूर लें ये
1: और
0: टैबलेट।
1: कितना इनका खुराक होना चाहिए बड़ों में?
0: सबके लिए एक ही खुराक है, 400 mg की टैबलेट, एक फुल टैबलेट सबको ही लेनी है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को, बच्चों को टैबलेट चबा के खाने के लिए बोलना है, और बहुत मीठी गोली रहती है, ऐसे इसका कोई बच्चों को टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। टीचर्स को हम यही बोलते हैं कि सामने में पानी भी रखने के लिए, अगर बच्चे को चबाने में कोई दिक्कत हो रही तो पानी के साथ देने के लिए, लेकिन चबा के खाने से इसका जो असर
1: ज़्यादा
0: है
1: असर
0: वो ज़्यादा
1: ज़्यादा।
0: होगा।
1: जी जी
0: अगर वो डायरेक्ट स्वालो करेगा वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा।
1: ओके। तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा ताकि हर बच्चा कृमि मुक्त और स्वस्थ रह सके?
0: मैं सारे अभिभावकों से ये अनुरोध करती हूँ कि देखिए इस अभियान को सफल बनाने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को कृमि मुक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, और स्वास्थ्य कर्मियों एवं शिक्षकों द्वारा की दी गई सलाह का पालन करें। नेशनल डिवॉर्मिंग डे पर थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी देखभाल और थोड़ी हिम्मत में बहुत बड़ा बदलाव संभव है। तो जैसे कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नारा है, कृमि से छुटकारा सेहतमंद भविष्य हमारा, यानी कि बच्चे जो कि हमारा भविष्य है, हमारे फ्यूचर, हमारे नेशंस को आगे लेके जाएंगे, इनको स्वस्थ रहने के लिए ये टैबलेट 10 अगस्त को ज़रूर अपने बच्चों को खाने दें। धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर रेशमा, आप कार्यक्रम में आई और इस विषय पर हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आज की चर्चा में ये संदेश मिलता है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए कृमि संक्रमण से बचाव और समय पर उचित उपचार बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखिए, कृमि मुक्त बचपन स्वस्थ बचपन, स्वस्थ बचपन स्वस्थ भविष्य। इसे स्वस्थ विचार के साथ आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय था कृमि मुक्ति निरोग बचपन का संकल्प। इस विषय पर जानकारी के लिए स्टूडियो में उपस्थित थी हमारी विशेषज्ञ GDMO होम्योपैथी प्रोग्राम इंचार्ज नेशनल डिवॉर्मिंग डे डॉक्टर रेशमा बेगम। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा अनिमेश रॉय और हिमांजलि ओझा का, तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर्विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
4: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
6: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
4: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

0: परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक एफसीआरए पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह

0: करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: We have seen the comments.
3: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
2: While we are coordinated,
3: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और GSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
1: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
2: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
4: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से CBI ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी CBI जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली NCR में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, FCRA पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। UPI लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया।

उत्तराखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: त्रिवेणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 8 अगस्त की तारीख कैलेंडर की कोई आम तारीख लग सकती है, लेकिन भारत के इतिहास में ये तारीख सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई है। भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जारी था, जहां महात्मा गांधी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस तरह से भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान। आज भी भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की याद दिलाता है। जन जन में रोष था, आक्रोश था और ऊर्जा थी, बुलंदी थी कि किसी भी तरह से अब देश को आजाद करना ही है। मुंबई से जो लहर शुरू हुई थी उसने धीरे धीरे पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। अब गांव-गांव, शहर-शहर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर।

भारत छोड़ो आंदोलन का सिनेमा पर क्या असर पड़ा, इसकी एक मिसाल ये गाना है जो अभी आपने सुना। कवि प्रदीप ने जब ये गाना लिखा तो उन्हें अंग्रेज सरकार ने तलब किया और आरोप लगाया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी गाना है, पर उन्होंने बड़ी चतुराई से तर्क दिया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी नहीं बल्कि ब्रिटिश समर्थक गाना है। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। टॉकीज़ों में फिल्म को रोक रोक कर नौजवान बार बार इस गाने को दिखाने का अनुरोध करते थे। ये गाना जनमानस पर छा गया था। पूरे देश में अंग्रेजों का बहिष्कार किया जा रहा था, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बच्चे हों या नौजवान या बुजुर्ग। भारत के कोने कोने से लोग सड़क पर निकल आए थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर बस ये तय कर लिया था कि अंग्रेजों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी का आखिरी बड़ा आंदोलन बना, जिसने इस देश की बुनियाद रखी, जिसने इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी बहुत ही मुश्किल से, त्याग से, बलिदान से और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें हासिल हुई है। इस आजादी का मोल हर पीढ़ी को समझना होगा।

0: भाल के।
1: कोई भी देश अपनी सीमाओं से नहीं बनता, अपनी ऐतिहासिक इमारतों से नहीं बनता, अपने इतिहास से भी नहीं बनता। देश बनता है जनमानस से, उसकी जनता से और उसकी जनता की चेतना से। अगर हम सचेत रहें, जागरूक रहें, देश के प्रति जिम्मेदार रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, खासकर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करते रहें, तो ये माना जाएगा कि हम अपने आजादी का मोल समझ रहे हैं, हम अपनी आजादी की कीमत चुका रहे हैं, हम देश के प्रति अपनी निष्ठा को

ठीक तरीके से निभा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे काम बहुत निष्ठा के साथ कर सकते हैं, जैसे हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बिजली और पानी को व्यर्थ ना जाने दें, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हम करें तो देश के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की याद के इस दिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रति जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है।

8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन और आज त्रिवेणी में हमने आपको याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है और ये आजादी इतनी अनमोल क्यों है। तो अब इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के ए आर रहमान और

0: यह अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8:30 हुए हैं। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, न तो थके थे कदम, न ही हिम्मत हारी थी। आज से यानी आज 8 अगस्त 1942 की उस उमस भरी शाम, बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान से उठी थी एक ऐसी हुंकार जिसने हिला दी थी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के उस महानायक अध्याय को, जहां हर हिंदुस्तानी की जुबान पर एक ही मंत्र था, करो या मरो। ये आजादी की वो आवाज है जिसे न तो सलाखें रोक पाई और न ही ब्रिटिश सेंसरशिप का पहरा। इतिहास के पन्नों से गूंजती वही धड़कन, वही संकल्प लेकर हम हाजिर हैं आज इस विशेष दिन पर, और तरोताजा करते हैं दीवानों की यादें जिन्होंने अपने लहू से लिखा था स्वाधीनता का मुकद्दर। और हम सभी जानते हैं 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से है, अधिवेशन में ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और महात्मा गांधी का आह्वान था, करो या मरो। उन्होंने ये अमर मंत्र दे दिया था और बिना नेतृत्व के भी देश के कोने कोने में छात्रों, महिलाओं और आम जनता का सड़कों पर उतरना वाकई बहुत ही एक अलग किस्म का आंदोलन। और इस जन आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी, जिसके बाद भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ।

0: यह आवाज थी अरिजीत सिंह की और फिल्म का नाम था भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीत दिया था आरकू ने।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

0: आ रही हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर सुंदरा सोनिए सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय
3: आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: शिल्पा राव और जावेद अली को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था ये साली जिंदगी।
1: द्विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो

0: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: 11 बजे।
3: और अब वक्त है एक अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा आज यानी आज का पूरा दिन कैसे बीतेगा, है ना? कभी कभी ऐसा लगता है। क्या आपको पता है कि हमारा आज का दिन इस बात पर तय नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर तय होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, है ना? तो आज एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए। आज किसी की छोटी छोटी गलतियों को आप नजरअंदाज कर देंगे, खुद मुस्कुराएंगे और दूसरों को भी हंसने का मौका देंगे, और बेकार की बातों को भुलाकर जीने का जो मजा है ना, वो दोगुना हो जाता है। हाँ, हम तो आपसे ये जरूर कहेंगे कि विविध भारती को हमेशा याद रखिए।

0: संगीत हल्दीपुर और रोशनी बैपटिस की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म मर्डर टू का गीत। गीतकार सईद कादरी थे और संगीत दिया था संगीत और सिद्धार्थ हल्दीपुर ने।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: अब कहां जाएं हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
5: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
6: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
5: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
7: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
5: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
0: तनु वेट्स मनु, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना। गाने वाले कलाकार मोहित चौहान और उज्जैनी। इसे राजशेखर ने लिखा और धुन बनाई है कृष्णा ने।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी।
3: विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जीनत बीबी। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज द्वीप समूह के दो दिवसीय दौरे पर

0: श्री विजयपुरम पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति शाम को राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में शहीद स्मारक स्वतंत्र ज्योति और वीर सावरकर सेल में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद जेल परिसर का दौरा कर लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। कल वे फ्लैग पॉइंट पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे और वंदे मातरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा कर शाम को नई दिल्ली लौटेंगे। अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त को मनाया जाएगा। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। 17 अगस्त को मॉपअप दिवस होगा। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से बच्चों को दवा दिलाने और अभियान में सहयोग करने की अपील की है। अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से 12 अगस्त को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान इंटेंसिफाइड IEEC कैंपेन के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। और दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा कल सुबह 9:50 से डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह वंदे मातरम तिरंगा कॉन्सर्ट का सीधा प्रसारण अपने आधिकारिक YouTube चैनल पर किया जाएगा। ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइंस।
1: वक्त आपको सुनवा रही हैं, उनके साथ जुड़कर निसंदेह आप भी बिल्कुल जोशीली हो सकते हैं। आइए सुनते हैं सिंघम फिल्म का गाना। श्रेया घोषाल और अजय की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अजय अतुल की धुन है।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म रॉकस्टार का गाना सुनिए, आवाजें मोहित चौहान और एआर रहमान की, गीत इरशाद कामिल का, संगीत एआर रहमान का।

0: फिल्म रॉक स्टार का गाना था ये, आवाजें मोहित चौहान और ए.आर. रहमान की थी। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में अन्विता दत्त का लिखा गीत सुनिए, स्वर है शफकत अमानत अली का और फिल्म का नाम पटियाला हाउस। दोस्तों सुबह का समय है, नए गाने विविध भारती पर चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं और

हम समझ सकते हैं कि नए गानों का आप मजा ले रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं, है ना?

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं संदेश शांडिल्य के संगीत निर्देशन में मनोज मुंतशिर की रचना, आवाजें विजय प्रकाश और गायत्री गांजावाला की। फिल्म का नाम है लव यू मिस्टर कलाकार।

तो हम उम्मीद करते हैं आज के ये सभी गाने आपको बेहद पसंद आए होंगे। पूरे कार्यक्रम में विविध भारती के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, विविध भारती से जुड़े रहिएगा। तो अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी को दें आप इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गीतकार के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज गुलचंद बावरा पर केंद्रित है, एक ऐसी जुनूनी शख्सियत पर जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म संसार में जबरदस्त नाम कमाया।

0: लिखे तो दूसरी तरफ उन्होंने कुछ बड़े ही मस्ती भरे गाने भी लिखे।
1: दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, गौर से देखा जाए तो बस है पते पे पता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।
0: उन्होंने दोस्ती का फलसफा भी हमें समझाया।

0: देखिए जी, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। साकी वाले दिन मैं जन्मा था। कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए, तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए, हमारी एक बहन है कौशल्या देवी, जो जयपुर में रहती थी।
1: पढ़ाई लिखाई के बाद गुलचन बावरा को शौक लग गया लिखने का और वो चले आए मुंबई।
0: जब मैं आया था बम्बई में 1955 में, तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी। और आज इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना।
1: लेकिन मुंबई वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे गायक बनने के लिए। आपको बता दें कि गुलचन बावरा को रेलवे में नौकरी मिल गई थी और कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई और उसके बाद वो चले आए मुंबई। सन 1955 में वो मुंबई आए, रेलवे में क्लर्की करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए और गायकी के लिए जद्दोजहद करते।
0: मुंबई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बम्बई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ।
1: यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई मालगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था, वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये कविता उन्होंने अपनी डायरी में लिखकर रख ली और मनोज कुमार को उन्होंने दिखाई, जो उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये कविता याद रह गई। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई, तो इस कविता को एक नामी

0: गुलशन बावरा का नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है।
1: बात यूं है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था, तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। गीत लिखा चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जा। तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड

0: तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला, एक तीसरा गाना लिखना था भजन, तो उसने उसको बोला कि ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसने ये दोनों गाने लिखे। तो बोले, ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले, झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है, तो ये क्या लिखेगा, ये तो पिक पॉकेट था, पॉकेट मार था लग बावरा। तो उस फिल्म में शैलेंद्र और हर्षद के भी गीत थे। तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई, ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं कि ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले, हाँ बिल्कुल, इसी लड़के ने लिखे हैं। तो बोले, अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया।
1: तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीरजी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा, जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था
2: मैं क्या जानू।

1961 में गुलशन बावरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी ताकत से फिल्मों में गाने लिखने लगे। गुलशन बावरा ने सबसे ज्यादा काम आरडी बर्मन के साथ किया। पंचम के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ही मशहूर रही है। गुलशन बावरा ने एक एल्बम भी जारी किया जिसमें वो पंचम से जुड़ी दोस्ती की और गाने बनने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम का उनके पास फोन आया। उन्होंने फोन पर गुलशन बावरा को एक धुन दी जो थी चाबू चाबू चिया चिया चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा, ये क्या है, इस पर मैं क्या गाना लिखूं? तो पंचम ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं। दरवाजा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू, गीत क्या है, धुन क्या है, तू समझ गया गुल्लू, अब जल्दी से लिख दे गाना गुल्लू।

तरह से बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे माहौल में गुलशन बावरा और पंचम ने कुछ अनमोल गाने दिए। गुलशन बावरा को दो बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस गाने के

सफाई फिल्म का ये गाना सुन लीजिए और ये सोचिए कि गुलशन बावरा ने किस तरह के मजेदार और सुरीले गाने दिए फिल्म संसार।

बाबरा बहुत लंबे समय तक लिखते रहे, यहां तक कि अजय देवगन के अभिनय वाली हकीकत फिल्म का ये मशहूर गाना सुनिए जो उनके बाद के दौर का गाना है।

0: वैसे आपको बता दें कि गुलशन बावरा पर्दे पर भी नजर आए फिल्म जंजीर के इस गाने में जो शख्स हारमोनियम बजाता हुआ थिरक रहा है वो गुलशन बावरा ही है।
1: देवा

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म संसार को बहुत ही मस्ती भरे और अनमोल गाने देने वाले गीतकार गुलशन बावरा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जीनत बीबी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण पूरे कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह सेवा देश के 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। रोजाना

0: करीब 4 लाख मरीज इसका उपयोग कर रहे हैं। यह उपलब्धि देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वीवीआईपी दौरे के चलते आज और कल कई मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक वीआईपी रोड और सेलर जेल मार्ग पर यातायात नियंत्रित रहेगा। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित समय में इन मार्गों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है। आपातकालीन वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी और बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तथा शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत राज्य बाल समिति द्वारा माइल तिलक गाँव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाल श्रम को कहे ना, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार तथा बच्चे हमारा भविष्य है विषयों पर आधारित रचनात्मक प्रतियोगिताओं में बच्चों एवं अभिभावकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइंस।
1: के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चली जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था, सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिन भर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ, उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूं। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही। तो तुम्हें याद हूं मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूं। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई, तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब यह जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ।

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निविश को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने

ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, ना अपने परिवार में ना ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो, मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं। निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं, मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती, स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद यह कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया, आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे यह एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेल जोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को

0: वारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो। तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो। निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है, मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती। बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा, प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी। तुम्हें मुझसे प्यार

0: हुआ क्या? नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था, फिर भी यह ठीक नहीं है। किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया। पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं। निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता, स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता, तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की, कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है, मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध, कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच

0: की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं, और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानी से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेंत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे।
1: क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई।
0: हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है। स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा। उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया।
1: सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पिएंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में। दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त बन के रहते, काश उसे मुझसे प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की। शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे।
1: स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है?
0: अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही स्वाति के दिल में कुछ झन्ना के बिखर गया। क्या मैं सिर्फ उसकी ड्राइव टाइम कॉल थी?

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर वन बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने यह जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? निमिष ने आंखें उचका के पूछा। सर, मुझे ले चलिएगा ना, इस बार आप किसी को वाउचर दीजिएगा मत, राकेश ने फिर से खुशामद की। तुम क्या मेरे जीवन साथी बनने की फिराक में हो? निमिष ने हंसते हुए उसकी मौज ली। नहीं सर, आप कपल वाले ट्रिप, कॉन्सर्ट टिकट, मूवी और डिनर वाउचर सबको बांट देते हैं, इस बार चलिए ना, साथ चलते हैं, राकेश ने अपनी अर्जी का कारण स्पष्ट किया। जाओ अपना काम करो, निमिष ने उसे ठेल के वापस उसके डेस्क पर भेज दिया। राकेश को उसके 2-3 साथियों ने घेर लिया। अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो, दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उसको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि

गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने जमाने के दिल जले आशिक हैं, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब। राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और ग्लास केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा, कोई कह सकता है कि ये इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था। शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, काश दोस्ती ही बनी रहती, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

दोस्तों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का, संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहतनामा,
0: एक आवाज जिसमें है जोश जो

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जीनत बीबी। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। संसद ने एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य एमएसएमई के भुगतान में देरी कम करना और विवाद निपटारे को सरल बनाना है। विधेयक के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को एमएसएमई के बिलों का भुगतान टी रेट्स प्रणाली से करना होगा। विवाद न सुलझने पर 30 दिनों में आर्बिट्रेशन जरूरी होगा। समग्र शिक्षा के तहत ननकौरी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित होंगे। 12 अगस्त को कपंगा और 13 अगस्त को कमोटा में शिविर लगेंगे। बच्चों का आकलन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और एनिम्स के शिशु रोग विभाग द्वारा विश्व स्तनपान

0: मनाया गया। इस दौरान जीवन की सुदृढ़ शुरुआत के लिए स्तनपान थीम के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य शिशुओं के पोषण, स्वास्थ्य, विकास और स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइंस।
1: काफी था, रन बन सकते थे। सुनील गावस्कर ने 221 रन बनाए थे, बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी
2: जी।
1: और उस समय मैं कमेंट्री कर रहा था, ओवल टेस्ट मैच की बात है, सभी को याद होगा। और उस समय हमने देखा कि कुछ बूढ़े किस्म के लोग वापस जा रहे थे मैदान से, तो मैंने फिर अंग्रेजी कमेंटेटर को कहा कि मैं आता हूँ दो मिनट जरा पूछ के कि ये लोग छोड़ क्यों रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो उन्होंने कहा भाई हमें दिल की बीमारी है और हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि जब भी इस तरह का कोई रोमांच आए तो मैच छोड़ दीजिए, यह आपके दिल के लिए भारी पड़ सकता है।
2: अरे बाप रे।
1: तो मैंने ये सोचा कि ये जो बात यहां मौजूद है, भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: वाह।
1: क्योंकि जिन्हें दिल की बीमारी है शायद उनके डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे होंगे कि ये आंखों देखा हाल सुनना बंद कर दें, क्योंकि इस मैच का रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो
2: क्या सुंदर बात।
1: तो उस समय जब ये कहा तो ये मुझे पता नहीं था कि ये
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ इज मूविंग इन फास्ट मोड। फॉर हैसल फ्री बैंकिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
5: वेयर यू गेट डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट हु अंडरस्टैंड्स योर नीड्स, ऑफर्स स्मार्ट advice and get every task done at lightning speed, giving you seamless banking and many other exciting benefits.
3: Visit your nearest SBI branch today and activate SBI Premier Banking. Terms and conditions apply.
1: कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने कोई लकीर छोड़ी है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, अच्छी बात है, उस लकीर के ही लिए वो प्रशंसा कर रहे हैं
2: जी। सुशील जी, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: अपने समय के साथी कमेंटेटर्स को याद कीजिए और उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाइए सर।
1: हाँ नहीं देखिए, पहली बार जब क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे ना, तो कई ऐसे कमेंटेटर होते थे जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं था।
0: हाँ।
1: अब आकाशवाणी पे ये समझ में नहीं आ रहा था शुरू में कि आवाज देखें, भाषा देखें, क्रिकेट का ज्ञान देखें। तो शुरू में कई लोग जिनको केवल भाषा और आवाज थी लेकिन क्रिकेट का ज्ञान नहीं था, तो ऐसे लोगों को भी चुना। तो एक मैच का मुझे याद है, वो 1969 मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं भी नया नया था और मेरे साथ वाले जो सज्जन थे वो भी नए थे। तो वो एक नक्शा लेकर आए थे।
0: हाँ।
1: कि वो देख रहे थे कि तीन स्लिप, एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर ऐसा। तो अब उनको ये पता नहीं था कि अगला ओवर जो होगा वो दूसरी तरफ से होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो वो नक्शा तो उन्होंने बदला नहीं। तो लाला अमरनाथ हमारे एक्सपर्ट थे।
0: जी जी।
1: तो जब ओवर कंप्लीट हो गया और दूसरी तरफ से बॉलिंग होने लगी, तो उन्होंने कहा, लाला जी ये क्या हो रहा है, ये तो थर्ड मैन से बॉलिंग क्यों कर रहा है। तो लाला अमरनाथ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, ये इसको नक्शा वापस सीधा कर दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया, अब बोलिए। तो ये कई इस तरह की घटनाएं भी होती थी।
0: जी जी।
1: लेकिन कोई बात नहीं, वो सीख के दिन थे, शुरुआती दिन थे। तो कई कॉमेंटेटर सीख रहे थे और आकाशवाणी ने भी समझा कि क्रिकेट का ज्ञान होना चाहिए, आवाज़ तो होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, क्रिकेट का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी एक चीज़ में कमी हो तो बात अधूरी रह जाती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। उस ज़माने में जब आपने क्रिकेट कमेंट्री शुरू की, तो मैंने एक चीज़ हमेशा जानी है कि पैसे कम मिलते थे और अपनी जेब के खर्च डाल के आप यात्राओं पर जाते रहे, लेकिन वो जुनून कायम रखा।
1: बिल्कुल। पहली कमेंट्री मैंने 15 रुपए दिन में की थी रणजी ट्रॉफी की।
0: ओहो।
1: और जब 1979 में मैं इंग्लैंड गया तो 100 रुपए प्रतिदिन।
0: हाँ।
1: और पाकिस्तान गया तो शायद 100 रुपए प्रतिदिन। पाकिस्तान 1978 और 82 दोनों बार पाकिस्तान गया मैं, और वो यात्रा भी अभूतपूर्व रही। मतलब पाकिस्तान का तो एक मैं कई बार किस्सा बताता भी हूँ।
0: जी जी।
1: 1982 की बात है, और हमारे जो मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़ थे, जो उनका काफ़ी वहाँ पर रुतबा था, सब लोग जानते थे उनको वहाँ पाकिस्तान में। और अब हमारी टीम ने एक पार्टी दी थी पाकिस्तान में, और फतेह सिंह राव गायकवाड़ खड़े हुए बाहर सबको रिसीव कर रहे थे, मैं भी था और सुनील गावस्कर साहब भी थे। और अचानक आवाज़ उठी कि वो आ गई। सबने कहा, भाई कौन आ गई, मेरी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, छोटा यंग था बिल्कुल आपकी तरह। मैंने कहा, भाई कौन आ गई, कौन स्टार आ गई। तब देखा एक मिडिल एजेड वुमन वहाँ पर आई, और गायकवाड़ साहब ने परिचय कराया कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं, और दुनिया इनकी मुरीद है, भारत के कप्तान हैं, आप तो इनको जानते ही होंगे। तो उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो जहीर अब्बास और इमरान खान को जानती हूँ।
0: ओ, ओ,
1: तो
0: ओ।
1: गावस्कर साहब को पूछा कि भाई कोई बात नहीं, आप तो इन्हें जानते होंगे ना, ये मल्लिका तरन्नुम नूर जहाँ हैं।
0: ओ।
1: तो गावस्कर साहब तो कद में भले ही छोटे हैं लेकिन स्वाभिमान के मामले में बड़े हैं। उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूँ।
0: अरे बाप रे।
1: तो ये मैं कभी भूलता नहीं कि
0: मौके पे चौका,
1: विरोधी मौके पे चौका, आप सही कह रहे हैं। तो आप विदेशी भूमि पर जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो और वहाँ पर स्वाभिमान की बात, तो गावस्कर साहब के

0: चरित्र में आज भी यही बात देखने को मिलती है कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में हिचकते नहीं है।
1: क्या बात है, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं। ऐसा ही

0: 咁样向住住。
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि जब कमेंट्री करते हुए बहुत तनाव भरे पल आते रहे और जब यूं लगा कि मैच जो है वो एक कच्चे धागे से लटका हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता है, ऐसे समय में आपने कहा कि, और ये हमने देखा भी है, आप और पूरी टीम तटस्थ कमेंट्री करती रही, लेकिन अंदर से दिल को क्या महसूस होता रहता था और उसको कैसे बैलेंस करते थे आप?
2: नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि दिल तो चाहता है कि भारत जीते
1: जी,
2: और चूंकि आप निष्पक्ष रहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कहती है कि नहीं, और फिर पब्लिक जैसी आवाज आती है ना,
1: हाँ।
2: आप तो रेडियो के खुद ही आवाज है एक मशहूर, तो ये जानते हैं कि पब्लिक की आवाज के ऊपर से आपकी आवाज जानी चाहिए, आपकी आवाज खोनी नहीं चाहिए
1: जी,
2: तो पब्लिक की आवाज के हिसाब से ही आपकी आवाज उतार चढ़ाव होते हैं और पता लग जाता है अनुभव से कि पब्लिक आवाज कैसी आ रही है, सुनाई भी देता है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि ये संतुलन, कि आप सब चीजों के पार जाकर अपने आप को संतुलित करें और एक संतुलित प्रदर्शन करें, जैसे खिलाड़ी करता है ना मुसीबत में, वैसे ही आपकी कमेंट्री का भी ये एक तेजाबी परीक्षण है,
1: क्या
2: कि आप कैसी कमेंट्री कर रहे हैं। आप बहुत चिल्ला तो नहीं रहे, क्योंकि चिल्लाना भी नहीं चाहिए, आपकी आवाज फट तो नहीं रही, कई आवाज फट जाती है क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो रोमांच है वो इतना बढ़ जाता है कि आप सनसनीखेज आवाज पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। आपको संतुलित ढंग से और उसी हिसाब से जितना रोमांच है बस उतना ही परोसे, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। एक अच्छे कमेंटेटर की पहचान ऐसे ही क्षणों में होती है।
1: बिल्कुल सही है सुशील जी। यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: बहुत संकोच से ये कहना पड़ रहा है और पूछना पड़ रहा है कि मैं आपसे एक कमेंट्री सुनना चाहता हूं, इमेजिनरी कमेंट्री। देखिए, हमारे सुनने वालों में बहुत अलग अलग तरह के उम्र के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो मेरी उम्र के हैं, जिन्होंने पूरा रेडियो कमेंट्री का दौर देखा है और फिर टेलीविजन आते और फिर रेडियो कमेंट्री को थोड़ा कम होते देखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडियो कमेंट्री का सबसे सुनहरा दौर देखा है और ट्रांजिस्टर कान पे लगा के सुनते रहे, जिसमें लोग पूछते थे भाई साहब स्कोर क्या है, है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी जनरेशन के बाद के हैं, जिन्होंने ये नहीं सुना है, उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक झलक हम सुन पाए तो अच्छा होगा।
1: नमस्कार, मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम पर मैच खेला जा रहा है और भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और भारत के दोनों ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर और चेतन चौहान पिच पर पहुंच चुके हैं। पूरा स्टेडियम खचा खच भरा हुआ है, 50,000 दर्शकों की मौजूदगी है और मैं जहां भी जा रहा हूं ना, आज होटल की रिसेप्शनिस्ट से लगाकर जो रिक्शा चालक है वो भी एक ही बात कर रहा है कि आज भारत और पाकिस्तान का यह मैच होगा, किस प्रकार, कौन जीतेगा, एक ही चर्चा का विषय है। क्योंकि क्रिकेट का खेल, भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है ना,

0: ये मुकाबला सभी दिलचस्पी के मामले में सभी मुकाबलों का बाप कहा जाता है। तो पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इमरान खान पवेलियन की तरफ से, और गावस्कर को वो गेंद करेंगे। जो फील्डिंग की जमावट है वो इस प्रकार है, तीन स्लिप है, एक गली है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑफ है या ऑफ साइड की फील्ड, और ऑन साइड में एक मिड ऑन मिड विकेट और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। छह फील्डर्स ऑफ साइड में, तीन फील्डर्स ऑन साइड में। इमरान तैयार पवेलियन की तरफ से गेंद कर रहे हैं गावस्कर को, ओवर पिच्ड ऑफ स्टंपर, और गावस्कर आ गया है, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से चैनल के लिए। गजब गजब गजब, इतना शानदार है कि मेरा मन एकदम झूम उठा। जो सुनने वाले हैं वो भी ताली बजा रहे होंगे, और मैं ये पूरा जो आपने ये जो समा बांधा, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इतना शानदार दौर याद दिला दिया।
1: बहुत धन्यवाद। और रेडियो के श्रोताओं से बात करके तो मैं हमेशा भावुक रहता हूं, क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत हुई है, मेरी पहचान भी यहीं से स्थापित हुई, और आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया।
0: जी अभी तो और बातें करेंगे, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, रॉकी फिल्म का गाना सुनते हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम।

0: सुशील जी, कमेंट्री का पूरा एक दौर देखा आपने और बहुत अलग अलग तरह के कमेंटेटर्स को सुना, हिंदी के और अंग्रेजी के, आपके बहुत फेवरेट कमेंटेटर्स कौन से रहे हैं?
1: नहीं, देखिए, मैं जॉन अर्नॉट को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक कवि भी थे
0: जी,
1: तो उनका क्रिकेटिंग नॉलेज उतना नहीं था लेकिन उनकी भाषा अद्भुत रहती थी। तो एक ही बात मैंने उनसे सीखी कि कम शब्दों में ज्यादा व्यक्त करो, जो कहते हैं ना शब्दों की किफायत, जैसे अंग्रेजी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कहते हैं, तो जब आप इस तरह की किफायत वापरते हैं तो असर ज्यादा पड़ता है। सही शब्द सही जगह, तो असरदार शब्द, तो ये बहुत महत्व की बात मैंने उनसे सीखी। और मैं कमेंट्री बॉक्स में लेकर आया था 1979 में, जब इंग्लैंड गया तो उनको अपने कमेंट्री बॉक्स में लेकर आए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा हर शब्द का एक चित्र होता है।
0: वाह,
1: जैसे आपने कहा कि ही ड्राइव्स थ्रू द कवर तो फोर रन, तो इसका मतलब कि उसने हल्के से खेला, और जब आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू दी कवर फोर रन, तो इसका मतलब जोर से खेला है। तो शब्द का एक चित्र होता है।
0: क्या प्यारी
1: तो
0: बात।
1: ये शब्द का चित्र के रूप में जब आप खींचेंगे तब आपकी कमेंट्री ऐसा लगेगा सजीव चित्रण होगा। तो ये बात मैंने उनसे सीखी
0: जी,
1: और अपनी कमेंट्री में मैं लगातार सीखता, आज भी सीखता हूँ, कई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो ये उसमें आप बेहतर होते हैं। और इंसान होने का सबूत क्या है, अच्छे इंसान होने का यही है कि आप निरंतर सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिज्ञासु रहें, तभी तो आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये अन्यथा उम्र आपको मार देगी। तो लेकिन उसको जीतना है तो यही करना है कि आप आगे बढ़ते रहें, बेहतर होते रहें, और जो आपको सुन रहे हैं उनको लगे कि भाई वो भी बेहतर अनुभव कर रहे हैं जब सुन रहे हैं आपको।
0: क्या प्यारी बात है। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा जीवन में आप और क्या करते रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या रहा है?
1: नहीं, वैसे तो मैं इंजीनियर हूं, और मैं एक बात जानता हूं, भारत जैसे देश में अगर आप व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो तो लोग आपकी कला को भी ठीक से नहीं आंकते हैं। सच्चाई है, देखिए लाख लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि आपको व्यावसायिक रूप से भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और ये हर कलाकार को समझना चाहिए कि वो एक कलाकार ही नहीं है, एक परिवार का हिस्सा भी है, परिवार का एक व्यक्ति भी है, वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी प्रेमिका का प्रेमी भी है। ये तमाम चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, और वो जिम्मेदारियाँ भी उसकी है। अगर पिता ने उसके प्रति कोई सपना देखा है व्यावसायिक रूप से सफल होने का, तो वो भी एक आपकी जिम्मेदारी है कि वो सफल सिद्ध हो
0: जी।
1: और साथ में आपकी कला को तो आगे बढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्रों को आप छोड़ दें तो फिर जीवन असफल हो जाता है, लोग आपकी गणना या आपका अंकन ठीक से नहीं करते। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बहुतेरी भूमिका, तो मैं अब जैसे शोरूम है हमारा इंदौर में, 150 आदमी काम करते हैं
0: जी,
1: जहाँ एक 15

0: रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे और आज 4 शोरूम्स हैं हमारे, कुल मिलाकर 150 आदमी काम करते हैं यहाँ से वहाँ तक, और बेदाग यानी कि बिल्कुल बेदाग जिंदगी, अभी तक किसी का चुकाना बाकी नहीं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण को और जीवन की सफलताओं को नए पैमाने प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल मेरे जहन में था कि आपने तमाम देशों की यात्राएं की क्रिकेट कमेंट्री करते हुए, सबसे यादगार और दिलचस्प यात्रा कौन सी थी?
0: नहीं, दो बातें मैं जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो ऑस्ट्रेलिया
1: जी
0: मैं गया था, सबसे अच्छी जगह मुझे वही लगी ऑस्ट्रेलिया। 3 महीने का दौरा था 1977-78 में, और मैं भूलता नहीं कि वहाँ पर जो कीथ मिलर हैं वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में, उनके फोटो में एल्बम में बचपन में लगाया करता था। कीथ मिलर यानी क्रिकेट के ऐसे व्यक्ति जो अगर 10 ऑलराउंडर्स ऑल टाइम बेस्ट अगर गिने तो कीथ मिलर का नाम उसमें लेंगे। तो एक दिन मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में होकर आ रहा था, कई यंगस्टर्स भी जो थे ना जवान लड़के लड़कियाँ आते थे कि एक लड़का पता नहीं किस भाषा में बहुत जोर से मुंह चला रहा, बहुत तेजी से मुंह चला रहा, ये बातें बड़ी फैल रही थी। और 20-20 लोग हमारे कमेंट्री 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया के, कि अजीब, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी के अलावा कोई कमेंट्री होती नहीं थी उस समय।
1: जी जी।
0: तो एक दिन मैं कमेंट्री का सेशन करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा देखा कीथ मिलर पीछे खड़े हैं, और मेरे तो होश उड़ गए, तो मतलब पसीना पसीना हो गया। मैं छोटा था तो उम्र में 29 साल का था, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बॉय आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड ऑफ वॉट एवर यू सेड, बट वॉट एवर वेंट इन टू माई ईयर्स वॉज वेरी स्वीट।
1: वाह वाह।
0: ये जो मैं समझता हूँ जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये कमेंट था कि भाई वो जो आदमी आपकी भाषा नहीं समझ रहा वो आपको कह रहा है कि आप उनके कान में मिश्री जैसी आवाज आ रही। और एक और कमेंट जो मुश्ताक अली साहब ने, महान खिलाड़ी इंदौर के मुश्ताक अली साहब और मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, 1936 में ऐसे व्यक्ति जो पहली बार इंग्लैंड में जिन्होंने शतक लगाया
1: जी,
0: पहले भारतीय। तो उन्होंने एक बार कही कि लता मंगेशकर ने गायकी में ईश्वर ने भेजा उनको, मुझे बैट लेकर भेजा बल्लेबाजी करने के लिए, और सुशील दोषी तुमको भेजा हिंदी की कमेंट्री करने के लिए।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: ये बहुत बड़ा कमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा कमेंट जो मुझे कहा आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर जिन्होंने मुझे पहले भगाया था ना
1: जी जी,
0: उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी आवाज एक ईमानदार आवाज है,
1: अद्भुत।
0: तो मैं ये समझा कि तरह तरह की आवाजें, मीठी आवाज, मोटी आवाज, बच्चन बैरिटोन, पतली आवाज है ना, सुरीली आवाज, लेकिन ये ईमानदार आवाज आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कमेंट तो मैंने अपनी जिंदगी में सुना नहीं।
1: वाह।
0: तो ये जो बातें मैं कभी भूलता नहीं। तो ये तमाम चीजें, और एक किस्सा मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ
1: जी जी,
0: कि वो जो भाषा की बात कर रहा था, लालित्य की बात कर रहा था हिंदी भाषा की।
1: जी जी जी।
0: फिरोशाह कोटला ग्राउंड पर सुनील गावस्कर 86 रन पर नॉट आउट थे, और शाम का वक्त था, तो मैंने, मेरे हाथ में माइक्रोफोन था, मैंने कहा शाम ढल रही है और मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है।
1: आहा, तो सुंदर,
0: इतना अच्छा लगा अखबारों में भी छपा कि इतना बढ़िया वर्णन, एक तरफ डूबता हुआ सूरज, दूसरी तरफ भारत का सूरज जो अभी भी विद्यमान है चमक के साथ। तो ये कब हो सकता है? जब आप साहित्य पढ़ते हो।
1: जी जी जी।
0: अगर आप साहित्य नहीं पढ़ते हो, रोमन लिपि में आप समझते हो हिंदी, तो ये बातें आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते।
1: और उस लेवल पर मैच को महसूस करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
0: बात। सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना अभी, कि जो आप महसूस करोगे तो महसूस कराओगे। ये जिंदगी में अगर आपने रखा है तो आप सफल कमेंटेटर या जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो उसमें कामयाब होंगे।
1: बिल्कुल। सुशील जी, कितना सुंदर वर्णन शाम का आपने किया, और मुझे इस पर एक गाना याद आया जो मैं जानता हूं कि आपका पसंदीदा है, सुहानी शाम ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे।

0: सुशील जी, सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स कौन से रहे आपके?
1: नहीं, मैं सुनील गावस्कर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो स्वाभिमानी भी है, तकनीक उनकी अद्भुत, ऐसी तकनीक मैंने किसी की नहीं देखी। बिना हेलमेट के आप वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे पिचेस पर ढकी हुई नहीं है
0: बिल्कुल,
1: और बाउंसर्स की कोई सीमा नहीं है, आपके शरीर पर आक्रमण कर रहा है आदमी, और एक नहीं चार चार एक साथ। वो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रिकेट खेला जब दुनिया में सबसे खूंखार बॉलर्स दुनिया में थे।
0: yes.
1: आप वेस्ट इंडीज में देखे कि एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल, यू नो, कॉलिन क्राफ्ट, या पाकिस्तान में देखो तो इमरान खान और वसीम अकरम, इंग्लैंड में देखे तो जॉन स्नो, है ना, तो ये तमाम, या ऑस्ट्रेलिया में देखो तो टॉम्पसन और लिली, इतने खूंखार बॉलर एक समय दुनिया में कभी भी नहीं रहे।
0: जी जी जी,
1: उन सब बॉलर्स को अनढके विकेटों पर, पिचों पर उन्होंने बिना हेलमेट के जिस तरह से खेला, दुनिया का कोई दूसरा को नहीं खेल पाता। तो मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा कोई तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट को स्वाभिमान जिसने दिलाया, ये तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बैटर जरा घबराते थे,
0: जी जी,
1: वो स्वाभिमान उन्होंने दिलाया भारत को।
0: जी जी, और विश्व क्रिकेट में कौन पसंदीदा रहे हैं?
1: नहीं, विश्व क्रिकेट में जो, एक तो ये है कि डॉन ब्रैडमैन के बड़ा तो कोई राय नहीं, ऐसा जैसा इयन चैपल ने भी कहा कि उनके साथ किसी की भी तुलना करना यानी कि क्रिकेट का ही अपमान है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनको मैंने खेलते भी नहीं देखा, उनसे मुलाकात जरूर हुई
0: जी,
1: लेकिन उन्हें खेलते भी नहीं देखा
0: जी,
1: लेकिन उनके रिकॉर्ड से बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अगर बैटर्स कहें तो सचिन तेंदुलकर
0: जी,
1: बहुत बड़े बल्लेबाज वो भी अपने आप में, और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन की गली में खेल को ले जाकर खेलना,
0: वाह वाह,
1: अगर किसी व्यक्ति में था तो वो सचिन तेंदुलकर
0: बिल्कुल,
1: कि वो खेल की धारा को मोड़ देते थे
0: जी। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त आप कहां थे और क्या?
1: नहीं, उस समय तो कमेंट्री हुई नहीं हिंदी में भी, क्योंकि उस समय क्या था कि

0: इन्हें भी गंभीरता से लिया ही नहीं था कि जो वनडे क्रिकेट है ना, ये कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी खुद ही ने टिकटें कोई अमेरिका की ले ली थी सेमीफाइनल की वक्त ही, उनको लगा कि जीत ही नहीं पाएंगे
1: जी।
0: तो ये तो हम लोग तो कमेंटेटर थे, तो हिंदी की कमेंट्री नहीं हुई उस समय। क्या कहते थे भारत में कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है वो शास्त्रीय क्रिकेट है, और वनडे क्रिकेट जो है पायजामा क्रिकेट है।
1: जी जी।
0: बाद में T20 क्रिकेट को चड्डी क्रिकेट कहना शुरू कर दिया, और T10 क्रिकेट जो आया उसके बाद तो हमने सोचना ही बंद कर दिया।
1: जी बिल्कुल, कुल मिलाकर जो टेस्ट क्रिकेट है वो सही मायनों में क्रिकेट है,
0: रेड बॉल क्रिकेट जो होता है ना सही, क्योंकि गेंद स्विंग और सीम होती है और परिस्थितियां ऐसी रहती है जो बॉलर और बैटर को बराबरी का मौका देती है, इसी कारण वो जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट मानते हैं।
1: जी बिल्कुल। सुशील जी, बहुत सारी किताबें आपकी हैं और उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो है आंखों देखा हाल, जो आपकी एक तरह से बायोग्राफी है। उसके अलावा भी क्रिकेट पर बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, अखबारों में आपके कॉलम्स लगातार हम पढ़ते हैं, ये जो लिखने वाला मामला है इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: नहीं, ये मैं 1966 से ही लेखन भी करता हूं।
1: जी,
0: मेरा पहला लेख 1966 में छपा था, कमेंट्री तो मैं 1968 में मैंने पहली की, लेकिन 1966 में मेरा पहला लेख छप चुका था। तो लेखन के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति मेरी आस्था और लगाव लगातार बना रहा, और इसी कारण मेरी भाषा हमेशा ठीक ही रही हिंदी के हिसाब से। तो ये मैंने बहुत सारी 15 किताबें, जैसे आपने जिक्र किया अभी, कुछ 15 किताबें, और सबसे मेरी इच्छा थी कि एक किताब ऐसी भी लिखूं जो क्रिकेट कमेंट्री पर हो।
1: जी जी।
0: तो क्रिकेट कमेंट्री एक कला एक विज्ञान नाम से पुस्तक एक मैंने लिखी, शायद दुनिया की पहली पुस्तक है जो कमेंट्री पर, कमेंट्री कला के हिसाब से
1: जी
0: लिखी हुई। तो वो किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है, और वो किताब की 65,000 प्रतियां बिक चुकी हैं।
1: वाह।
0: तो जो बहुत बड़ा, क्योंकि आज के जमाने में लोग पढ़ते कम
1: जी,
0: फिर भी 65,000 कॉपियां उसकी बिक चुकी हैं। तो एक ये जो मुझे लगता था कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मुझे कर देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम किताबें भी हैं और कॉलम्स भी लगातार अभी भी आप लिख रहे हैं।
0: हाँ, करीब 5,000 से ज़्यादा लेख और कॉलम्स, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पूर्ण बनाती है।
1: जी,
0: ये कॉलम लिखना, उसमें पैसा तो कोई इतना रहता है नहीं, पैसा तो रहता है मुफ्त में तो मैं लिखता नहीं
1: जी,
0: लेकिन ये भी है कि एक जो कला ईश्वर ने आपको दी है उसको बराबर पूरा करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि लोगों तक आपके विचार बांटना चाहिए, इससे पता चलता है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तुर्रम खां समझें
1: जी,
0: और लोग आपको नहीं समझें तो क्या अर्थ है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया भी आप समझें।
1: जी जी। आपका अपना एक डिसिप्लिन और आपकी अपनी एक फिटनेस भी एक एनवायरेबल है, उसके बारे में बताइए।
0: जीवन में देखिए उत्साह
1: जी,
0: और दूसरी बात, आप जब तक क्रिएटिव हैं, यानी कि आप रचनात्मकता जब तक आप में हैं तब तक आप जवान हैं, और रचनात्मकता जिस दिन गई और जिस दिन आपको लगा कि आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं तब आप वेजिटेबल हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि रचनात्मकता आज भी मुझ में सीखने की वही इच्छा शक्ति, अच्छी चीज़ों के प्रति प्रशंसा का वही भाव, और सबसे बड़ी बात कि चुनौती को हर बार स्वीकार करने की इच्छा, ये आज भी बनी रहती है। और जब तक ये बनी है तब तक मैं अपने आप को काफ़ी स्फूर्तिमान और काफ़ी जोश मुझ में रहता है, कुछ भी नई चीज़ें करता ही रहता हूँ। अभी भी मेरे मस्तिष्क में 2-3 किताबें लिखने का है, तो जो भी साथ में है, एक बहुत लंबी योजना नहीं बनाता हूँ, जो योजना बनाई उसे पूर्ण करो और कार्य रूप में बदलो।
1: यहाँ गाना सुनते हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।

0: आपने आज इस बातचीत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि जंगली सपने भी सच होते हैं, वाइल्ड ड्रीम्स। इस बातचीत को दुनिया के कोने कोने में हिंदी भाषी लोग सुन रहे हैं, देश के कोने में किसी छोटे कस्बे में आंखों में सपने लिए कोई नौजवान सुन रहा हो, उससे भारत के महान क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बस ये कहता हूं कि अपने आप को एक तो कम मत आंको। देखिए, मेरी तरफ आप ध्यान दें, मेरी कहानी की तरफ ध्यान दो तो बचपन में मुर्गा बनने की कहानी, मास्टर से डंडे खाने की कहानी और सप्लीमेंट्री लाकर पास होने की कहानी। एक मामूली आदमी भी अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन सकता है और पद्मश्री की उपाधि तक भी पहुँच सकता है, तो आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हो भाई लोगों, आप लोग तो आगे बढ़ ही सकते हो और दिखा दो कि आप में दम है। क्योंकि हर व्यक्ति में संभावना अनंत रहती है, संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है।
0: जी, जिस पल पद्मश्री की घोषणा हुई आप कहाँ थे और इस खबर के बाद किस तरह की कैफियत आपकी और आपके परिवार की थी?
1: नहीं, देखिए 2016 में मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ और मैं तो दिल्ली में कमेंट्री कर रहा था।
0: अच्छा,
1: मुझे पता नहीं था कि पद्मश्री मिल सकता है। तो मेरे बेटे का फोन आया कि कुछ लोग आए और पूछताछ कर रहे हैं और पता नहीं कि क्यों पूछताछ कर रहे हैं। वो उनको लगा कि कोई छापा तो नहीं पड़ रहा तो वो घबराया तो मुझे फोन किया। तो मैंने कहा मुझे बात कराइए, तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली में था, मैं कमेंट्री कर रहा था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही कुछ पूछना है, तो भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं उन्होंने
0: जी।
1: और जब भोपाल आया, वहां से ट्रेन से आया
0: जी,
1: भोपाल उतरा मैं, तो भोपाल से फिर मुझे एक दिन पहले जब उतरा तो किसी का फोन आया दिल्ली से कि आपको पद्मश्री देने की घोषणा हुई और आपको स्वीकार है क्या? तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी अगर उपाधि और देश अगर इतना प्यार कर रहा है तो मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। तो ये हुआ, फिर इंदौर आ गया, फिर घर पे मैंने फोन से बताया माता पिता। मेरी माँ के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वाकांक्षा थी
0: जी, जी,
1: महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उनका मुझ पर बहुत प्रभाव
0: जी।
1: पिताजी बहुत सीधे साधे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, बच्चे का सपना पूरा करना बस। और माँ बहुत महत्वाकांक्षी, बच्चे को आगे बहुत नाम कमाना है, गरीबी में नहीं रहना है, ये उनको बड़ा था और उनका सपना भी मुझे पूरा करना था।

0: ने एक बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी माँ तब जिंदा थी,
1: जी जी
0: उनके जीते जी पद्मश्री मिल गया। तो उन्होंने एक बात कही कि जिस माँ के बेटे को पद्मश्री मिल गया हो उसको अब जीवन में और क्या चाहिए।
1: वाह,
0: देखिए माँ होती है तो ऐसी बातें करते हैं तो कई बार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है, बहते रहने का काम है।
1: जी आपको मिला पद्मश्री, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का सम्मान माना जाना चाहिए।
0: नहीं बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि सम्मान जो था वो हिंदी को मिला है, और मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा को जो पहले दोयम दर्जे की बात मानते थे ना कमेंट्री के क्षेत्र में,
1: जी
0: उसमें इतनी पहचान मिलना, तो हिंदी कमेंट्री के प्रति लोगों की आस्था और लोगों की श्रद्धा और लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है, तो अच्छा लगा कि हिंदी के लिए कोई कार्य मैं कर पाया।
1: जी सुशील दोषी जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे ये लंबी बातचीत कर पाया। हमसे ये वादा कीजिए कि विविध भारती पर आप फिर आएंगे और हम फिर लंबी बात करेंगे।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। और आपसे बात करके मुझे तो आपसे शिकायत भी रही कि आपने कमेंट्री क्यों नहीं की, आपकी आवाज इतनी बढ़िया है, लेकिन अच्छा ही किया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कॉम्पिटिशन मुझे ही मिले।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से लंबी बातचीत अभी आपने सुनी, आज दूसरा भाग था। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर जरूर लिखें, मैटिनी शो की पोस्ट पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर vbnsmumbai@gmail.com पर अपनी राय दीजिएगा।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को होने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2rd स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेवेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए यादों की महफिल।

आइए सुनिए यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस गाने से शुरुआत करते हैं। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, शोले।

रात में 11 बजे दिन के 12:11:35 और अगर आपके शहर में बारिश है तो ये गाना आपके लिए।

0: दोना
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन थोड़ी देर है
0: कब आएगा

0: झूठ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में था। एमजी हशमत के बोल थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल

0: की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

यादों की महफिल में अब गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है वारंट। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहतनामा।

0: Rupani.
1: Life is moving in fast mode. For hassle-free banking from the comfort of your home, switch to SBI Premier Banking,
2: where you get dedicated virtual relationship associate who understands your needs, offers smart advice, and get every task done at lightning speed, giving you seamless banking and many other exciting benefits.
1: Visit your nearest SBI branch today and activate SBI Premier Banking. Terms and conditions apply.
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहतनामा,
0: किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम साहिब बहादुर। राजेंद्र कृष्ण की बोल मदन मोहन की तर्ज।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे भूपिंदर सिंह की आवाज, फिल्म का नाम मौसम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। फिल्म का नाम जूली, आनंद बख्शी, राजेश रोशन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आ रही है किशोर कुमार की ही आवाज में, अमित खन्ना की बोल, राजेश रोशन की तर्ज है। फिल्म का नाम है देश

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और
2: आ गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की भारत विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट हो चुकी है और आप सभी ने पढ़ी ही होगी। जिन श्रोताओं ने फेसबुक पोस्ट नहीं देखी है उनके लिए इबारत यहां पेश है। इतने दिन कहां थे, मौत ना आई तेरी।

क्यों आई? ये कैसी बातें कर रही हो? घनी थी उलझन, बैरी अपना मन, अरे खुलकर कहो ना। एक डोर खींचे, दूजा दौड़ा चला आए। ओफो, कहना क्या चाहते हो? मुझको अभी चुप रहने दो, पहेलियां बुझाना छोड़ो ना। हम क्यों शिकवा करें झूठा? अरे किससे शिकवा हुआ है, क्या बात है? इंसान मोहब्बत कर बैठा, पर ये तो अच्छी बात है ना। हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, फिर वही, अरे खुलकर कहो ना। कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दें? देखो ये ठीक बात नहीं है, इस तरह उलझी बातें कौन करता है? बातें हैं, बातों का क्या। हाय इतना दुख, मेरी तो आंख भर आई। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, अब तुम हद कर रहे हो। अपनी तो यह आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। चुप रहो, अब ऐसी बहकी बहकी बातें की तो बातें बंद हो जाएंगी हमारी, समझे भाई? यही है आज की इबारत। और इस इबारत में बहुत सारे गाने, बहुत सारे शब्द समाये हुए हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने बाकायदा गानों को एक अच्छी तरीके से पहचान भी लिया है, लेकिन एक जो नहले पे नहला आया है उसे कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक इबारत लिखी है। क्या बात है, बड़े छाए हुए आजकल, क्यों आपको पसंद नहीं है? हमें क्यों पसंद नहीं होगा, आखिर आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो। वही तो, हमारे लिए आप श्रोतागण ही सब कुछ हो, बस इसी बात ने तो हमारा दिल छीना है। विविध भारती से एक संवाद, एक कमाल है भाई, कमाल है, यानी नहले पे दहला मार दिया। बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी श्रोताओं की बातें, एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि यादों की महफिल में बहुत ही बढ़िया गाने आपने सुनवाए, इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा कर देते हैं आपका। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता हैं, जरा देखें कि हमारे और श्रोता क्या कह रहे हैं। कुछ श्रोता हैं जिन्होंने बाकायदा पूरे गानों की लिस्ट प्रदान कर दी है और यहाँ भेजा है। इसके अलावा कई ऐसे श्रोता हैं जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि इतने दिन तो हम कहीं नहीं थे, विविध भारती के संग थे और ऐसे ही विविध भारती हमारे साथ चलती रही, गुनगुनाते रहे, दिल पर राज करते रहे, सुकून देते रहे। एक और श्रोता कहते हैं, शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, हम विविध भारती सुनते रहे तो दिन खुशनुमा रहे। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अप्रत्याशित थीम है और बहुत ही मजेदार गाने सुनाई देने वाले हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि यादों की महफिल में गाने अच्छे सुनाई दिए थे। एक श्रोता ऐसे हैं जो बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप बालटाल में हैं और वहां से आगे रवाना हो रहे हैं। शुभकामनाएं आपको हम सबकी तरफ से। और वहां भी आप अगर विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का सिलसिला इस गाने के साथ। और आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या आम बोलचाल की भाषा में आप भी गानों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो किस

योगेश का लिखा ये गाना मुकेश की आवाज सलील चौधरी की तर्ज आनंद फिल्म, और एक श्रोता ने ये कहा है कि ये गाना पूरी तरह से राजेश खन्ना के साथ जुड़ा हुआ। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो पहला गाना आपने बजाया सुरीला सफर कार्यक्रम में वो मेरे दिल के बहुत करीब है, पतिदेव इस गाने को बहुत अच्छे से गाते थे, पहला गाना यही था जो उन्होंने मुझे गाकर सुनाया था। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि योगेश जी क्या बात है, बेहतरीन आगाज इस कार्यक्रम का हुआ है और हम तो अपनी बातचीत में अक्सर ही फिल्मी गीतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि हम भी बातें करते हैं तो गानों का और फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो पूरे दिन कोई ना कोई गाना गाते रहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भी गाने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा हमारे अस्तित्व का आईना है, व्याकरण की दृष्टि से भले शुद्ध ना हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में गाने तो आजकल मुहावरे की भूमिका अदा करते हैं, जैसे अगर कोई देर से आया तो हम कहते हैं बड़ी देर भाई नंदलाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं हम अभी इसी गाने को सोच रहे थे और ये गाना प्रसारित हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम अभी से घोषित कर देते हैं कि आज का जो सबसे प्यारा गीत है वो यही है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज जो है प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ बदला हुआ लग रहा है, लेकिन ये बदलाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें शामिल करते हैं। देखिए कई श्रोता ये कहते हैं कि हमारे कमेंट्स शामिल नहीं होते, इतनी लंबी धारा कमेंट की है कि मैं एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे गानों के बोल हमारे कई श्रोताओं ने लिखे हैं, अब सभी श्रोताओं के लिखे गाने के बोल बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार का शुक्रिया। इतना सारा टाइप करके आपने भेजा, आपने गानों को बिल्कुल ठीक पहचाना है। और एक श्रोता ये कह रहे हैं कि जैसे ही पेज खोलकर सुबह देखा उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, इबारत पढ़कर चाय और नाश्ते का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुझे याद आया कि कैसे किशोर कुमार की याद के दिन आपने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती बड़े काम की चीज है, कहीं दूर से गम आ जाए रेडियो से मेरा मन बहल जाए, या रेडियो बजाओ दुनिया वालों या मुझे अभी चुप रहने दो। क्या बात है, इन्होंने अपनी तरीके से इबारत लिख दी है। अब जो गाना आ रहा है वो आप सभी के दिल के बहुत ज्यादा करीब गाना है और ये जो फिल्म है ये हम सभी को बहुत ही अपनी सी लगती है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री एक दूजे के लिए, ये फिल्म आपने किस साल में कहां किसके साथ देखी थी, ये यादें हमारे साथ जरूर बांटिए। और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? क्या आपके शहर में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं या अभी तक आप गर्मी से जूझ रही हैं? शनिवार की दोपहर 1:12 क्या हाल आपके और आपके शहर के मौसम के।

जैसे जैसे बड़े हुए इस फिल्म के गानों का जादू सिर चढ़कर बोला एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज से परिचित हुए और 16 बरस की बाली उम्र से खुद को कनेक्ट किया। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ये गाना दिल के बहुत करीब है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि मिर्जापुर शहर में जब से सावन का महीना लगा है दिन रात झमाझम बारिश हो रही है, इस समय थोड़े बादल और थोड़ी सी धूप है, खुशनुमा मौसम है हमारे शहर का। और इसके अलावा फिलीपींस के एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है और रेड अलर्ट का सिग्नल आ चुका है। एक और श्रोता ने क्या सुंदर जुमला गाने में सुठाया है, दुनिया में प्यार की एक है बोली, सलाम आनंद बख्शी साहब, क्या बढ़िया लाइन लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता लखनऊ से लिख रही हैं कि सूर्य देव तीक्ष्ण ताप बरसा रहे हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके शहर में भीषण वृष्टि हो और तीक्ष्ण ताप की जगह शीतलता आप पर हावी हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो पानी पानी पानी हो गया है, भाई ये जो पानी पानी पानी है इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आप गा रहे हैं गाना आज ब्लू है पानी पानी पानी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि ये गीत मन की गहराई में बसा हुआ है, प्रेम के कितने रंग हैं और सादगी भरे बोल इस गाने का आभूषण है। एक श्रोता अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी से और गाड़ी में सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, उनके परिवार के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर। बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई ये जो लिफ्ट वाला गाना है मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए ये बड़ा ही अच्छा लगा था, 1981 में कॉलेज से भाग कर दोस्तों के संग पहला शो मैटिनी शो देखा था। अब ये जो कॉलेज से भाग कर फिल्म देखने की बात है ना, बस मुझे लगता है कि इसी बात की डोर पकड़ के आगे चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज से भागकर पिक्चर देखी थी, कॉलेज से भागकर कौन सी फिल्म देखी थी और क्या किसी को पता चल गया था। और हाँ, अब रेशमा की आवाज गूंज रही है, फिल्म का नाम हीरो, सुभाष घई की बेमिसाल फिल्म जिसमें आए थे जैकी दादा। यह फिल्म कहां, किस शहर में, कब, किसके साथ, चोरी से या शाम से देखी थी बताइएगा।

0: एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म हीरो हम लोगों ने कॉलेज से गोल मारकर देखी थी, अब साथ में कौन था ये बात प्लीज मत पूछिए वरना बहुत मार पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये मत बताइए कि साथ में कौन था, लेकिन कॉलेज से भाग कर देखी है, ये बड़ी मजेदार बात है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की यादें देखी साझा की हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि दोस्तों के साथ खुदा गवाह देखने गई थी कॉलेज से भागकर, बहुत मजा आया था और हम पकड़े नहीं गए थे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि मिथुन दा की फिल्में तो नहीं देखी लेकिन कैसेट बहुत बजाया करते थे, ये एक बात इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लंबी जदाई का की बड़ी तारीफ की है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या गजब करें, सुरीले सफर कार्यक्रम में आपके सारे राज खुलवा देंगे, यहां मेरे बेटी बेटे दामाद बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप नाम नहीं लेते, वरना ये जो कॉलेज बंक करके फिल्में देखने की लिस्ट तो लंबी है। अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में नाम नहीं आता, वरना सबको पता चल जाता कि हमने क्या किया था अपने जमाने में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि शहर में थोड़ी सी बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है, हम किसानों से पूछो अभी तक धरती में पानी ठीक से अंदर पहुंचा नहीं है और हम मजबूर हैं भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। आप शहर वाले थोड़ी सी बारिश हुई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश गिरी, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि जो खेती है वो अच्छी तरीके से हो सके। एक और श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी किसी गीत को हम केवल सुनते नहीं बल्कि वो हमारे भीतर घटित होता है। इस गीत को सुनकर लगता है कि हमारे भीतर एक अंतहीन बयाबान पसरा हुआ है, रेशमा की आवाज़ सबसे उदात्त पलों में ले जाकर छोड़ देती है। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मैंने मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये राज उजागर कर दिया है कि कॉलेज से भागकर उन्होंने रफू चक्कर देखी थी सहेलियों के साथ कॉलेज बंक करके। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि कॉलेज से भागकर अगर फिल्म देखते तो कहीं फिल्म देखने के काबिल न रहते उस जमाने में, क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी थिएटर में 365 फिल्में जरूर देखी सिकंदराबाद में। इसके अलावा एक और श्रोता जलंधर से हैं, वो कहते हैं कि जलंधर के लाल रतन सिनेमा हॉल में हमने फिल्म हीरो देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई बारिश तो हुई है और अभी और भी होगी, कहीं बाढ़ कहीं सूखे के साथ, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असर कहीं गर्मी और कहीं वर्षा ऋतु का प्यार। एक और श्रोता है जिन्हें जुबली टॉकीज याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि एक दूजे के लिए उन्होंने 1982 में जुबली टॉकीज में देखी थी। किस शहर का की बात है ये आप अंदाजा लगा सकते होंगे, मैं तो समझ गया हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट लिया कि हमारे शहर में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में मुंह फुलाए फूफा घूमते हैं, नजर तो सबको आते हैं मगर काम के नहीं होते। भाई बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अब एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रहे हैं जो दिल के गुबार को उजागर करता है, जिसमें उदासी लिपटी हुई है। एक बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गाना है ये।
1: दीवानों से ये मत पूछो।
0: क्या आप बता सकते हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं? इस फिल्म में कई गीतकारों ने गाने लिखे थे, पर ये गाना किसका?

बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। कमर जलालाबादी ने यह गाना लिखा था, कुछ श्रोताओं ने गुलचन बावरा का नाम भी लिखा है, पर ज्यादातर श्रोताओं ने कमर जलालाबादी का नाम लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि जब आपने ये ऐलान किया था कि गीतमाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुरीला सफर कार्यक्रम जब हमने सुना तो तब से बड़ा आनंद आ रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी उम्र 38 बरस है पर मैंने सिर्फ दो ही फिल्में सिनेमाघर में देखी हैं, एक बजरंगी भाईजान और दूसरी सुई धागा। ओ हो, सिर्फ दो ही फिल्में। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलशन बावरा का नाम लिखा है जो कि गलत जवाब है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब ये दौर कभी नहीं आएगा, पुराना माहौल कुछ और था जो कभी नहीं दोहराया जाएगा। जिन्होंने ये समय दिखा है उनसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। कमर जलालाबादी की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी। एक श्रोता है जिन्होंने कहा 11वीं कक्षा में कॉलेज से बंक मारकर सहेलियों के साथ कर्ज आंखियों के झरोखों से हम किसी से कम नहीं और ऐसी कितनी ही फिल्में टोपी वाला थिएटर में देखी हैं, गोरेगांव के टोपी वाला थिएटर में। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा कि दीवानों से मत पूछो गाने में एक टीस है, मुकेश की दर्द भरी आवाज रूह तक उतर जाती है। और फिर और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कह रहे हैं कि विविध भारती पर सावन से जुड़े जितने कार्यक्रम हुए हैं उतनी बारिश हमारे यहाँ हो जाती तो मजा आ जाता। इसके अलावा एक और श्रोता है कहते हैं कि भाई बड़ी ही अजीब बात हुई, कल रात आप मेरे सपने में आए, मैं आपको बीमे की किस्त के रुपए दे रहा हूं। भाई ये तो बहुत ही अजीब सपना है आपका। और इसके अलावा एक और श्रोता है कि जिस तरह से आप कमेंट पढ़ते हैं आपका फनी अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कश्मीर में कहते कि मेरे आंखों के आगे कश्मीर, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आंखों के आगे कश्मीर का नज़ारा है और मैं अपने सफर पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूं। ये कितनी प्यारी बात है कि वो अपने सफर में भी विविध भारती को लगातार

सुनते चले जा रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, आज कार्यक्रम छूटता हुआ लग रहा था पर हमने छोड़ा नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लास्ट पीरियड कई बार बंक किया, प्रिंसिपल से डांट खाई और एक बार फिल्म देखी ठिकाना और पापा से भी डांट खाई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि भागकर तो नहीं पर दोस्तों के साथ एक बार गई थी, मम्मी को फिल्मों का बहुत शौक है तो मम्मी और पड़ोस की चाची और बहनों और उनकी बेटियों, मतलब उन्होंने पूरी टोली का लिखा है कि इन सबके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त अपनी साइकिलें कॉलेज में ही छोड़कर पास के सिनेमा हॉल में नूरी फिल्म देखने चले गए थे, बाद में प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ट्रेन से सफर करके कॉलेज जाते थे, एक दिन ट्रेन काफी लेट पहुंची, बारिश भी बहुत थी, तब चिच्चोर फिल्म का बोर्ड एक जगह देखा था, मैं और मेरी सहेली फिल्म देखने चले गए लेकिन अंदर जाकर देखा कि अपने पराये फिल्म लगी थी, हमने जो है वो पुराना पोस्टर देख लिया था। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की हैं और अब चूंकि माहौल उस तरह के गानों का है तो एक और गाना आ रहा है और हेमंत कुमार की ये आवाज पूरी दिल में उतर जाएगी। हेमंत कुमार की आवाज के बारे में अपनी राय, अपनी बात।

हेमंत कुमार की आवाज में अनुपमा फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज बिल्कुल अलग है, वो अच्छे गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कभी ये गाना शायद ही कभी मुझे भावनाओं से आंसुओं तक लाने में नाकाम रहता होगा, जब भी सुनते हैं आंखें भर आती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इस गाने में धर्मेंद्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि हम स्कूल से भी सिनेमा घर ले जाए गए थे, बच्चों की फिल्म थी तो स्कूल ने हमें फिल्म दिखाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप कमेंट पढ़ने में सेंचुरी मार रहे हो भैया, शुक्रिया। एक और श्रोता है अनुपमा फिल्म का ये जो भावुक कर देने वाला गाना है ये एक बात, और मेरे पिताजी का पसंदीदा गाना था, ये एक श्रोता की कमेंट है हेमंत की। हेमंत की आवाज में जैसे विषाद का स्वर घुला है, ये भी एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज से भागकर फिल्में देखना, ये तो मैं उस जमाने में सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुझे खुद बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर खर्चा निकालना होता था, इसलिए मैं अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करता था। बहुत ही सुंदर प्यारी बात आपने कही है भाई। आज यानी इस शनिवार 8 अगस्त के दिन हम बातें कर रहे हैं और पूरा एक हफ्ता 15 अगस्त को बचा है, तो चलिए बचपन की यादों की तरफ जाते हैं। स्कूल के दिनों में 15 अगस्त की तैयारियां आप किस तरह से करते थे ये जरूर बताइएगा। कुछ लोग होंगे जो नाटक तैयार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कविताएं और गाने तैयार करते होंगे। एक जमाना था स्कूलों में 15 अगस्त को जिस तरह से मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का बचपन का जो उत्साह है वो बहुत ही कमाल का रहा करता था। तो हम चाहते हैं कि आप वो यादें हमारे साथ बांटें। ठीक है, एक हफ्ता बचाए 15 अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस करता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है, या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है, या आप ये कहते हैं

एक श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माँ ही प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफ़ी पहले गतिविधियाँ शुरू हो जाती थी, नाट्य गीत नृत्य कहानी सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती, मिल जाने पर वो बेमोल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थी, कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था, स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और श्रोता, बचपन में 15 अगस्त की बड़ी भोर को अगल बगल के घरों से फूल तोड़कर जमा करके स्कूल ले जाते थे ताकि तिरंगे में बांधे जा सकें। राष्ट्रगान के पश्चात मैं वीर रस गाने में मूल गायन करता था, हेडमास्टर से शाबाशी मिलती थी। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो सवाल आपने पूछा है, बहुत उत्साह से तैयारी करते थे, आज भी याद है। अपना स्कूल ड्रेस शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे, कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं। और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे, यूं लगता था कि खजाना मिल गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही हैं कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिर लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती हैं कि भाई हर रोज हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफर में आना छोड़ नहीं सकते हम, आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज़ गंभीरता और मिठास लिए हुए हैं और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार चले आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखिए।

0: एक श्रोता कहते हैं कि मेरी लिस्ट का ये सातवां गाना भी बच गया है, यानी आज की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाजा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब कोई चीज गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूं ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ गाना बज रहा है, बादल छाए बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताएं 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान, सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज तक पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी, ये कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे। भाई हाईलाइट है ये, बूंदी वाले लड्डू जो हैं ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधियानवी का।
1: खुद पे
0: क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना कम होती जा रही है?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना कम होती चली जा रही है तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। भाई देखिए, ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

आज बहू बेगम फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा। मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बताइए।

भई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में साथ निभाया और सवालों के जवाब दिए, कमेंट्स किए, गाने सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की इस भागदौड़ में जहाँ कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, क्योंकि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: त्रिवेणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 8 अगस्त की तारीख कैलेंडर की कोई आम तारीख लग सकती है, लेकिन भारत के इतिहास में ये तारीख सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई है। भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जारी था, जहां महात्मा गांधी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस तरह से भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान। आज भी भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की याद दिलाता है। जन जन में रोष था, आक्रोश था और ऊर्जा थी, बुलंदी थी कि किसी भी तरह से अब देश को आजाद करना ही है। मुंबई से जो लहर शुरू हुई थी उसने धीरे धीरे पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। अब गांव गांव, शहर शहर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो।

भारत छोड़ो आंदोलन का सिनेमा पर क्या असर पड़ा, इसकी एक मिसाल ये गाना है जो अभी आपने सुना। कवि प्रदीप ने जब ये गाना लिखा तो उन्हें अंग्रेज सरकार ने तलब किया और आरोप लगाया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी गाना है, पर उन्होंने बड़ी चतुराई से तर्क दिया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी नहीं बल्कि ब्रिटिश समर्थक गाना है। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। टॉकीज़ों में फिल्म को रोक रोक कर नौजवान बार बार इस गाने को दिखाने का अनुरोध करते थे। ये गाना जनमानस पर छा गया था। पूरे देश में अंग्रेजों का बहिष्कार किया जा रहा था, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बच्चे हों या नौजवान या बुजुर्ग। भारत के कोने कोने से लोग सड़क पर निकल आए थे महात्मा गांधी के आह्वान पर। बस ये तय कर लिया था कि अंग्रेजों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी का आखिरी बड़ा आंदोलन बना जिसने इस देश की बुनियाद रखी, जिसने इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी बहुत ही मुश्किल से, त्याग से, बलिदान से और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें हासिल हुई है। इस आजादी का मोल हर पीढ़ी को समझना होगा।

0: हाल के।
1: कोई भी देश अपनी सीमाओं से नहीं बनता, अपनी ऐतिहासिक इमारतों से नहीं बनता, अपने इतिहास से भी नहीं बनता। देश बनता है जनमानस से, उसकी जनता से और उसकी जनता की चेतना से। अगर हम सचेत रहें, जागरूक रहें, देश के प्रति जिम्मेदार रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, खासकर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करते रहें, तो ये माना जाएगा कि हम अपने आजादी का मोल समझ रहे हैं, हम अपनी आजादी की कीमत चुका रहे हैं, हम देश के प्रति अपनी निष्ठा को ठीक तरीके से निभा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे काम बहुत निष्ठा के साथ कर सकते हैं, जैसे हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बिजली और पानी को व्यर्थ ना जाने दें, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हम करें तो देश के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की याद के इस दिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रति जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है।

8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और आज त्रिवेणी में हमने आपको याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है और ये आजादी इतनी अनमोल क्यों है। तो अब इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को

0: वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
4: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है।

0: एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरल में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
5: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय

0: सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर ताकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नख में।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर वर्षा अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। एक या दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज एवं झोंकेदार हवाएँ चलने की भी संभावना है। अंडमान एवं निकोबार तट तथा उससे लगे समुद्री क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा झोंकों के साथ हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है, अतः मछुआरों को 12 अगस्त 2026 तक अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: 100.9 MHz पर ये है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
2: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: श्रोताओं, नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: The Untold Story, Wake Up Sid, Student of the Year 2, Aashiqui 2, R. Rajkumar, Rais फिल्म के गाने सुने। इसी के साथ ही नॉन स्टॉप म्यूजिंग अब यहीं समाप्त होता है।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय 3:31 हुए हैं। अब आरंभ होता है सैनिकों के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में उन वीर जवानों के नाम जो देश की रक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर सीमा पर डटे रहते हैं, उनकी हिम्मत, त्याग और देशभक्ति को सलाम करते हुए आज की यह संगीतमय प्रस्तुति समर्पित है हमारे वीर सैनिकों को। तो आइए देशभक्ति के जज्बे से भरे गीतों के साथ शुरू करते हैं यह खास संगीत सफ़र।

श्रोता हूँ, ये गीत इंडियन फिल्म का है और गाने वाले कलाकार हैं अभिजीत और साधना सरगम। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत आनंद राज आनंद का।

श्रोताओं, सैनिकों के लिए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। रहगुजर फिल्म से इस गीत को गाया है अभिजीत ने। संगीत आदेश श्रीवास्तव का है व बोल नुसरत बद्र के हैं।

अब पेश है लॉक कारगिल फिल्म का एक गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने, बोल जावेद अख्तर के हैं तथा संगीत अनु मलिक का है।

श्रोताओं, आइए सैनिकों के लिए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, रेफ्यूजी फिल्म से। इस फिल्म के गायक कलाकार हैं सोनू निगम और अलका याग्निक। संगीत अनु मलिक का है तथा बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही वीर जवानों को समर्पित आज का यह संगीतमय प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होता है। हमारे सैनिकों के साहस, त्याग और देश के प्रति समर्पण को हमारा नमन। नमस्कार, जय हिंद। 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।
1: आपको मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात? मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूं? या कि शेखर खोसला को नहीं जानती? ना।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली, वहीं माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
4: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
3: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
4: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया
3: जी,
4: उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी।
3: ओके।
4: तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ

0: घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक मधुमति एकेडमी।
1: जी
0: मधुमति जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
1: जी
0: थी,
1: जी जी बिल्कुल।
0: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहां पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में,
1: क्या उम्र होगी वो लगभग?
0: सेवेंथ स्टैंडर्ड में होंगी।
1: ओके,
0: तो मेरी
1: 12-13
0: बहन और
1: साल।
0: मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे।
1: जी
0: बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम
1: जी
0: दोनों को बुलाते थे कि
1: अच्छा,
0: आप
1: डांस
0: कंपटीशन में आ जाओ।
1: करने। जी
0: तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी।
1: जी
0: मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी। तो
1: अच्छा।
0: जरूरत तब हुई जब लगा कि फीस भरना है, छोटे भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं, तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए। ट्यूशन देती थी, फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते। तो मधुमति मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
1: अच्छा,
0: और
1: एक
0: वहां
1: हाथ
0: पे
1: मिल
0: मैं,
1: गया।
0: हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहां पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो
1: अच्छा
0: पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को।
1: जी
0: तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि
1: हाँ
0: उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी उनके साथ। एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें। अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है, तो
1: अच्छा,
0: मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम,
1: सिखा
0: अपने
1: लो।
0: साथ रख के आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे,
1: जी
0: और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो।
1: जी
0: और एक, हमारी तरबियत को नहीं भूलना है,
1: क्या बात
0: अपनी
1: है,
0: तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
1: मतलब नदी जैसे बाहर ही बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं
0: बिल्कुल
1: है। जी, बहुत
0: बिल्कुल,
1: बढ़िया बात
0: बहुत ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा
1: है।
0: सूखी घास में मिलके वहां चला जाए,
1: जी
0: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वहां से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे। तो गणेश हेगड़े जी,
1: जी
0: जो बहुत
1: बहुत
0: बड़े
1: बढ़िया
0: कोरियोग्राफर है,
1: कोरियोग्राफर हैं।
0: उन्होंने मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप, गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज
1: बिल्कुल
0: के कोरियोग्राफर्स हैं।
1: जी
0: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। तो
1: हाँ,
0: अम्मी मेरी
1: तो
0: हमेशा साथ होती थी।
1: अमाउंट के लालच में आप काम
0: अमाउंट
1: की
0: ये था,
1: जा।
0: हाँ, कि एक इतना अमाउंट आएगा तो दिमाग सोचने लगा कि
1: हाँ,
0: अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमति
1: कैलकुलेशंस
0: मैम
1: से
0: ने,
1: अलग
0: हाँ,
1: है।
0: मधुमति मैम ने बोला बेटा करो, बुरा नहीं है।
1: हाँ,
0: अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
1: तो आप उस
0: मुझे,
1: समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में
0: नहीं
1: कर रही
0: बिल्कुल
1: थी
0: नहीं
1: या लीड डांसर्स थे?
0: नहीं मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
1: अच्छा
0: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो
1: जी
0: पहले गणेश हेगड़े, लॉलीपॉप, इन्हीं का ट्रुप चलता था।
1: जी
0: उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां, 12 लड़कियां ऐसे होती है। उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी, जो अभी कोरियोग्राफर है।
1: जी
0: तो पोनी वर्मा ने, यू नो, शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो
0: हाँ,
1: चेहरा अलग
0: तो
1: दिखता है
0: क्योंकि आप
1: चमकता हुआ।
0: क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं,
1: जी
0: उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ
1: जी
0: तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है
1: घुसा
0: बचपन
1: हुआ है।
0: से,
1: जी
0: तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी, जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो
1: जी
0: मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी। मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई। उन्होंने
1: अरे
0: अम्मी
1: वाह
0: से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था
1: तो उन्हें
0: काफी
1: एक
0: उस
1: और
0: वक्त का।
1: हाथ चाहिए था। जी
0: तो फिर उस तरह से, माई मदर यूज टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजंस, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहाँ पहुंची 8-9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे थे
0: स्टिल
1: आप,
0: स्कूल में थी।
1: बहुत
0: तो वो
1: छोटे थे।
0: मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3-4 साल काम किया। बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते, सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का
1: क्या
0: मौका
1: बात
0: मिला।
1: है,
0: फिर एक, मैं सरोजी की बहुत बड़ी फैन थी,
1: बिल्कुल
0: मैं
1: सब
0: काम, बहुत बड़ी फैन, मतलब
1: है।
0: मैं
1: मास्टर जी के फैन सब
0: सब
1: है।
0: है। जब मैं असिस्टेंट थी, उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये, उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एकलव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एकलव्य बन गई।
1: क्या बात है।
0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोज

0: समा गए, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए।
1: जी
0: तो वो एक उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एक लव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना?
0: बहुत ज्यादा।
1: तो कोई गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना है।
0: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी।

0: कोई एक गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना है।
1: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन।
0: तो हमारे विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे।
1: आप जैसे देखो, मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो है प्यार दू, गोरी भैया तो प्यार दू।
0: जी जी जी जी,
1: तो जो अल्फाज, जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स, लता जी जब गाती थी तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
0: जी,
1: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो
0: तो
1: मुझे सुकून देते हैं।
0: तो एक हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
1: एक तो पहले सुनाइए, आजा पिया तो है प्यार दो, गोरी भैया तो पे वार दो।
0: चलिए,
1: उसके बाद
0: जी,
1: हाँ,
0: उसके
1: ये
0: बाद
1: गाना,
0: की भी।
1: उसके बाद लग जा गले
0: अच्छा,
1: के फिर ये हंसी रात हो ना हो।
0: बड़ी बढ़िया सी फरमाइश है आपकी, पर हम आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है, आजा पिया तो है प्यार दूं, काइट
1: प्लीज
0: फिल्म का गाना है।
1: प्लीज
0: सुनते हैं ये गीत।
1: प्लीज सुनाइए।

0: तो शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। अब
1: प्लीज।
0: मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीजें तो हम जानते ही नहीं थे। और कई सारे लोग, बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे। आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
1: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की
0: अच्छा
1: बात है।
0: अच्छा
1: आजकल अलग माहौल है।
0: जी
1: जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे
0: जी
1: मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है।
0: जी जी
1: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा,
0: जी
1: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है,
0: जी
1: उस लेवल पे करना है। वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
0: शुरू हो
1: आती है,
0: जाती है जी।
1: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे
0: इज
1: डांसर
0: अ
1: थे,
0: वेरी गुड डांसर।
1: वेरी
0: यस
1: ग्रेसफुल।
0: यस
1: उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे।
0: जी
1: और
0: वो भी
1: कमल
0: बहुत
1: मास्टर जी
0: अच्छे,
1: बहुत कमाल,
0: बहुत
1: उन्होंने
0: जी
1: एक ट्रेंड, जिसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था,
0: जी
1: भोली सूरत दिल के।

0: जो वो हाथ का
1: वो
0: स्टेप
1: सब
0: था,
1: कमल जी का
0: वो
1: दिया हुआ।
0: कमल
1: जी
0: जी
1: जी
0: उसमें माहिर थे, उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी,
1: जी
0: उनके असिस्टेंट हूँ मैं।
1: बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही
0: बिल्कुल,
1: है।
0: वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे
1: हाँ
0: कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी, और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
1: क्या डायलॉग
0: हाँ, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर
1: है।
0: सकती।
1: जी
0: तो ग्रेस इज वॉट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के
1: जी
0: भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है
1: बिल्कुल।
0: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल, आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो
1: आगे के
0: इसलिए
1: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे,
0: बिल्कुल
1: फीमेल वाले
0: अदायगी
1: एक्सप्रेशंस
0: मुझसे
1: आप ही
0: मिलेगी।
1: दोगे।
0: डुएट सॉन्ग
1: बिल्कुल
0: है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं,
1: हाँ,
0: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट
1: क्या
0: इज, मैं
1: क्या
0: असिस्टेंट थी
1: जी
0: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ, गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो
1: हाँ
0: मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना
1: जी
0: और करके दिखाना।
1: जी
0: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के,
1: जी
0: जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ, गणेश मास्टर जी ने की है।
1: और गणेश
0: और उन
1: मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान।
0: शबीना खान, तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते, अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये
1: मैं ही
0: जो
1: सिखा रही थी
0: मैं
1: उस
0: ही, हाँ उसी वक्त, क्योंकि
1: समय।
0: वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते। तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं,
1: तो फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का, जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया
0: मैं
1: मैंने
0: मजेदार
1: असिस्टेंट
0: बताऊं, थोड़े
1: कोरियोग्राफर।
0: से लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें,
1: जी
0: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी दे रे
1: है,
0: पीछे
1: क्या
0: पीछे
1: बढ़िया
0: पीछे
1: गाना
0: पीछे,
1: है।
0: उसमें मैं असिस्टेंट थी। और जितने लोग मुझे अब देखते हैं,
1: जी
0: जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती
1: नहीं,
0: थी
1: आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से
0: उस वक्त।
1: तो।
0: काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो।
1: जी
0: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
1: बिल्कुल, ये
0: आपकी
1: गाना
0: मर्जी
1: हम
0: है।
1: जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरूला जी
0: हाँ
1: ने
0: जी,
1: गाया हुआ
0: हाँ
1: ये
0: जी,
1: गाना है और बड़ा खूबसूरत, वो बुलंद आवाज के साथ, उस
0: बिल्कुल
1: बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शमीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं, और जो रानी मुखर्जी हैं उस डांस को कर रही हैं। तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।
0: ठीक है।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे, तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं।
0: जी
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूं
0: हाँ
1: और अरबाज खान को
0: हाँ
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है,
0: अच्छा
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना।
0: हाँ
1: बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी
0: ऐसा
1: वहां पे।
0: मुझे भी समझ नहीं आया था उस
1: हाँ आप
0: गाने में।
1: देखिए,
0: जी
1: गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग ब्रदर, हेलो ब्रदर,
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं,
1: मैं
0: बट
1: हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है,
0: ओ
1: तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या। बहुत लोगों को लगता
0: अच्छा
1: था, इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट,
0: जी जी
1: पर्सनालिटी,
0: जी
1: बाल, काफी कुछ मिलता था उस वक्त।
0: जी
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फे
0: ब्यूटीफुल
1: तेरी काली
0: सॉन्ग।
1: काली, मैं
0: यस
1: असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी
0: हो
1: के
0: गए
1: साथ
0: थे।
1: हो जाते थे,
0: अच्छा
1: तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
0: वो
1: का
0: मटकी
1: मोह,
0: फोड़ने वाला
1: मटकी
0: गाना।
1: फोड़ने वाला गाना,
0: जी
1: वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइड शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहां पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले,
0: जी
1: तो आई यूज टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय।
1: बहुत सारे
0: जी, उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है, या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना
0: जी
1: चाहूंगी ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां
0: जी
1: है वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने,
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: मेरे
0: बात है।
1: असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की,
0: हाँ
1: कॉलेज जाना शुरू किया,
0: ओके
1: काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की
0: आप
1: पढ़ाई भी।
0: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
1: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
0: आप कोरियोग्राफी के साथ
1: हाँ तो क्योंकि मैं
0: मेडिकल
1: कोरियोग्राफर
0: की पढ़ाई
1: कभी
0: कर रहे थे।
1: बनना नहीं चाह रही थी, मैंने
0: जी
1: काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है,
0: जी
1: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की, काम भी किया, सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
0: पैसों की भी
1: पैसों की भी जरूरत थी, और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था, क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
0: हारे तो कभी नहीं थे।
1: कभी हारे नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं, कि कोई
0: अच्छा
1: बात नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है, तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
0: मतलब आपने जो भी पढ़ा, अच्छा कठिन ही पढ़ा,
1: हाँ
0: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे
1: बहुत
0: बायोटेक्निकल
1: कुछ
0: नेम्स और बहुत सारी
1: बहुत
0: चीज़ें
1: कुछ,
0: होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे
1: तो
0: डर
1: ऐसा
0: तो
1: होता
0: मुझे
1: था कि
0: लगता है आपने
1: असिस्टेंट
0: पढ़ा।
1: डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी,
0: ये
1: और
0: बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर
1: बिल्कुल यही
0: सकते।
1: मैं चाहती थी कि आपके
0: जी,
1: जरिए पता
0: तो
1: चले
0: हमारे
1: लोगों को।
0: कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़

0: रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: प्लस पढ़ाई भी हो रही है, वो भी साइंस की,
1: जी,
0: बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये
1: बिल्कुल
0: तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना, याद करना, फिजिक्स
1: बिल्कुल
0: की मैथ्स भी होती है,
1: बिल्कुल। इसलिए
0: और
1: जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
0: बट कॉमर्स भी इजी नहीं
1: हाँ,
0: जी
1: बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास
0: क्या
1: की, मतलब मैं खुद,
0: बात है,
1: हाँ,
0: बुककीपिंग
1: पढ़ाई में
0: ये
1: अच्छी। हाँ, तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड, विच इज़ हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो। तो जो
0: हाँ
1: पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है। जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ एक नॉलेज था, पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
0: जी
1: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है,
0: जी
1: वो आज
0: बिल्कुल
1: भी मेरी लाइफ में है। इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है।
0: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी, और वो
1: बिल्कुल
0: सब करके आप हर फील्ड में आप जीती।
1: बिल्कुल। और आज इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को, 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है।
0: जी
1: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है, जिन्हें
0: जी
1: अच्छे दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो
0: जी
1: आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो तो
0: हाँ
1: मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके।
0: क्या बात है,
1: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म।
0: सुकून की नींद नहीं, पेट भर
1: बिल्कुल
0: के भूख नहीं,
1: बिल्कुल,
0: और एक अलग
1: ये
0: बेचैनी,
1: बिल्कुल मैं अपने आप
0: इसके
1: को
0: लिए
1: आज
0: डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम
1: नहीं
0: करने
1: जाना।
0: के लिए लग
1: चार
0: जाना है।
1: घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को
0: जी
1: कायम रखने के लिए।
0: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है,
1: बिल्कुल,
0: कुछ जाग
1: ये
0: रहा है।
1: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है। हमेशा
0: जी
1: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं, मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है,
0: इतना होने के
1: ये भूख ही मुझसे करवाती है।
0: बाद
1: तो मैं सर
0: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के
1: बिल्कुल।
0: लिए
1: तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ
0: जी
1: कि ये कब हुआ, जब कोरियोग्राफी शुरू की।
0: जी
1: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना चाहती, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ। अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है, दिशा बदलनी चाहिए, तो
0: जी
1: मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।
0: जी
1: मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे। हाँ
0: अच्छा क्या
1: जी,
0: बात है,
1: तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या राय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी।
0: अच्छा प्रश्न ही होता था,
1: हाँ
0: शबीना आएगी ना
1: शबीना है
0: सिखाने
1: ना,
0: के लिए। हाँ
1: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का, तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते हैं वीजा लगवाने मेरा।
0: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर
1: हाँ
0: जाके वीजा लगवा रहे
1: वीजा, और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम, अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना, मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट्स को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता,
0: क्या बात है,
1: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी
0: हाँ
1: कर
0: क्या
1: रही
0: खूबसूरत
1: थी।
0: गाना
1: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं पढ़ ही
0: जी
1: रही थी,
0: जी जी
1: असिस्टेंट डेज की बात है।

0: वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है बट आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था इसलिए मैंने सीखा ही नहीं, मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ही सेड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म, अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी,
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ तुम्हें बता देगा, एक गाना करो मजा आया तो आगे करना,
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ
0: है आज
1: वो भी
0: ये
1: बहुत
0: दिल,
1: अच्छा किया था अंतरा वाली जी ने,
0: आहा,
1: बढ़िया किया था।
0: बहुत फेमस हुआ था वो गाना। ही सेड मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है, मैं गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना, मैंने किया, वो गाना था एक दो तीन और हमको आज कल है इंतजार,
1: हाँ, वो
0: माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित
1: अभी
0: का।
1: अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने,
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है, सच अ
1: सीख लेंगे
0: ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज,
1: जी।
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई, उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है, इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और जब पहला गाना
1: कोई
0: एडिट करके ये
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे इसमें।
0: तुमने यही सीखना, और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकेंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट, एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं,
1: जी
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया, और फिर लगा कि ओ माई गॉड ये मेरा क्रिएशन है, जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं,
1: जी
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरी, ये मैंने क्रिएट किया है,
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ, तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये करना है, मम्मी बोले करो बेटा,
1: एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस
0: आप
1: डांस
0: उसको
1: को
0: जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके
0: बिल्कुल
1: साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे
0: बिल्कुल,
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं,
1: हाँ
0: एडिटिंग तक,
1: हाँ
0: पहला प्रोसेस होता है गाना आता है कोरियोग्राफी होती है डायरेक्टर को दिखाते हैं शूट करते हैं एडिट

0: करते हैं,
1: जी
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं,
1: जी
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो, तब मुझे वहाँ पे मज़ा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे। फिर ज़िंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई।
1: आपको सुन के ना इतना मज़ा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो, और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलती जा रही हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा, और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए, जितनी भी जाएगी
0: तो
1: वो।
0: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का, जो मेरा अपना फेवरेट है,
1: जी
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म
1: हाय
0: से है,
1: हाय,
0: गाना है जलते दिए।
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब
1: जी
0: भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है।
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं
0: जी
1: और वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहाँ से वहाँ जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि कैसे
0: बिल्कुल,
1: वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना
0: सो
1: सुना
0: अगर
1: दें।
0: आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
1: सुनेंगे और बाद
0: हिंदुस्तान
1: में
0: के
1: देखेंगे भी।
0: देखेंगे और सुनेंगे,
1: जी
0: तो ये जो दिए देख रहे थे आप, क्योंकि गाना था जलते दिए,
1: जी
0: तो हमारे जो सूरज बड़जात्या जी है उनको
1: जी
0: तो सब जानते हैं,
1: जी
0: सबके दिलों की धड़कन है वो,
1: जी
0: तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
1: बिल्कुल, बहुत
0: उनसे
1: सारा
0: मैंने, वो
1: है।
0: मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ।
1: जी
0: जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे,
1: खुद जलाएंगे यानी,
0: नकली दिए भी मिलते हैं जो
1: हाँ
0: आप
1: वो,
0: ऑन करके डाल
1: हाँ
0: दो,
1: एलईडी वाले।
0: ही
1: जी
0: सेड नहीं। उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, ही सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी
1: असली दिए
0: दिए
1: जलाएं।
0: दिख रहे हैं हम
1: हाँ
0: जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है
1: ये
0: इस
1: बढ़
0: गाने
1: जाती है
0: की।
1: जिसका ये काम ऐसा
0: हाँ, तो
1: होता
0: उसमें
1: है,
0: दिए
1: ये
0: जलाने में मैं भी
1: ऑथेंटिसिटी
0: होती
1: होती
0: थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं।
1: जी,
0: आपने जो
1: उसके साइड
0: सवाल
1: से ही
0: किया,
1: पट्टी
0: साइड
1: पे भी
0: में
1: जल रहे हैं। जी
0: जहां जहां वो जा रही है
1: हाँ
0: वो दिए जल रहे हैं,
1: जी
0: और उन दियों को हम जलाते थे, और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी,
1: हाँ, और वो
0: तो वो
1: बहुत लाइट
0: चलकर,
1: नेट की
0: हाँ,
1: साड़ी है वो।
0: तो
1: जी
0: वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर।
1: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा
0: हाँ,
1: लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के भी हैं
0: वो
1: और वो।
0: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के
1: जी
0: कैसा लगे कि है बहुत करीब,
1: जी
0: लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले, वो हमारे सेट पे होते हैं,
1: जी
0: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता, फिल्म
1: डॉक्टर्स होते
0: सेट्स,
1: हैं, एम्बुलेंस
0: डॉक्टर्स
1: होती
0: होते
1: है।
0: हैं, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे
1: जी
0: लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको
1: हाँ
0: भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो
1: हाँ
0: पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
1: इक्विपमेंट्स
0: सेफ्टी
1: और सेफ्टी नॉर्म्स के
0: बहुत
1: साथ में
0: ज़रूरी है,
1: ही
0: बहुत
1: काम करना
0: ज़रूरी।
1: चाहिए।
0: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से,
1: बहुत
0: कोमलता
1: रिच
0: से
1: सॉन्ग,
0: दर्शाया गया,
1: बहुत प्यारा, बहुत
0: बहुत
1: सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये।
0: बिल्कुल
1: दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है, तो
0: बिल्कुल
1: जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना, जलते दिए आप सबके लिए।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया,
1: जी
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, इंटरनेट पे सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो वहां से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा हैं, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी
1: रेखा
0: आपने
1: जी को
0: सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, बात तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता
1: मैं
0: सकती हैं। जी
1: हर एक के बारे में बताती
0: जी
1: हूँ।
0: जी जी
1: रेखा जी
0: आए
1: हमारी उमड़ाओ जान,
0: जी
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी इंदिर कुमार जी की,
0: जी
1: मैं नई नई कोरियोग्राफर थी,
0: जी
1: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी,
0: आज भी उतनी ही
1: हाथ
0: खूबसूरत,
1: भी उतनी
0: पचहत्तर
1: ग्रेसफुल।
0: 73-74 बरस की उम्र में।

0: भी वही अदाएगी।
1: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले तो
0: हाँ
1: दिल के अंदर तीर घुस जाते, वैसी
0: हाँ
1: है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और उनके साथ मैंने वो फिल्म की,
0: जी
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और
0: जी
1: बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया
0: आह क्या बात है।
1: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर। इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है, ठीक है। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है,
0: अच्छा
1: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है जो
0: अच्छा
1: हम कहते हैं ना अदायगी, नज़ाकत,
0: हाँ
1: यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
0: यस
1: ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नज़ाकत और आपका ग्रेस पता चलता
0: इसे
1: है।
0: अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके
1: बिल्कुल
0: निकल जाना।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: आपको ज्यादा शोर शराबा जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी। इसे कहते हैं अदायगी,
0: हाँ
1: जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्कड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर।
0: सोनम
1: शी वर्क
0: कपूर।
1: रियली हार्ड, रात को 2-2 बजे तक रिहर्सल किया। और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरे के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ,
0: हाँ
1: बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरा पे दिखा सकती।
0: के साथ में उन्होंने
1: बिल्कुल,
0: डांस किया जी।
1: शकुंतला बन गई थी वो बिल्कुल उस
0: हाँ
1: गाने
0: ऐसा
1: में,
0: ही
1: यही था।
0: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था। शी वॉज
1: शी
0: वेरी
1: इज
0: गुड,
1: वेरी
0: बहुत
1: ग्रेसफुल।
0: बहुत बहुत प्यारा किरदार उन्होंने।
1: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ, शर्वरी,
0: अच्छा
1: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते हैं और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
0: सही बात है,
1: यू नो,
0: कहेंगे लोग।
1: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है, वो ही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
0: इनके कोई
1: तो
0: नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए। ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में। तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है
1: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की
0: जी?
1: आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ।
0: जी
1: उनके साथ अब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
0: एक ही जरा जरा
1: वो भी किया। और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे
0: जी
1: थे।
0: जी
1: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा, तो
0: जी
1: मैं रो पड़ी।
0: हाँ
1: शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन। शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखा ये गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
0: क्या बात है
1: हाँ, ये होता है अचीवमेंट।
0: जी।
1: और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
0: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को
1: उन्होंने
0: गुरु
1: अगर
0: मान के
1: माधुर
0: उसके जैसा ही
1: उन्होंने
0: काम
1: सरोज
0: किया
1: जी को अगर निभाया स्क्रीन पे, तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया।
0: जी
1: आपको पता है, जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो
0: जी
1: सूरज बड़जात्या की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन।
0: जी बहुत
1: उन्होंने निभाया
0: खूबसूरत
1: उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल जो गाना है,
0: जी
1: मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया,
0: जी
1: माधुरी दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड कि मुझे चेंज करना है। शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है। जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है।
0: जी
1: और वही चीज लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं। टचवुड, अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको। और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बड़जात्या, जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है, चलना है। सूरज जी ने कहा, सोनम मुझे यही चाहिए। जब आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
0: हाँ
1: और सलमान खान, उन्होंने जब
0: हाँ
1: वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है, वो सगा भाई है,
0: जी
1: वो भी मेरे साथ रह रहे के, वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है।
0: अरे वाह
1: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने

0: बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है, सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। तो सूरज जी ने बोला कि शबीना,
1: जी
0: तो वहां पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो स्टार मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है। और मेरे मामले में यही चीज मेरे साथ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा।
1: हाँ,
0: उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
1: और उनको वहां तक लाना पड़ता
0: लाना
1: है,
0: पड़ेगा
1: मेहनत
0: आपको
1: करनी पड़ती है।
0: उनके कैरेक्टर को। मैं करके दिखाती हूँ, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि
1: हाँ
0: उस कैरेक्टर को जी पाऊँ, उसकी तरह बन पाऊँ, उसके जैसे लचक लाऊँ, उसके जैसे। वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
1: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
0: सारे
1: इनके असिस्टेंट्स,
0: एचओडीज
1: एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
0: तभी
1: किरदार को
0: प्रेम
1: जी रहे
0: रतन धन
1: होते हैं।
0: पायो बनी है। मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
1: जी
0: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
1: जी
0: इसका कोई भी कोना कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: सोनम का कैरेक्टर है,
1: जी।
0: फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
1: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
0: उनको भी
1: बीच में
0: जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है।
1: जी।
0: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
1: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है, और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है, और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे। वहां तक
0: बिल्कुल
1: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे।
0: बिल्कुल,
1: थे तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है।
0: उफ प्लीज।
1: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूं पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें
0: बिल्कुल,
1: संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है, और क्या फिल्माया गया है।
0: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ
1: हाँ
0: इस
1: हाँ
0: पर,
1: बिल्कुल
0: अगर
1: जी,
0: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरे इस
1: आपके
0: इंटरव्यू
1: नजरिए
0: के
1: से।
0: बाद अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहां पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस, उसकी अदायगी देखिए, वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूँ,
1: अच्छा
0: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर,
1: हाँ
0: जंगल में वो गाना शूट हो रहा
1: हाँ
0: है और दो लोग
1: लाइट
0: हैं,
1: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
0: बिल्कुल
1: है जी,
0: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
1: कुछ नहीं है,
0: और दोनों हर फ्रेम में है,
1: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
0: लाइट्स
1: गई
0: भी
1: हैं
0: नहीं है,
1: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
0: तो
1: जंगल का है।
0: उसको वो जो सूदिंग वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
1: जी
0: किया है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
1: तो ऐसे
0: कोरियोग्राफर एक
1: गानों में भी
0: म्यूज
1: कोरियोग्राफर का काम
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: बिल्कुल
1: सिर्फ
0: होता है,
1: नाचने के लिए नहीं, बाकी
0: बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
1: जी
0: और आप फिर ये गाना देखिए, आई
1: जी
0: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
1: जी
0: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
1: जी
0: तो बींग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विथ योर डायरेक्टर।
1: जी
0: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है,
1: की मोमेंट हो।
0: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे जो लग जा गले में हुआ है।
1: जी
0: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और
1: अरे
0: मनोज कुमार जी,
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: और कैरेक्टर्स देखो उसके जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में। इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए।
1: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले।

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर एचआर पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
2: परेशान हूं मैं।
1: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
3: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
5: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
5: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी।

0: मेरी मम्मी की बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार। बरसात से प्रेम का अटूट नाता है। कहते हैं प्रेम कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्रेम तो एक एहसास है जो कभी किसी मुस्कान में उतर आता है तो कभी किसी खामोशी में, कभी किसी खत की स्याही में और कभी बरसती हुई बारिश की हर बूंद में।

जब होता है तो मौसम बदलने लगते हैं, धूप नरम लगने लगती है, चांद कुछ ज्यादा ही अपना सा लगने लगता है और हवा जैसे किसी का नाम कानों में घोलकर गुजरने लगती है और बरसात की हर एक बूंद हम पर ऐसे बरसती है जैसे किसी का प्रेम बरस रहा हो।

बरसात में आसमान भी खुलकर प्यार बरसाता है और धरती भी उसे अपनी खुली बाहों में तड़पकर समेट लेती है। बरसात की हर एक बूंद जैसे किसी अधूरे ख्वाब की कहानी कहती है।

अंतराल के बाद छायांकित में आपका फिर से स्वागत है। बरसात पुरानी यादें ताजा कर देती है तो कभी खिड़की या छत पर गिरती बूंदें किसी की दस्तक देने लगती है और भीगी हुई मिट्टी की खुशबू किसी पुराने मिलन की याद बन जाती है।

0: रात की तन्हाइयों में जब बारिश की धीमी फुहारें खिड़की से टकराती हैं, तब दिल भी किसी का नाम लेकर मुस्कुरा देता है। चांद बादलों में छिपा होता है, तब भी उसकी रोशनी दिल को रोशन कर रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल को वैसे ही धड़काता है जैसे महबूब सामने ही बैठा हो।
1: दम भर

प्रेम में मिलना जितना सुंदर होता है, विरह उतना ही गहरा दर्द वाला। दूरियां प्रेम को कम नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती हैं। बिछड़कर भी प्रेमी एक दूसरे के लिए जब दुआ बन जाए

तो ऐसा प्रेम अमर हो जाता है, कुछ रिश्ते साथ होकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ दूर रहकर भी पूरी जिंदगी का सहारा बन जाते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में सुनवाएंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: क्या?
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ

0: अभी आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार और साथियों आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। किसान साथियों, कहते हैं कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, जीवन में कभी ना कभी लौट कर खुशी बनकर आती है। इसलिए हालात जैसे भी हों, अपनी सोच, व्यवहार और किरदार की अच्छाई कभी मत छोड़िए। आज की इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज आपको बताना है कि जॉइंट क्यू किसकी किस्म है। 3 विकल्प भी हम आपको बता रहे हैं, पपीता, अमरूद या फिर अनानास। जी हाँ साथियों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। साथियों, हमारा आज का प्रश्न है कि जॉइंट क्यू किसकी एक किस्म है, पपीता, अमरूद या फिर अनानास। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें, कार्यक्रम सुनते रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों, समय समय पर भारत सरकार द्वारा किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं और उनका क्रियान्वयन भी बहुत ही सुचारू रूप से किया जाता है। ऐसी ही एक योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। चलिए इस योजना पर कुछ चर्चा करते हैं।

नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों और कृषि कार्यों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वे किसानों को किराए पर ड्रोन सेवाएं देकर आय अर्जित कर सकें। ये योजना 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए लगभग 1,00,00,261 रुपए के परिव्यय के साथ संचालित की गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य है खेती में आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ाना, महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, किसानों को कम समय, कम लागत और अधिक सटीकता के साथ उर्वरक एवं कीटनाशक छिड़काव की सुविधा उपलब्ध कराना, साथ ही खेती में श्रम की कमी को दूर करना और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार की इस योजना से मुख्यतः जिन्हें लाभ मिलता है वो है महिलाएं, स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े होते हैं, और चयनित समूह को ड्रोन खरीदने के लिए सहायता भी दी जाती है। और सरकार जो सहायता देती है वो इस प्रकार है, जब कोई ड्रोन खरीदता है तो उसे ड्रोन और उसके उपकरणों की लागत का 80% या अधिकतम 8,00,000 रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए रियायती ऋण की व्यवस्था भी की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण का भी प्रावधान है, जिसमें एक महिला सदस्य को लगभग 15 दिनों का ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाता है, दूसरे सदस्यों को 5 दिनों का ड्रोन असिस्टेंट प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण के बाद वे प्रमाणित ड्रोन ऑपरेटर के रूप में कार्य कर सकती हैं। साथियों, ड्रोन का उपयोग जो है ये मुख्य रूप से नैनो यूरिया के छिड़काव में, तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए, बड़े खेतों में कम समय में समान रूप से दवा पहुंचाने के लिए किया जाता है, और इससे किसानों को बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे समय की बचत होती है, मजदूरी की लागत कम होती है, दवा और उर्वरक का समान एवं सटीक छिड़काव होता है, फसल को कम नुकसान पहुंचता है, और आधुनिक तकनीक अपनाने से उत्पादकता बढ़ने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ महिलाओं को भी इसका विशेष लाभ मिलता है। ये योजना केवल ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, तकनीक कौशल और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास है। महिलाएं अपने क्षेत्र के किसानों को ड्रोन सेवा देकर नियमित आय अर्जित कर सकती हैं।

और अपने स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। ये योजना केवल ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, तकनीक कौशल और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास है। महिलाएं अपने क्षेत्र के किसानों को ड्रोन सेवा देकर नियमित आय अर्जित कर सकती हैं और अपने स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूत भी बना सकती हैं। तो साथियों, भारत सरकार की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और सभी महिलाओं को इस योजना के साथ जुड़ना चाहिए और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सशक्त नारी समृद्ध किसान, यही है विकसित भारत की पहचान।

तो साथियों, ये तो थी कुछ बातें नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में, लेकिन अब सुनिए ये बातचीत जिसका विषय है दूध उत्पादन रोजगार और समृद्धि का साधन। और इस बारे में बातचीत के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कालीगढ़ के रहने वाले किसान भाई श्री एम करुणन जी। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इनके अनुभव।

0: करुणन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: अपने सुनने वालों को बताइए कि आप पशुपालन और कृषि के साथ किस तरह से जुड़े।
1: मैम पहले तो मैं सिविल्स में था मैम, वैसे जैसा कि कंस्ट्रक्शन वर्क में ऐसा कर रहा था। तो जब यहाँ पे मेरा क्या है, ससुर को देख के मेरा इंस्पिरेशन मिला। वो गौ पालन कर रहे हैं 20-25 साल से।
0: जी
1: वो जब मेलन गए थे तो मेरा हाथ देख के गए थे, उनका कारोबार जो भी देखना है तो हम देख रहे थे। तो हम देखा उनका एक करीबन एक एक डेढ़ महीना हम देख रहे थे उनका फार्म को लेकर।
0: जी
1: तो उस टाइम लगा कि हम सब कुछ मेरा हाथ में होते हुए हम क्यों सिविल में इस तरह यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना, जब सब कुछ मेरा पास है, हम अपने ही पास कर सकते। जैसे कि हम लोग इस तरह सिविल लाइन में हम लोग जैसा होता कि हम लोग यहाँ वहाँ कस्टमर को ढूंढ के जाना पड़ता, और
0: बिल्कुल
1: गाय का दूध का ऐसा है कि कस्टमर हम लोग को ढूंढ के आते,
0: बिल्कुल
1: और मार्केट का डिमांड इतना है कि हम लोग कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। अंडमान का हिसाब से मैम कितना भी बड़ा फार्म रख लीजिए, अंडमान में दूध का कमी कभी पूरा नहीं होएगा। क्योंकि यहाँ
0: बिल्कुल
1: में ऐसा नहीं कि अभी मेलन में आप देखे होंगे कि एक एक गाय कम बोलने से भी 20 या 25 लीटर या 10 या 15 लीटर दूध देती है।
0: जी
1: अंडमान में ऐसा कोई गाय नहीं है कि, और हम लोग पास इस तरह गाय है भी नहीं जो गाय हम लोग को 10 या 15 या 20 या 25 लीटर दूध दे।
0: बिल्कुल
1: यहाँ में एक एवरेज गाय दे रहा है बोलने से एक 5 से 10 लीटर, 5 मैक्सिमम 5 लीटर एट ए टाइम देता है मैम। तो वो रख के हम लोग यहाँ का फार्म को दूध का फुलफिल करना बहुत मुश्किल है अंडमान में।
0: बिल्कुल। तो आपका जो ये इंटरेस्ट था पशुपालन की ओर, ये मतलब एक टेम्परेरी तौर पे काम करते करते आपका रुझान जो था वो इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो अब ये आप बताइए कि आपने कितनी गाय अपने घर में रखी हुई
1: मेरा
0: है।
1: पास एक 15 गाय है मैम,
0: जी
1: और एक बाकी सब बोले से छोटे छोटे बछिया और बछड़ा लोग हैं।
0: जी
1: अभी उसी से अभी डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं मैम। अभी फिलहाल तो अभी बोले से अभी गवर्नमेंट भी अभी कुछ कुछ स्कीम निकाला है हम लोग से,
0: जी
1: आखिर आधार कार्ड जैसा हम लोग लिख के लेके गए हैं कि अब उस लोग मंगा के मेलन से मंगा के देंगे करके। आगे
0: मतलब
1: हम
0: अच्छी नस्लों की जो
1: अच्छी
0: गाय है
1: नस्लों
0: वो
1: का गाय
0: बाहर से यहाँ
1: बाहर से
0: पर
1: मंगा के लेंगे
0: मंगाई
1: करके,
0: जाती
1: हम लोग बोला ठीक है करके। तो उसमें हम लोग अपना नाम भी दिए हैं, दर्ज कराए
0: जी।
1: हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से
0: अभी आई नहीं है
1: अभी
0: वो।
1: तक तो नहीं आए, तो करीबन एक 7-8 महीना हो सकता है।
0: अच्छा, जैसे आपने बताया कि 15 गाय आपके घर में है, तो उनको रखने की पूरी प्रॉपर जगह है।
1: हाँ प्रॉपरली एक शेड बना के रखा है मैम,
0: जी
1: एक 200 स्क्वायर मीटर का शेड है,
0: हवा पानी का सही
1: हवा पानी
0: इंतजाम
1: सब
0: है।
1: कुछ है, सब ओपनली बना के रखा है।
0: जी
1: जो से ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन में बना के रखा है,
0: जी
1: तो जैसे उनसे उनको बोलने से हवा मैक्सिमम मिले और सनलाइट मैक्सिमम मिले, तो उस तरह करके रखा है। वो बोलने से मैक्सिमम रात का टाइम शाम को हम 4 बजे गाय को अपना गाय स्थान में लेके थाल में लेके बांध देता, फिर सुबह टाइम एक 8 या 9 बजे हम खोल के छोड़ देते।
0: पानी पीने का उनका इंतजाम
1: वो
0: जो
1: सब
0: है,
1: रखे हैं
0: साफ
1: मैम,
0: पानी का
1: साफ पानी
0: इंतजाम
1: हम
0: है।
1: लोग बोलने से एक वेल है, कुआं
0: जी
1: है, कुआं के थ्रू हम लोग मोटर से डाल के उनको पिला देते। और बाकी तो घास तो हम लोग अपना बोले से अपना सेपरेट हम लोग के लिए उगा के रखे हैं गाय के लिए,
0: अलग से खेती कर रहे हैं
1: अलग
0: आप
1: चीज
0: गाय के चारे की।
1: गाय का खेती करके रखे हैं एक 3 एकड़ का जमीन में।
0: जी
1: उनमें बोले से सुपर नेपियर है, और जैसा कि और ये सुबह बुल होता है, 2-3 वैरायटी का सारा तरह का
0: ठीक,
1: घास मिला के हम लोग डाल के रखे हैं,
0: वो भी आपको मतलब घर से ही मिल
1: वो
0: जाता
1: भी घर
0: है।
1: से ही मिल जाता है मैम।

0: ठीक
1: और
0: है,
1: हम गोबर को भी उसी में यूज़ करता है, गोबर और गौमूत्र
0: खेती के
1: खेती
0: लिए।
1: के लिए यूज़ करता।
0: अच्छा, 15 गायों से आपका एक दिन में कितना लीटर दूध जो है वो हो जाता
1: अभी
0: है?
1: मैम 15 गाय में मेरे पास बोलने से सिर्फ 8 गाय दूध दे रही है,
0: ठीक।
1: बाकी सब तो गाभिन है, वो मेरे ख्याल से 4 या 5 महीना में बच्चा दे देंगे। तब अभी मैक्सिमम मेरे पास 50 to 55 लीटर
0: दूध
1: पर
0: आ
1: डे दूध
0: जाता
1: आता
0: है।
1: है मैम, सुबह शाम मिला के।
0: 1 लीटर दूध के क्या भाव जो
1: एक
0: है वो
1: लीटर
0: होते हैं?
1: अभी पोर्टबेर एरिया में 100 रुपीज़ चल रहा है मैम।
0: 100 रुपीस है। तो आप ये जो 50 लीटर दूध है इसको आप बेच देते
1: हाँ,
0: हैं?
1: 50 लीटर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कर।

0: मिला के
1: 1 लीटर दूध के क्या भाव जो
0: एक
1: है
0: लीटर
1: होते हैं?
0: अभी फूड बैर एरिया में 100 रुपीज चल रहा है मैम।
1: 100 रुपीज है। तो आप ये जो 50 लीटर दूध है इसको आप बेच देते हैं,
0: हाँ 50 लीटर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
1: डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो लोगों के घर तक जाना पड़ता है या लोग आते हैं लेने?
0: नहीं मैम ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम तो हम लोग अपना घर घर लेके जाए पहुंचा देते हैं, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी।
1: तो मतलब इस तरह से आप 50 लीटर दूध 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से आप बेचते हैं, तो आय का एक अच्छा जरिया जो है ये बना हुआ
0: वो तो है
1: है
0: मैम
1: दूध जो
0: दूध का।
1: है ना। गायों में आपने कभी कोई बीमारी देखी? तो वो कौन सी बीमारी है जो यहाँ पे अंडमान में बहुत ज्यादा देखी जाती है पशुओं
0: ये
1: में?
0: अंडमान अभी मैक्सिमम सारा किसान लोगों को प्रॉब्लम मस्टाइटिस का होता है मैम, जैसे थन का रोग बहुत बहुत ही खतरनाक रोग है वो, मैक्सिमम आज
1: जी
0: का डेट में होता है मैक्सिमम जिनका गाय लोगों को ये कंप्लेंट आता है। स्तन रोग में से हम लोग जब दूध निकाल देते हैं, निकाल के उस जगह जगह में सफाई करे भी ना, गाय उसी में सो जाता है वही जगह में, तब उनको थन रोग होने का बहुत चांसेस रहता है,
1: गंदगी से
0: गंदगी की वजह से, बैक्टीरिया वजह से हो जाता है।
1: जी
0: उसको हम लोग प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो गाय बर्बाद हो जाएगा मैम, बोले से दूध अब
1: जी
0: लोग नेक्स्ट टाइम में दूध के बारे में सोच ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? मान लीजिए किसी गाय को ये बीमारी हो जाती है, तो उसका इलाज जो है वो किस तरह से किया जाता
0: इलाज
1: है?
0: जो मैंने वेटनरी तरफ से हम लोग ट्रीटमेंट बहुत करा के दिए हैं, और एक्चुअली बोले से एक मेडिसिन होता है, बोले से विस्प्रिक करके स्प्रे
1: जी
0: और मेडिसिन मिलता है मार्केट में अवेलेबल है,
1: जी
0: उसको प्रॉपरली और हम लोग जो थन जो सूज गया है उसको प्रॉपरली हम लोग गर्म पानी रख के मसाज वसाज करके उसको फिर उसको टोटली ड्रेन करना है।
1: जी
0: ड्रेन करने के बाद फिर ये दवाई को अप्लाई करेंगे, तो कैसे भी दिन में 1 या 2 बार करना ही पड़ेगा आपको, हर दिन इस तरह 1 हफ्ता तक करेंगे थन रोग जो है ठीक हो
1: ठीक हो
0: जाएगा।
1: जाता है। क्या चीजें है ना पशुपालकों को ध्यान देनी चाहिए कि उनकी गायों में ये रोग आए ना?
0: एक्चुअली जब हम लोग जब दूध निकाल देते हैं, दूध निकाल के एक 10 या 15 मिनट का अंदर अगर गाय सो जाता है लेट जो जगह में, तो उनको थन रोग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर हम लोग दूध निकालने के बाद गाय को दाना पानी रखते हैं या चारा देते हैं तो खा के सोते सोते 1 घंटा हो जाएगा, तब तक क्या है तो नॉर्मल हो जाए, तो उस टाइम बैक्टीरिया अटैक करने के चांसेस बहुत कम रहता
1: तो
0: है,
1: इस बात का ध्यान पशुपालकों को रखना
0: रखना
1: चाहिए
0: चाहिए।
1: है ना। तो इसके अलावा और भी कोई बीमारी आपने देखी कभी अपने पशुओं में?
0: मैं उसका बात तो मैक्सिमम डायरिया होता है मैम, लूज
1: जी
0: मोशन उस तरह मैक्सिमम हो जाता है, जैसे कि कोई दाना पानी ज़्यादा देते हैं तो उस तरह इसमें डायरिया हो जाता है, तो उस तरह इसमें हम तो मैक्सिमम दवाई तो वेटनरी तरफ से दे देते हैं,
1: जी
0: जैसे कि हम लोग
1: क्या लक्षण दिखते हैं आपको गाय में जब डायरिया होता है?
0: तो मैक्सिमम पानी लेना कम कर देगा मैम,
1: जी
0: ज़्यादा खाएगा पिएगा नहीं, और खाने से भी लूज मोशन होते रहेगा
1: जी
0: और बहुत कमज़ोर हो जाएगा मैम, तो उसका बाद तो हम लोग तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो गाय बहुत कमज़ोर हो जाएगा, फिर दूध कम हो जाएगा,
1: जी
0: प्रॉब्लम क्रिएट होएगा फिर
1: तो
0: उसका
1: मतलब ये सारी बीमारियां यहाँ के मौसम के हिसाब से पशुओं में
0: जो
1: देखने को
0: मैक्सिमम
1: मिलती
0: आता
1: हैं,
0: है।
1: लेकिन वेटनरी का इसमें आपको पूरा सहयोग मिलता है, वो
0: हाँ
1: लोग आते
0: वेटनरी
1: हैं,
0: हम लोग
1: दवाई
0: जैसे
1: देते
0: कि
1: हैं।
0: कॉल करते हैं कि कोई भी टाइम
1: जी
0: रात का टाइम भी होने से उसमें पहुंच जाते हैं।
1: करुणन जी, आपका जो रुझान पशुपालन की तरफ रहा और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप इसमें बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपने पशुओं की देख रेख कर रहे हैं, और उनसे आपको उत्पाद भी बहुत अच्छा मिल रहा है। आप फ्यूचर में इस काम को किस तरह से देखते हैं?
0: मैम फ्यूचर में ये प्लान है कि अभी जैसा कि हम लोग घर घर दूध को बोतल में लेके जाके दे रहे हैं, अभी जैसे अनिट को कर रहा है पैक करके दे रहा है
1: जी
0: सारा घर घर में दिए भी ना, दुकान दुकान में दे रहा है,
1: जी
0: और हम लोग ये सोचे कि रोज का दूध जैसा दूध आज 50 लीटर दूध मिल रहा है, हम लोग यहाँ वहाँ घर घर डिस्ट्रीब्यूट करे भी ना, 50 लीटर आज का दूध आज ही दुकान में सेल करने की तरह सोचा है,
1: डायरेक्ट मतलब सेल
0: डायरेक्ट सेम
1: करना।
0: टाइम आज का
1: जी
0: दूध सेम टाइम आपको आज ही का दूध आज ही पीने मिल
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: बिल्कुल
0: और जैसे कि गोबर गाय का गौमूत्र और गोबर हो गया वो बहुत मैक्सिमम तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, कल्टीवेशन में यूज़ कर देता फिर
1: जी
0: मैक्सिमम तो वेस्ट हो जाता,
1: वेस्ट में जाता
0: तो हम
1: है।
0: लोग मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट फ्यूचर में वो एक्चुअली मशीनरी बहुत है आ गया, अभी तो बहुत
1: टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई
0: टेक्नोलॉजी
1: हो
0: बहुत
1: गई है।
0: एडवांस
1: हाँ
0: हो गया है,
1: जी
0: तो उस हिसाब से हम गोबर को ड्राई करने का एक मशीन आता है, तो वो मार्केट से अवेलेबल करने के बाद उसको पैकेजिंग करके प्रॉपरली 50 kg बैग्स में हम लोग सेल भी कर सकते हैं, पर बैग 100 या 200 में हम लोग गोबर को ड्राई
1: जी
0: खाद बना के सेल कर सकते हैं, उसमें तो मैक्सिमम हम लोग को अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि वो जो गोबर होता है वो तो ऑर्गेनिक होता है,
1: ऑर्गेनिक खाद है,
0: ऑर्गेनिक
1: बिल्कुल
0: खाद बन जाता
1: बिल्कुल
0: है, तो हम लोग प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं उसका मैम,
1: खेती में काम आ जाएगा
0: खेती में
1: वो।
0: काम हो जाएगा,
1: हाँ
0: जैसे कि गार्डन में काम आ
1: गार्डन
0: जाएगा।
1: में काम आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत नेक विचार है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका काम जो है ये दिनों दिन बढ़े और आप बहुत तरक्की करें, आप हमारे कार्यक्रम में आए। आपसे इतनी बातें हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, धन्यवाद।

रोजगार और समृद्धि का साधन। साथियों, अभी आपने इस विषय में ये बातचीत सुनी और इस बारे में बता रहे थे कालीगढ़ के रहने वाले कृषक भाई श्री एम करुणन जी। किसान भाइयों, इतनी बातों और जानकारियों के बाद अब हम कार्यक्रम के रुख को कुछ गीत संगीत की ओर लिए चलते हैं और आपके साथ आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: बेहद खूबसूरत सा गीत, उम्मीद करते हैं कि इसे आपने भी पसंद किया होगा। और साथियों, अब हमें लगता है कि आपको इंतज़ार होगा आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर जानने का। तो भाइयों, आपका इंतज़ार यहीं पर होता है खत्म, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज के प्रश्न का सही उत्तर। भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में आज हमने आपसे पूछा था कि जॉइंट क्यू किसकी एक किस्म है। तीन विकल्प भी बताए थे, पपीता, अनानास या फिर अमरूद। और इस प्रश्न का सही जवाब है जॉइंट क्यू अनानास की एक किस्म है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।
1: साथियों, अभी हमारे कार्यक्रम में कुछ समय और शेष है, तो क्यों ना आनंद ले लिया जाए एक और प्यारे से गीत का।

0: और साथियों, इसी के साथ बातों और जानकारियों की किसानवाणी की ये संध्या आज के लिए यहीं पर होती है मुकम्मल। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल, और फिलहाल के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: श्रोताओं, अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें, कल सुबह 9:55 से माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026

राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे प्राइमरी चैनल के अलावा एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। और अब आइए सुनते हैं बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें।

0: यादें।
1: बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनिया का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ नागरिक श्री हसन लमैया को। हसन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जय हिंद।
1: सबसे पहले अपने बारे में कुछ हमें बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं आप?
2: मैं लक्षद्वीप मिनिको में रहने वाला हूँ।
1: जी, लक्षद्वीप के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: मेरा जो आइलैंड है मिनिकोई, वहाँ में महल भाषा, मलयालम नहीं है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है, महल भाषा से चलता है वहाँ का लोकल भाषा। वहाँ का कल्चर भी अलग है, वहाँ का जो फेस्टिवल भी हमारा देश में आप लोग जाके देखने से बहुत बढ़िया रहे। नवंबर 26 तारीख के बाद वहाँ का फेस्टिवल होता है।
1: तो किस तरह के त्यौहार वहाँ पे मनाए जाते हैं?
2: वहाँ में जो होड़ी रेस है मेन है, फिर मच्छी टूना फिशिंग के लिए वो भी एक है, फिर गुड़ी डंडा है वो भी एक खेल है लोकल।
1: लक्षद्वीप के बारे में और कुछ बताइए।
2: लक्षद्वीप में 10 आइलैंड है। 10 आइलैंड में एक मिनिकोई है, दूसरा कवरत्ती, आंध्रो, चेत्रा, बित्रा, ऐसे करके करके बहुत टापू है। वहाँ में मलयालम भाषा चलता है।
1: मलयालम के अलावा और कुछ भी नहीं?
2: मलयालम, फिर स्कूल में हिंदी पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। हम लोग आइलैंड में महल हिंदी इंग्लिश पढ़ाता है।
1: अच्छा।
2: फिर मच्छदीव में अगत्ती आइलैंड में खाली एयरपोर्ट मिलेगा, बाकी जो आइलैंड है वहाँ में हेलीपैड मिलेगा, और वहाँ का आमदनी है कोपरा और मच्छी टूना फिश।
1: तो वहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह है वो शिप वगैरह से पहुँचती है वहाँ पे?
2: हाँ जी, वहाँ से जो कोरिकोड से आता है, कोचिन से आता है सब्जी वगैरह। वहाँ में पैदावार नहीं है इतना सब्जी।
1: मछली तो वहाँ पे मिल जाती है?
2: मच्छी मिल जाती,
1: लेकिन जो मीट है और जो सब्जियाँ हैं वो सारी बाहर से आती हैं।
2: बाहर से, कोचिन से, कोचिन नहीं तो कोरिकोड से।
1: और जन्म वहीं पर हुआ आपका?
2: मिनिकोई में जन्म हुआ।
1: पढ़ाई लिखाई सब वहीं पर हुई आपकी?
2: मेरा पढ़ाई मिनिकोई में ही हुआ।
1: फिर अंडमान कैसे आना हुआ आपका?
2: मैं 1984 में शादी करके अंडमान में आया, कमोर्टा में। मैं कमोर्टा में रहते हुए जहाज में काम करते रहे ऐसे ही, फिर बच्चा लोग को पढ़ाई में लक्षद्वीप जाता है आता है।
1: तो शिपिंग में आपने अपना कैरियर बनाया?
2: मेरा जिंदगी पूरा पानी में ही।
1: और अपने शिपिंग कैरियर के बारे में कुछ बताइए, जब आप शिप में रहते थे तो आपका उस समय का अनुभव कैसा रहा, हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए।
2: उस समय का अनुभव बहुत कठिन था। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहता था 9 महीने का, जब चिट्ठी आता है 3 महीना 4 महीने का बाद, बहुत तकलीफ था उस टाइम। आजकल जमाने में,
1: आजकल तो फोन्स वगैरह हो गए हैं तो संपर्क हो जाता है, उस समय बहुत तकलीफ से अपने परिवार से दूर रहकर आप काम किया करते थे।
2: जी, करना पड़ता है, क्या करेगा, बच्चा लोग को पालना, जिंदगी लेके चलना।
1: तो जब इस क्षेत्र में आपको कार्य करने का मौका मिला तो आपको कैसा अनुभव हुआ?
2: जिस क्षेत्र का बोलने से, मैं तो फॉरेन शिप में था, जो इंडियन ऑफिसर लोग भी रहता है, बाहर का ऑफिसर भी लगता है, बहुत बढ़िया रहता है, एक दूसरे के मिलजुल के हंसी मजा से। सब तो घर परिवार छोड़ के आया है, मिलजुल के चलना है ना।
1: तो बहुत सारे जगहों पर देश विदेशों में आपका जाना हुआ होगा, तो सबसे अच्छा अनुभव कहाँ का रहा आपका?
2: सबसे बढ़िया हमारा देश, देश से बढ़कर कुछ नहीं है।
1: और कहाँ कहाँ आपके शिप जाया करते थे?
2: मेरे शिप में तो अभी कहाँ कार्गो मिलता है वहाँ जाना पड़ेगा, कभी सिंगापुर, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी फ्रांस, कभी रूस।
1: तो इन सब जगहों पर आप घूम कर आए हैं?
2: हाँ जी।
1: तो जब वहाँ पर आप जाते थे तो शिप बंदरगाह पे भिड़ते ही वहीं पे फिर वापस आ जाते थे, या वहाँ पे उतर के वहाँ पे घूमने का मौका मिलता था?
2: नहीं, हम लोग को अलग से पास मिल जाता है, वो पास कितना दिन का है, जहाज रहेगा उतना दिन का पास रहेगा। अच्छा। वो पास का हिसाब से हम लोग कहाँ जाने का हो, आज 3 आदमी गया, कल 3 आदमी गया, ऐसे चलते रहता।
1: कभी परिवार को साथ में लेके जाने का मौका मिला?
2: जी नहीं मिला परिवार लेके जाने का मौका, नहीं था। हम लोग सीमेंट था है ना, ऑफिसर लोग को ही परिवार लेके जाने

0: अनुमति है, सेम एंड को नहीं है।
1: तो जितने भी जीवन आपने व्यतीत किया है अपने परिवार से दूर रहकर किया है।
0: जी जी, अब ये देख के आने तक वही उसका, मेरा बच्चा क्या पढ़ा, मेरा घर में क्या खाया, मेरा बच्चा लोग कहाँ चले गया, वो एक चिंता है। दूसरा हमारा खाम का चिंता है, दोनों मिला के हम लोग चलना पड़ता है। तो काम तो करना है ना, वो हिसाब से दोनों मिला के कोई अपना दिमाग के टेंशन नहीं दे के काम करके जिंदगी आगे चलने के लिए कोशिश किया पूरा जिंदगी।
1: परिवार ने पूरा साथ दिया आपका?
0: मेरा परिवार आज भी।
1: जी, कौन कौन है आपके परिवार में?
0: मेरा दो बच्चा है, एक लड़का एक लड़की, हम दोनों, हमारे दोनों।
1: सब खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा है इस समय आप?
0: भगवान की कृपा है, अल्लाह जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह।
1: जो युवा शिपिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से जो है उस क्षेत्र में जाया जा सकता है?
0: अभी आजकल तो बहुत आसान हो गया, आपका सब कुछ अपना पास में है, लेकिन खाम बहुत कठिन है, खाम पानी में है। वो हिसाब से अपना जीवन पहले फैसला करना, जाना कि नहीं, अपना फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, वो सब सोच के ही आगे चलना।
1: कहने का मतलब है कि अपने आप को मजबूत
0: मजबूत होना, तैयार
1: तैयार
0: तैयार
1: करके ही उस क्षेत्र में जाया जा सकता है।
0: जी जी जी जी,
1: क्योंकि बहुत ही कठिन समय रहता है कि आप 6 महीने या 1 साल तक आप घर ना आओ और परिवार से ना मिलो, तो
0: कभी कभी जो सिर रफ हो जाता है ना, वो टाइम में थोड़ा तकलीफ होता है
1: जी।
0: उस टाइम में हम लोग को जो जिंदगी में जो सब कुछ याद आता है
1: जी, उसी प्रश्न में मैं अभी आने ही वाली थी कि समुद्र है तो कठिनाइयां तो होंगी ही, थोड़ा भावुक हो चुके हैं आप।
0: कोई बात नहीं, होता है, पिछली
1: जी
0: जिंदगी में जो गुजरा हुआ जिंदगी जो याद आता है ना।
1: जी जी, जब भी कुछ आपदा वगैरह होती है, जिससे कि सुनामी का दौर भी आपने देखा है, कोरोना का दौर भी देखा है, तो उस समय आप शिप में ही थे?
0: जी नहीं, मैं सुनामी में कमोर्ता में था।
1: अच्छा, तो उस समय कमोर्ता कैसा था?
0: उस टाइम जो सुनामी आया था 6:30 बजे कमोर्ता में, तो मेरा एक शौक था बीबीसी सुनना, न्यूज 6:30 बजे का बीबीसी रेडियो सुनने के लिए मैं जागा। तो वहां में जैसे हिलना शुरू, तो हम दिल में सोचा ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर बाहर आया तो बहुत पानी एकदम बड़ा हो गया, तो हम दिल में सोचा ये तो गड़बड़ है। सभी को बुला के हेड काउंट किया, सब एक साथ पहाड़ के ऊपर चला।
1: तो उस तरह आप उस विपदा से उभर कर आए।
0: जी जी जी।
1: और कमोटा द्वीप के बारे में कुछ बताइए हमें, कैसा द्वीप है?
0: वहाँ में ट्राइबल एरिया है, हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है। बढ़िया जगह है, साफ सफाई, कोई आवाज नहीं, शांत है, अपना मेहनत करो खाओ,
1: यही वहाँ के नियम है।
0: एक दूसरे के प्यार मिल बांट के चलना।
1: रेडियो सुनने का शौक रखते हैं आप?
0: जी, मैं बहुत बहुत बहुत, मेरा जीवन साथी है रेडियो।
1: तो कितने समय से आप रेडियो सुनते आ रहे हैं?
0: मेरा उम्र में जो 12 साल हुआ तब से मैं आज तक, मेरा साथ में रेडियो है।
1: तो रेडियो में कई परिवर्तन हुए हैं, पहले के जो कार्यक्रम का प्रसारण हुआ करता था और आजकल के, तो उसमें कोई बदलाव नजर आते हैं?
0: हाँ,
1: अच्छे लगते हैं आप?
0: पहले भी अच्छे है, अभी भी अच्छे है। कार्यक्रम में थोड़ा अदली बदली हुआ और कुछ नहीं हुआ,
1: लेकिन उसका महत्व आज भी है।
0: हाँ जी।
1: कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते थे?
0: ये विजयपुर में जो आजकल जो प्रादेशिक न्यूज हम लोग को बहुत अहम होता है, क्योंकि ये ना खमोटा एरिया में न्यूज़पेपर उस टाइम नहीं मिलता, अभी एक दो दिन के बाद मिल जाता, तो प्रादेशिक न्यूज बहुत बढ़िया है। फिर सेहतनामा, डॉक्टर के जो मुलाकात होता है, लोग पूछता है बीमारी के बारे में, उसी में हम लोग को बहुत जानकारी मिल जाता है।
1: जब आप काम करते थे शिप में तब भी रेडियो आपका साथी बना रहा है?
0: जी जी जी जी, रेडियो लेके नहीं जा सकता, हम लोग के पास उसका कम्युनिकेशन नहीं मिलता है।
1: अच्छा, आजकल तो रेडियो मोबाइल ऐप पर भी आ गया है, तो सब गाड़ियों पे मोबाइल में सब सुनते रहते हैं।
0: हाँ जी।
1: और क्या क्या शौक है आप?
0: मैं यदि घर में कभी कभी क्राफ्ट बना लेता, लकड़ी का, नरोटी का सिप, छोटा छोटा सिप बनाएगा।
1: अच्छा।
0: फिर कोई दोस्त आएगा तो मछली पकड़ने को जाएगा, फिर घर का आंगन में फूल पेड़ लगाएगा, फिर खेला पेड़, सब्जी जो भी है।
1: तो ये जो आपने अभी कहा छोटे छोटे शिप बनाते हैं, वो आपने किसी ट्रेनिंग ली थी या कहीं से सीखा आपने?
0: जी नहीं, मैं किसी से ट्रेनिंग नहीं लिया, मैं अपना से।
1: आपके अंदर का ये कौशल है?
0: हाँ हाँ, मैं अपना से जो भी काम है अपना से करूँ।
1: तो बहुत अच्छी बात है। और बागवानी का शौक रखते हैं, तो और क्या क्या लगाया है आपने अपने बगीचे में?
0: मेरा वहाँ में है ना जासी खेला का होता है, फिर जाके सफोटा है, पाइनएप्पल है, मिर्ची वगैरह, घर में जो खाने के लिए थोड़ा मोड़ा दालचीनी, वो सब घर में हो जाता है।
1: और वापस आप लक्षद्वीप चले जाएंगे या यहाँ पे?
0: मैं नवंबर में जाएगा। अच्छा। जो फेस्टिवल है ना शुरू में।

0: मैं लिख के आता है ना फर्स्ट विल के बाद, उसी में मैं जाता हूँ तो देखने के लिए क्या पता?
1: अच्छा, तो वो देख कर फिर वापस आ जाते हैं।
0: हाँ, 1-2 महीने में भाई भाई लोग से मिल जाएगा, दोस्त लोग को मिलेगा, आ जाएगा।
1: ये दोस्तों की बात की है तो जाना चाहेंगे, बचपन का जब दौर था तब उस समय की कोई बात याद है आपको, आपके दोस्तों के साथ में जो खेल खेलते थे, किस तरह के खेल खेलते थे और आजकल के खेलों में क्या अंतर आप देखते हैं?
0: मेरा एक दोस्त है ना वॉलीबॉल प्लेयर, हम दोनों सुबह 6 बजे से ग्राउंड में रहे, आज भी हम उनसे फोन करता है कैसे है, खेल कूद होता है कि नहीं। वो दोस्त मेरा एकदम बढ़िया दोस्त है उसका, कभी उसका याद आ जाता है हम फोन से बात कर लेते हैं, फिर वहाँ जाएगा तो मुलाकात हो जाएगी।
1: और खेल किस तरह के खेला करते थे वहां पे?
0: जो बाकी जो फुटबॉल है वॉलीबॉल है, उस टाइम हम लोग का टाइम में क्रिकेट नहीं था।
1: अच्छा, वही मैं कह रही थी कि उस समय के खेल और आजकल के जो खेल बच्चे खेलते हैं उसमें क्या क्या अंतर आप देखते हैं?
0: नहीं, उस टाइम हम लोग का जो छोटा आइलैंड है ना, आइलैंड में इतना विकास नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, क्रिकेट भी ऐसे नहीं है, देख टीवी भी नहीं था उस टाइम में हम लोग का, वहां में खाली एक रेडियो, फिर वो जो पर्दा में पिक्चर है वो ही आता, वो हिसाब से हम लोग खेल लेता फुटबॉल, कोच नहीं कुछ नहीं, अपना मर्जी से जैसे आए वैसे खेलते जाओ।
1: कहीं पर आपको नजर आता है कि बच्चे जो हैं बुजुर्गों के साथ, वरिष्ठ के साथ में कम जुड़ाव रखते हैं?
0: उसमें मैं आपका सवाल विवरित हूँ, मैं हम बच्चों के लिए साथ खेलना, बच्चे है ना उसको नहीं मालूम क्या है कर, लेकिन आजकल बच्चा को जन्म से मालूम हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन हम थे मेरा टाइम निकाल के बच्चा के साथ खेलना, बच्चा को बुला के समझाना।
1: और जब भी खाली समय मिलता है तो बच्चों को जो है अच्छे अच्छे जो दादा दादी जो नाना नानी घर पे होते हैं अच्छे वैल्यूज भी तो देते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: हम तो बच्चा लोग के पीछे बहुत खुश है, मेरा बच्चा के बारे में नहीं, सारे बच्चे जितना भी बच्चे हैं मेरा ही बच्चे हैं।
1: सारा जीवन आपने शिप में बिताया है, तो और कुछ अनुभव जो हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहेंगे, कोई यादगार पल जो याद आ रहा है?
0: मेरा जीवन में सबसे बड़ा अनुभव है सुनामी, सुनामी जो हुआ है ना उस टाइम में मेरा बदन में खाली एक टी शर्ट, वो दिन कभी भूलेगा नहीं। मेरा बच्चा यहाँ में पढ़ता था कॉलेज में, लड़की बच्चा, फिर 2 दिन के बाद हम लोग थरासा चौरा में जाने का था रेस्क्यू के लिए, लॉन्ग आइलैंड जो स्पीड बोट है उसी में हम जाके बच्चा लोग उठा के रेस्क्यू किया, बहुत तकलीफ से जाने का रास्ता में पूरा पेड़ सब अगड़म बगड़म था, वो अनुभव जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद मैंने लक्षद्वीप गया, लक्षद्वीप गया तो ओके तूफान आया, वो ओके तूफान में भी हम था, उस टाइम मेरा पास रेडियो था,
1: तो रेडियो के जरिए उस सारी जानकारी मिल जाती थी।
0: हाँ वहां में तूफान आके बिजली गिर के सब टावर नारियल पेड़ सब सब सब चले गया, अंधेरा हो गया, तो घर में मेरा भाई का बच्चा लोग सब लोग आगे क्या खबर है कैसा है कितना तूफान है, हम रेडियो के माध्यम से वो लोग को बोलता ये है रेडियो का
1: इम्पोर्टेंस,
0: इम्पोर्टेंट।
1: वही कहते हैं ना कि जहाँ इंटरनेट नहीं पहुँच पाता है, टीवी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे रेडियो अपनी भूमिका बखूबी निभाता है। उसके ज़रिए जानकारियाँ लोगों तक पहुँचती है दूर दराज क्षेत्रों में, है ना
0: जी जी
1: जी। गाने वगैरह सुनने का शौक रखते हैं आप?
0: बहुत, मेरा गाना एकदम मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है, बहुत मेरा गाना का बहुत शौक है, बहुत शौक है, कभी भी गाना गाने को नहीं सकता मेरे को, लेकिन सुनने का बहुत शौक
1: तो मोहम्मद रफ़ी साहब जी के गाने आपको बहुत पसंद
0: बहुत
1: हैं
0: शौक है।
1: जी, उनकी आवाज़ तो वैसे भी बहुत ही बेहतरीन है।
0: कुदरत ने दिया हुआ हर इंसान को दे।
1: चलते चलते हमारे जो युवा श्रोता हैं, जो बच्चे हैं, समाज है, उनको आप क्या स्नेह भरा संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहता हूँ, माँ बाप को ख्याल करें, भाई बहन को रिश्ता हमेशा बरकरार रखें, जिंदगी में एक बार अपना दोस्त लोग को जाके मिले, मोबाइल से नहीं अपना घर जाके मिले, यही है मेरा एक संदेश।
1: जी, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो रिटायरमेंट के बाद जो है घर पर बैठ जाते हैं, उनको क्या सलाह देंगे कि वे अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रखें?
0: सबसे पहले अभी मेरा 70 साल हो गए, मेरा कहने का मतलब हम लोग का खाना पीना में ध्यान दे, दिन में 1 घंटा अपने चल नहीं सकता तो चले, घर में बैठ के रहने से अपना मोटापन हो जाता है, हल्का से चलने से भी बहुत बेहतर होएगा।
1: तो आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा श्री हसन लमैया जी, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय हिंद।
2: बीती यादें,
3: श्रोताओं अभी आप बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है।

0: इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लेखक ओपी चतुर्वेदी द्वारा लिखित झलकी बेचारा भोला।
1: कौन है? मैं हूँ सरकार भोला।
2: क्या बोला? अरे दरवाजा है खुला, अंदर आ जाओ।
1: मैं बोला सरकार भोला भोला।
2: कहिए मैं क्या सेवा करूं?
1: सरकार सेवा करने तो मैं आया हूँ, मैं एक खानदानी नौकर हूँ। मेरे यहाँ 7 पुश्तों से नौकरी करने का व्यवसाय होता चला रहा है। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा सरकार।
2: मगर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मुझे नौकर की जरूरत है?
1: सरकार आपने अपने मित्र सरकार बाबू से कहा था ना? सरकार बाबू ने अपने मित्र बनर्जी बाबू से कहा, बनर्जी बाबू ने मुखर्जी बाबू से कहा, मुखर्जी बाबू ने घोष बाबू से कहा, घोष बाबू ने बोस बाबू से कहा, बोस बाबू ने अग्रवाल बाबू से कहा, अग्रवाल बाबू ने जायसवाल बाबू से कहा, जायसवाल बाबू ने बनवाल बाबू से कहा, बनवाल बाबू।
2: सीधे सीधे बोलो, तुमसे किसने कहा?
1: बस बस स्टेशन आ ही गया सरकार। बर्नवाल बाबू ने अपने नौकर रामू से कहा। रामू मेरे बड़े भाई के साले के सगे भतीजे के मौसेरे भाई का मामा।
2: तो, तुमसे बर्नवाल बाबू के नौकर रामू ने कहा?
1: जी सरकार।
2: अच्छा भोला, तुम क्या क्या काम कर सकते हो?
1: सरकार मैं आपका काम तमाम कर सकता।
2: क्या?
1: नहीं सरकार, मेरा मतलब है मैं आपके तमाम काम कर सकता हूँ। जरा जबान फिसल गई थी।
2: ठीक है ठीक है, तुमने पहले भी कहीं काम किया है?
1: सरकार बड़ी दर्द भरी दास्तान है मेरी, सुनाने में थोड़ा टाइम लगेगा।
2: मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है।
1: सरकार एक कप चाय मिलेगी?
2: क्या अभी दूध नहीं है घर में?
1: कोई बात नहीं सरकार, कोई बात नहीं, वैसे मैं बिना दूध की चाय भी पी लेता हूँ। सरकार हुआ यूं कि मैं सरकार बाबू के यहाँ काम करता था।
3: अच्छा। अरे आज क्या तोड़ दिया भोला के बच्चे?
1: तोड़ा नहीं मालकिन, टूट गया गिलास।
3: अंधा है क्या, देखकर काम नहीं करता? परसों तुमने केतली तोड़ी थी, कल 3 कप तोड़ दिए और आज ये गिलास
1: तोड़ा। मालकिन गलती हो गई, अब कम से कम बर्तन तोड़ने की कोशिश करूंगा।
3: गलती हो गई, जब तलब में से पैसे कटेंगे तब अक्कल ठिकाने आ जाएगी।
1: रहम मालकिन, रहम को रहम गाओ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मालकिन। मैं पहले जहाँ काम करता था, मालकिन ने मुझे 12 बर्तन तोड़ने के 15 दिनों का एडवांस भी दिया था।
3: जवान मत चला और भाग जा यहाँ से।
1: जी जी अच्छा मालकिन।
4: मैंने कहा श्रीमती जी, ये घर सर पर क्यों उठा रखा है आपने?
3: सुबह सुबह मूड खराब कर दिया कमबख्त ने। लगता है आपके ये भोला जी घर के सारे बर्तन तोड़ने की कसम खाकर आए हैं। शीला के यहाँ जा रही थी, अब सोचती हूँ।
4: अच्छा, तुम सोचती भी हो, सुनकर खुशी हुई। अच्छा तुम जाओ शीला के यहाँ, मैं इसे समझा दूंगा। भोला भोला।
5: आया माली।
4: देख भोला, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। मेरे जाने के बाद कोई भी ऐरा गैरा नथू खैरा आए तो उसे बाहर बैठाना, अंदर मत आने देना, समझा?
1: समझ गया सरकार। कोई ऐरा गैरा नथू खैरा आए तो उसे अंदर नहीं आने देना है।
4: हाँ याद रखना, अब कोई बेवकूफी की तो मालकिन धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल देगी तुम्हें।
1: इत्मीनान रखे मालिक, अब कोई गलती नहीं होगी।
4: ठीक है।
1: चल बेटा भोला, अब सुस्ता ले। कौन है बे?
6: बेटी कमला, कहाँ हो तुम?
1: ए बेटी के बाप, कहाँ घुसे आ रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ।
6: अरे ये क्या बदतमीजी है, जानता नहीं मैं कौन हूँ?
1: आप चाहे मंत्री हो या राष्ट्रपति भवन के संतरी, कमरे में नहीं आ सकते, समझे?
6: बेहुदा बदतमीज, तेरी ये मजाल, मुझे यानी इस घर की मालकिन के बाप को घर में आने से रोक रहा है।
1: ए बुढ़ाओ, अगर ज्यादा कचर कचर की तो उठाकर बाहर

0: फेंक दूंगा। हाँ अरे कह दिया कि मालिक का हुक्म है कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई घर के अंदर नहीं आना चाहिए।
1: अरे भाई मैं तुम्हारे मालिक का ससुर और मालकिन का बाप हूँ।
0: तो आप हैं?
1: हाँ, मैं हूँ।
0: यानी मालिक के ससुर और मालकिन के बाप है?
1: हाँ भाई हाँ, मैं मालकिन का बाप हूँ।
0: फिर भी आप अंदर नहीं आ सकते, क्या सबूत है आपके पास?
1: उफ, उफ, भगवान किस गधे से पाला पड़ गया। सबूत? हाँ हाँ है सबूत, है सबूत मेरे पास। वो जो रेक पर फोटो रखी है उसे उठाकर ला, मैं सबूत दिखाता हूँ।
0: ठीक है, मैं फोटो लेकर आता हूँ, मगर खबरदार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे। ये लो फोटो और सबूत दिखाओ।
1: अबे अकल के पपीते, ये तो कुत्ते के फोटो है, मैं तुम्हें कुत्ता दिखाई पड़ता हूँ।
0: ये कुत्ता है लेकिन आपसे चेहरा मिलता है। अच्छा मैं दूसरी फोटो लाता हूँ। ये लो फोटो।
1: हाँ हाँ हाँ, ये देख, ये बैठा हूं, मैं बैठा हूं ना,
0: बोलते जाओ।
1: और ये देख, ये रहे तेरे मालिक है ना, और ये रही तेरी मालकिन, ठीक
0: ठीक।
1: और ये देख, ये रहा मैं।
0: मगर इसमें तो आप कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, ऐसा कीजिए अभी आप जाइए और कुर्ता पैजामा पहन कर आइए।
1: आएगी? अभी मैं आऊंगा कहां, देख अपनी औकात मत भूल।
0: ए, पीछे हट, पीछे हट, बाहर फुट, फुट बाहर।
1: अरे क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे घर से बाहर निकालेगा?
0: मैं कहता हूँ बाहर निकल बूढ़े खुसर, निकल बाहर।
1: नहीं नहीं जाऊंगा।
0: नहीं जाएगा?
1: नहीं जाऊंगा। नहीं
2: जाऊंगा। अरे पिताजी आप कब आए?
0: क्या ये पिताजी? ये
1: वाह बेटी, खूब इज्जत हुई है तुम्हारे बाप की तुम्हारे घर में। तुम्हारा ये दो कौड़ी का नौकर मुझे घर के धक्के देकर बाहर निकाल रहा था।
0: माफ।
2: क्यों रे कमीने, तेरी यह मजाल।
0: माफ।
2: आज तेरा फैसला कर कही रहूंगा। निकल जा, अब भी निकल जा घर से।
0: मालकिन
2: निकल।
0: माफ कर दो मालकिन,
2: निकल घर से।
0: गलती हो गई मालकिन, माफ कर दो मालकिन, गलती हो गई है।
2: गलती के बच्चे, निकलता है कि नहीं?
0: अब आप ही बताएं सरकार, मेरी क्या गलती थी? फैसला आप पर ही छोड़ता हूं।
3: वाकई बड़ी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी भोला। अब ये बताओ कि दूसरे अध्याय में कैसी बीती तुम्हारे साथ, मतलब दूसरी जगह से कैसे निकाले गए थे तुम?
0: ये दास्तां इससे भी ज्यादा दुख भरी है सरकार।
4: भोला, अरे ओ भोला,
0: आया सरकार।
4: चाय ही लिया खिड़की के पास
0: लाया सरकार।
5: आखिर मामला क्या है सरकार, चाय हमेशा खिड़की के पास ही पीते हैं? आज देखता हूँ। ओहो ये बात है, अरे मैया तेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद समखड़ा रहता है।
4: अबे बेबे, ये क्या बड़बड़ा रहा है?
5: आज समझ में आया
0: सरकार, क्या बात है, जोड़ी अच्छी है। बुरा न माने तो सरकार एक बात पूछूं?
4: पूछ पूछ।
0: सरकार बात कहाँ तक पहुंची?
4: क्या मतलब?
0: मेरा मतलब है सरकार, निगाहें मिली या नहीं, मुलाकातें हुई या नहीं, बातें हुई या नहीं, कसमें वादे हुए या नहीं।
4: अबे गधे, तू तो शायराना अंदाज में बातें करने लगा। अच्छा भोला एक बात बता।
0: पूछिए सरकार।
4: तूने कभी किसी से मोहब्बत की? अरे अरे, इसमें हंसने की क्या बात है?
0: अब क्या बताएं मालिक, एक बार की थी।

0: बड़ी महंगी पड़ी।
1: मतलब
0: ये सरकार कि वो भी उसी घर में काम करती थी।
1: हाँ।
0: एक दिन मालकिन का अलमारी से 500 रुपये और मेरा एक बक्सा लेकर भाग गई।
1: हाँ।
0: बक्सा में कपड़ों के साथ साथ 3 महीने के पगार भी थी, वो भी साथ ले गई।
1: अच्छा छोड़ इन बातों को, देख देख मेरा एक काम कर देगा।
0: बोलिए सरकार।
1: देख देख ओ देख देख, सामने वाली खिड़की में जो बैठी है ना,
0: बैठी है,
1: उसे जाकर ये लिफाफा दिया।
0: मगर सरकार, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो बिना भाव के जूते पड़ेंगे। सरकार जिंदगी में सब कुछ खाया है, जूते कभी नहीं खाया।
1: अरे अरे अरे, तो आज खा लेना, और घबराता क्यों है, मैं यही बैठा हूँ, मेरी तरफ इशारा कर देना।
0: नहीं सरकार, अगर कुछ हो गया तो।
1: अरे अरे, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे गधे, देख देख, मोहब्बत के लिए हीर रांझा, लैला मजनू, सती पुन्नू जैसे दीवाने शहीद हो गए, और तू एक चिट्ठी नहीं पहुंचा सकता है। देख देख, जो दूसरों की मदद करते हैं ना, भगवान उनकी भी मदद करता है।
0: लेकिन सरकार, मैं सस्ती पुन्नु नहीं, भोला हूँ।
1: अबे जाना जाना, जल्दी जाना।
0: ठीक है सरकार, जा रहा हूँ। हे भगवान, इस भोला की रक्षा करना।
1: अरे अरे अरे, क्या गजब हो गया, ये उसकी जगह उसकी माँ कहाँ से आ गई। हे भगवान हे भगवान, ये भोला भी नीचे पहुंच गया। अब मैं क्या करूं, भोला को आवाज भी नहीं दे सकता। भोला, अभी ओ भोला के बच्ची, अरे ओ भोला के बच्चे, लौटा लौटा रे लौटा। अरे अरे अरे अरे अरे, उस कमबख्त ने लिफाफा उसकी माँ को दे दिया। हे भगवान हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। जल तू जलाल तू, आई बला तो डाल तू, आई बला तो डाल तू।
2: मैं आ गई, तेरे बाहर तो निकलो।
1: अरे माजी, आ
2: माजी नहीं, तेरे सपनों की रानी, तेरे दिल की मलिका।
1: या क्या कहनी है माजी, आप तो मेरी
2: दिल की धड़कन हूँ, तेरे दिल का करार हूँ, कल मुहे मुझे माजी कह रहा है। हाँ, मुझे माजी कह रहा है। अरे बाप रे, बोल।
1: अरे नहीं, अरे
2: माजी, कल मुहे कहीं के।
1: अरे अरे, कोई बचाओ, कोई बचाओ।
3: सरकार कहाँ है?
0: अरे ये आपकी क्या हालत हो गई है सरकार? राम राम राम राम राम राम राम राम, लगता है बुरी तरह मारा है।
1: अरे अरे, निकल जा हरामखोर, निकल जा यहाँ से।
0: लेकिन सरकार, मेरी क्या गलती थी?
1: अरे मेरी क्या गलती थी, अरे अरे, मरवा दिया ना हरामजादे। अरे तुझे तुझे लड़की और उसकी माँ में फर्क नहीं मालूम हुआ? अरे मैं कहता हूँ निकल जा, निकल जा, निकल जा, अपनी मनहूस सूरत ले जा।

अभी आप लेखक ओपी चतुर्वेदी द्वारा लिखित झलकी बेचारा भोला सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

कल सुबह 9:55 से माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे प्राइमरी चैनल के अलावा FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है।

अब एक नजर हमारे कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, हमारी पहली सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। पांच बजकर 55 पर सुनिए एग्री टिप्स, विषय रहेगा पुदीने की खेती। जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम, विषय रहेगा हमदम। रामचरित मानस कान कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 6:30 पर। वतन के गीत इस कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 6:40।

0: सवेरे 7:15 पर सुनिए देशरागनी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। सवेरे 8:30 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम कलाकार होंगे बाबुल रूप कुमार राठौर। 9:00 सुनिए बाल जगत कार्यक्रम। 7:05 का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
5: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
6: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
7: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
4: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
8: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
4: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
9: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
4: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
10: यन पॉलिसी यन कयल।
4: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-7 पर कॉल करें।
11: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
12: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज द्वीप समूह के दो दिवसीय दौरे पर श्री विजयपुरम पहुंचे। वे कल डॉक्टर बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा कॉन्सर्ट ऑन वंदे मातरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,

सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा फरारगंज स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में बाल संरक्षण जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और फिनिक्स बे जेट्टी से संचालित सभी हार्बर फेरी सेवाएं कल दोपहर 12:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रशासनिक कारणों से निलंबित रहेगी।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर आज श्री विजयपुरम पहुंचे। आईएनएस उत्कृष्ट पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज शाम उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्लर जेल का दौरा किया। उन्होंने शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की और स्वतंत्र ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने वीर सावरकर की कोठरी सहित सेल्लर जेल के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सेल्लर जेल महान स्वतंत्रता सेनानियों की देशभक्ति की ज्वलंत भावना का प्रतीक है। सेल्लर जेल का डिजाइन और निर्माण इस तरह किया गया कि यह हर स्वतंत्रता सेनानी को अलग थलग कर दे। वीर सावरकर और अन्य महान सेनानियों ने यहाँ संघर्ष किया और बिना किसी से मिले जेल में समय बिताया। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ आने वाले लोग समझ सकते हैं कि आज़ादी, खुशी और मुस्कान कभी भी साहस और महान बलिदान के बिना नहीं मिलती। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्लर जेल में लाइट एंड साउंड शो भी देखा। उपराष्ट्रपति कल हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे और श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके बाद वे डॉक्टर बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सभागार में आयोजित तिरंगा कॉन्सर्ट ऑन वंदे मातरम राज्य समारोह में शामिल होंगे। दौरे के दूसरे दिन दोपहर में उपराष्ट्रपति नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का भी दौरा करेंगे। वे वहां ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन करेंगे तथा द्वीप के इतिहास और प्रस्तावित भावी विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है बाल संरक्षण जागरूकता प्रतियोगिता और फेरी सेवा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी समाज कल्याण निदेशालय द्वारा फरारगंज के माइल तिलक गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में बाल संरक्षण जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के अधिकार, बाल संरक्षण और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में बाल श्रम को कहना, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार और बच्चे हमारा भविष्य है विषय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें बच्चों और अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में SCPS की कार्यक्रम प्रबंधक ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित एवं पोषक युक्त वातावरण में रहने का मौलिक अधिकार है। उन्होंने समुदाय से बाल शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह अथवा उपेक्षा और हिंसा की किसी भी घटना के प्रति सतर्क रहने तथा जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों या चाइल्डलाइन 1098 पर तत्काल सूचना देने को कहा। दूरदर्शन केंद्र एवं आकाशवाणी श्री विजयपुरम द्वारा डॉक्टर बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में कल आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कार्यक्रम

तिरंगा कॉन्सर्ट ऑन वंदे मातरम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुबह 9:50 से कार्यक्रम की समाप्ति तक दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के आधिकारिक यूट्यूब चैनल @DDK श्री विजयपुरम पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम द्वारा भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। फिनिशब्रिज जेट्टी से संचालित होने वाली सभी हार्बर फेरी सेवाएं कल दोपहर 12:30 से शाम 6 बजे तक प्रशासनिक कारणों से निलंबित रहेगी। इस अवधि के दौरान फिनिक्स बे और बम्बूफ्लैट जेट्टी के बीच आपातकालीन फेरी सेवा जारी रहेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निलंबन अवधि में चातम जेट्टी से बम्बूफ्लैट और होपटाउन के लिए अतिरिक्त यात्री फेरी सेवाएँ संचालित की जाएगी। शाम 6 बजे के बाद फेरी सेवाएँ नियमित कर दी जाएगी। प्रशासन ने सभी यात्रियों और पर्यटकों से अपने आवागमन की योजना इसी के अनुसार बनाने की अपील की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थानीय संगीत एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वीप समूह के युवाओं और डिजिटल रचनाकारों से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज

0: के बाद फेरी सेवाएं नियमित कर दी जाएगी। प्रशासन ने सभी यात्री और पर्यटकों से अपने आवागमन की योजना इसी के अनुसार बनाने की अपील की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थानीय संगीत एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वीप समूह के युवाओं और डिजिटल रचनाकारों से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में भाग लेने का आग्रह किया गया है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती के सहयोग से शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। संस्कृति और विरासत, स्थानीय व्यंजन, लोक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, प्रकृति, इको टूरिज्म और प्रेरणादायक स्थानीय कहानियां विषय के साथ प्रतिभागी 1 से 3 मिनट की अवधि के छोटे वीडियो, रील्स और व्लॉग्स के साथ वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना मूल कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। पायलट चरण के लिए प्रविष्टियां जमा करने की विंडो 31 अगस्त तक खुली रहेगी। विभिन्न स्तर के प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अधिक जानकारी माई वेव्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। डिगलीपुर प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों में अतिथि प्रवक्ता एवं अंशकालिक प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार 13 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। योग्यता साक्षात्कार कार्यक्रम एवं डेमो विषयों की विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पात्र अभ्यर्थियों को अपना आवेदन, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अनुभव आदि की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र भी साथ लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी किसी भी जानकारी के लिए कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक डीब्रेड के अकादमिक प्रकोष्ठ और संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। टैगोर राजकीय महाविद्यालय में 2 वर्षीय BEd कार्यक्रम 2026-28 में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पात्र अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र 12 अगस्त तक जमा करने को कहा गया है। और अब मौसम। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 13 अगस्त तक 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम की स्थिति को देखते हुए मछुआरों को 10 अगस्त तक अंडमान निकोबार के तटों और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर श्री विजयपुरम पहुंचे। वे कल डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा कॉन्सर्ट और वंदे मातरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा फरारगंज स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में बाल संरक्षण जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और फिनिक्स जेट्टी से संचालित सभी हार्बर फेरी सेवाएं कल दोपहर 12:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रशासनिक कारणों से निलंबित रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, सुनिए हमारे केंद्र से मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचना। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के तटों के आसपास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है तथा मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV कैंबल बे कल रविवार 9 तारीख को सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी उसी रोज रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV 12 टांग 10 तारीख को सवेरे 7 बजे

से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी 11 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैंबल बे 11 तारीख को नानकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी 13 तारीख को कैंबल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग रविवार 9 तारीख को सवेरे 6 बजे लॉन्ग आइलैंड स्वराजदीप होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत रविवार 9 तारीख को सवेरे 6:15 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बोका कल रविवार 9 तारीख को सवेरे 6:15 पर स्वराजद्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर। एमवी रानी लक्ष्मी कल रविवार 9 तारीख को 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप जाएगा। जलयान की वापसी स्वराजद्वीप से दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

जन सूचना, क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। जनसूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें, कल सुबह 9:55 से माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे प्राइमरी चैनल के अलावा एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। शान की आवाज में श्रोताओं सुनिए ये गीत।

तलाश फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं हम आपको बता दें कल सुबह 9:55 से माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉक्टर बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे प्राइमरी चैनल के अलावा एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

परिश्रम से सफलता तक का सफर केवल रास्तों को तय करना नहीं बल्कि खुद को गढ़ना है। युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और अनुवादक थे। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। उनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त यानी आज के दिन मनाई जाती है। भीष्म साहनी ने हिंदी साहित्य को अनेक उत्कृष्ट रचनाएं दी। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास तमस है, जिसमें भारत के विभाजन के समय हुई सांप्रदायिक हिंसा और उसके मानवीय प्रभाव का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस उपन्यास पर आधारित धारावाहिक भी अत्यंत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने कहानियां, नाटक और स्मरण भी लिखे, जिनमें आम आदमी के जीवन, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं को प्रमुखता दी गई है। भीष्म साहनी सरल, विनम्र और समाज के प्रति संवेदनशील लेखक थे। उनकी भाषा सहज और प्रभावशाली और यथार्थवादी थी। वे साहित्य के माध्यम से मानवता, समानता और भाईचारा का संदेश देते थे। उनकी जयंती हमें उनके आदर्शों और साहित्य से प्रेरणा लेने का अवसर देती है। हमें उनकी रचनाओं का अध्ययन कर समाज में प्रेम, सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन का और एक खास महत्व है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त यानी आज के

दिन 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और उन्होंने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। भारत छोड़ो आंदोलन में लाखों भारतीयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा सभी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। आंदोलन शुरू होते ही अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं हुआ। देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शन, हड़तालें और सभाएं आयोजित की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और देशभक्ति की याद दिलाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि एकता, साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों का पालन करें, देश की एकता और अखंडता बनाए रखें तथा भारत के विकास में अपना योगदान दें। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की प्रेरणा देता रहेगा।

0: दोस्तों आज शनिवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों प्रकृति में कई ऐसे पौधे हैं जो अपनी अनोखी विशेषताओं से हमें चकित कर देते हैं। ब्लैडरवॉर्ट ऐसा ही एक जलीय मांसाहारी पौधा है जो बिना जड़ के भी पानी में जीवित रहता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह छोटे छोटे जलीय जीवों को पकड़ने के लिए सूक्ष्म थैली नुमा जाल का उपयोग करता है। ये जाल एक मिलीसेकंड से भी कम समय में बंद हो जाते हैं, जिससे शिकार को बचने का अवसर नहीं मिलता। यह प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग का

शानदार उदाहरण है। दोस्तों, हर जीव और पौधा अपने अस्तित्व के लिए अनोखी रणनीति अपनाता है और यही विविधता हमारी पृथ्वी को इतना अद्भुत बनाती है।

दोस्तों, प्रकृति में छलावरण जीवों की सबसे अद्भुत क्षमताओं में से एक है। ऑर्चिड मैंटिस एक ऐसा कीट है जो बिल्कुल ऑर्चिड के फूल जैसा दिखाई देता है। इसका रंग, आकार, बनावट इतनी वास्तविक होती है कि पराग एकत्र करने वाले कीट इसे सचमुच का फूल समझकर इसके पास आ जाते हैं। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, ऑर्चिड मैंटिस उन्हें अपना शिकार बना लेता है। यह प्रकृति की बुद्धिमता और विकास की अद्भुत कहानी है। प्रकृति में केवल बल ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और अनुकूलन भी जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हर जीव अपने तरीके से जीवित रहने की कला सिखाता है और यही जीव विविधता को विशेष बनाती है।

दोस्तों, जब हम किसी जंगल को देखते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ मौजूद हर पेड़ अलग अलग है, लेकिन एस्पेन के कई वन वास्तव में एक ही विशाल जीव हो सकते हैं। इस पेड़ों की जड़ें आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं और पूरा जंगल एक साझा जड़ तंत्र के माध्यम से पोषण और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने पर वे अलग अलग पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन धरती के भीतर वे एक ही परिवार की तरह जुड़े रहते हैं। यह प्रकृति के सहयोग और एकता का अनोखा उदाहरण है।

दोस्तों, उल्लू को अक्सर उसकी बड़ी आंखों और रात्रि चर जीवन के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी सबसे रहस्यमयी विशेषता उसकी लगभग मौन उड़ान है। उसके पंखों की विशेष बनावट हवा के शोर को कम कर देती है, जिससे वह बिना आवाज किए अपने शिकार के बेहद करीब पहुंच सकता है। यही कारण है कि वह रात का एक कुशल शिकारी माना जाता है। यह अनोखी क्षमता लाखों वर्षों के विकास का परिणाम और प्रकृति की अद्भुत संरचना को दर्शाती है। प्रकृति का हर जीव अपने भीतर कोई न कोई अनोखा रहस्य समेटे हुए है।

0: समूचे देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मानसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया।

इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और

समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया।

ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी

0: संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्रवाई दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दिस इज आकाशवाणी रिव्यू ऑफ दिस वीक्स पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स रेड बाय अमृत भूषण। This was the third week of Parliament's monsoon session. Throughout the week, opposition members in both the houses created uproar over a number of issues, such as demanding statement from Home Minister Amit Shah on the issue of police action against students, protesting the NEET question paper leak and the alleged theft of offerings from the Ram Mandir in Ayodhya. Consequently, a deadlock persisted in both the houses throughout the week. However, some key bills were passed either without having any discussion or after brief deliberation during this period. On Monday, the first day of the week, as soon as the Lok Sabha proceedings began, Speaker Om Birla acknowledged the success of Indian athletes at the Commonwealth Games and congratulated them. He then initiated the question hour, but opposition members started creating a ruckus in the House. As

श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे प्राइमरी चैनल के अलावा FM 100.9 MHz पर भी सुना जा सकता है।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में MIS डाटा एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दो पद, अकाउंटेंट का एक पद तथा HMIS असिस्टेंट के 6 पद शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को MIS डाटा एनालिस्ट पद के लिए 40,000 प्रतिमा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं अकाउंटेंट पद के लिए 30,000 प्रतिमा तथा HMIS असिस्टेंट पद के लिए 20,000 प्रतिमा का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। MIS डाटा एनालिस्ट पद के लिए BE/BTech या MCA या MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अथवा समकक्ष योग्यता से साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव आवश्यक है। MPH अथवा समकक्ष योग्यता भी मान्य है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री संबंधित तकनीकी योग्यता

0: तथा डीआईए एवं एमसीएसए क्षेत्र का अनुभव अपेक्षित है। अकाउंटेंट पद के लिए एमकॉम डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान या बीकॉम डिग्री के साथ लेखा एवं वित्तीय क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। एचएमआईएस असिस्टेंट पद के लिए बीसीए कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री तथा संबंधित अनुभव आवश्यक है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन शैक्षणिक योग्यता अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। साक्षात्कार संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 22 जुलाई का द डेली टेलीग्राम भी देखा जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं,
1: Nice smoke machine you've got there. Oh wait, that's just your diesel car?
2: Ha ha ha, very funny. At least it's powerful.
1: Powerful? More like powerfully expensive. Fuel bills through the roof. And don't forget the pollution. My Victorious S CNG runs cleaner. Gives me 27.02 km per kg mileage and still packs a punch with its 1.5 liter engine. And its underbody tank gives me uncompromised boot space.
2: Alright. Victorious S CNG really has got it all. Guess I need to upgrade.
1: Victorious S CNG. Now run with a smarter fuel.
3: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexus showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
4: Nexus.
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं गौरव गान के तहत कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ गौरव गान कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और

0: डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग

0: तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए

0: अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति पिजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand.

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉग्मा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा

व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहाँ वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन हैं, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम

जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम

0: या अनीति बात कह दूं तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र्य बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत विप्रा बहु वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है। बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है। वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय।

0: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
1: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेपचा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार कर्सियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी, कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।

0: पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची। चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत काटना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920। बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था। हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेपचा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यही गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थीं। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेपचा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नज़रबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नज़रबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेपचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेपचा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेपचा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस वर्ष में हम लोग खोज करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेपचा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है।

0: इनका तीन नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेप्चा था, तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्रपत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम की, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल तो उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया, तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कहीं रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
1: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
2: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मन

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I am acting today as a hostess of the Indian National Congress.
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा

0: और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
1: This is the Congress radio calling on 42.34 meters. Today, we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता किपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
2: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए हम महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा

परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है, जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वी एस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's National Program of Music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandiki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channaveera Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
0: Shri Girimalla

0: भजंत्री अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। इसमें दो बंदिशें जपताल और द्रुत तिनताल में निबद्ध है। सुनिए राग रागेश्री।
1: श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री बिगिंस हिज शहनाई रिसाइटल विद राग रागेश्री इन विच ही इज प्रेजेंटिंग टू कंपोजिशंस सेट टू जपताल एंड द्रुत तिनताल।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लपा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was राग जोग। With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार तटों के आसपास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है तथा मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अभी ही समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

टाइम इज 4 आवर्स 56 मिनट 55 56 57 58। नंबर टू टेस्टिंग एंड द टाइम इज 4:57 7 8 9 10 सेकेंड्स। कंप्यूटर वन।

नंबर वन टेस्टिंग एंड द टाइम इज 4 आवर्स 59 मिनट्स 20 21 22 20

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 18वीं तिथि यानी 9 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। अपनी पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

0: इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। वक्त है अनमोल विचार का।
1: प्रश्न पूछना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान का मार्ग खोलती है। जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर दिन हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। आश्चर्य हमें जिज्ञासु बनाता है और जिज्ञासा हमें सीखने की प्रेरणा देती है। इसलिए जीवन की छोटी छोटी बातों में भी सीख और आनंद खोजे। आश्चर्य से भरी दृष्टि ही हमें नई खोजों और नए अनुभवों की ओर ले जाती है।
0: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए समवेत स्वरों में मातृ वंदना।